RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सुप्रभात. घर मिलाते चलिए. सुबह के ठीक 5 बजे हैं. इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन.
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
2: RM2
0: रेडियो मस्ती.
4: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। अभी आप अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि बस सपने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए उठकर मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी सपनों की दुनिया में खोए रहना उतनी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सपनों में ही खोए रहेंगे तो आप हकीकत में कब मेहनत करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करें। एंड अगर आपको लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, तो लेट मी टेल यू, इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जस्ट नो कि स्काई इज़ द लिमिट। आप मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल आगे चलकर आपको ज़रूर मिलेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि सुबह सवेरे इतना लेक्चर ये दिव्या क्यों दे रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर नहीं है बल्कि ये मोटिवेशन है। एंड सुबह सवेरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें काम पर जाने का मूड नहीं होता है, मन नहीं होता है। कभी हम सोचते हैं कि वाई डूइंग दिस, और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। लेकिन आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में, अपने जहन में तो उतार लेना चाहिए कि हमारे साथ जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए ही होता है। और कभी कभी कुछ सिचुएशंस आते हैं हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कभी अप्स एंड डाउन्स में आप ये मत सोचिएगा कि बस ये आपको आए हैं और वीक बनाने के लिए, बल्कि ये सोचेगा दिस हैज कम टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। एंड अपनी स्ट्रेंथ को लोग तभी पहचानते हैं जब उनको एक तूफान, एक आंधी से गुजरना पड़ता है। तो चलिए, जो भी आप सुबह सवेरे कर रहे होंगे, आपके साथ साथ हम भी शामिल हैं। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, या फिर अर्ली मॉर्निंग रश रश, यानी कि हमारे लेडीज़ अगर किचन में हैं तो आपको भूख, आज हम भी आपके साथ हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये मॉर्निंग आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही स्पेशल रही, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो। इट्स अ चिल्ड वेदर आउटसाइड, और ऐसे में उठकर काम पर जाने का मन नहीं होता है, और तभी हम आते हैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन और एनकरेजमेंट देने के लिए। सुबह के 5:08 हो चुके हैं, दिव्या का साथ अभी से लेकर सुबह के 7 बजे तक इन योर राइज एंड शाइन। ऑफ कोर्स खूबसूरत गीतों के साथ हम ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं आप लोगों से मिलने के लिए। तो आपकी तरफ से जरूर जानना चाहते हैं व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड ऑन 5499-1294।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वादे प्यारे ही होते हैं और कहते हैं कि a promise is meant to be kept. कुछ लोग कहते हैं ना कि a promise is meant to be broken. लेकिन अगर आप एकदम से एक positive इंसान

0: इंसान हैं तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि अगर आप ह्यूमैनिटी में फेथ रिस्टोर करना चाहते हैं सो सबसे पहले यू हैव टू बी द रीज़न, ताकि लोगों को ह्यूमैनिटी पर भरोसा एक बार फिर से का भरोसा कायम रखें। एंड चलिए अभी के लिए तो 5:19 हो चुके हैं, सर्विंग योर म्यूजिकल ब्रेकफास्ट। एंड अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग और बोरिंग, तो लेट मी टेल यू कि मॉर्निंग कैन बी म्यूजिकल। बस आपको ये करना है दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती। सुबह सवेरे 5 to 6 आपको मौका मिल रहा है कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कुछ खूबसूरत गीतों के साथ फ्रॉम दी गोल्डन एरा। चलिए दिव्या का साथ है टिल 7 AM। एंड यहाँ पर आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे। ओ माई गॉड, इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं। एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर सिस्टर भावना खेमराज। वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर, एंड उनको बहुत बहुत सारा प्यार। साथ में ये जयशन जी ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत कोड भेजा है, कहते हैं ऑन दिस वंडरफुल वेंसडे मे यू फाइंड काउंटलेस रीजंस टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। एंड वैसे आपने बहुत ही सही बात कहा है, वैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं तो उस कंप्लेन में भी आपको अपना ब्लेसिंग ढूंढ ही लेना चाहिए। अगर आप कंप्लेन करते हैं कि बस आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्री टाइम है। अगर आप कंप्लेन करते हैं कि आपको बहुत ही चलना पड़ता है और आपका घर आपके बस स्टॉप से काफ़ी दूर है, इसका ये मतलब है कि आपके पास गुड हेल्थ है और आप चल पा रहे हैं। अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं कि आपका बहुत ही काम का प्रेशर चल रहा है आजकल, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक नौकरी है। So it's always, always nice to find blessings in everything that you say or you do. और ये बस आपको realize करना चाहिए कि ज़िंदगी में आप कितने blessed हैं और start counting your blessings. तो चलिए यहाँ पर आप कहते हैं कि life is too ironic. It takes a sadness to know what happiness is, noise to appreciate silence and absence to value presence. Good morning. आपको भी good morning जी, आपने एकदम सही बात कही है। Thank you so much अंजू हमारा साथ देने के लिए। एंड आप कहती हैं हाय दिव्या एंड RM2 टीम, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर बेटी रिया, आंशी केशनी एंड चाची प्रेमिला रामचंद्र एंड एवरीवन फ्रॉम कविता बर्तन ऑफ पॉजिटिव फ्लैक हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर टोनी जी आप हैं खुशबुआ से साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच टोनी जी। एंड यहाँ पर आपने भी कितना मतलब मीनिंगफुल कोड भेजा है, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं कि साइलेंस एंड स्माइल और टू पावरफुल वर्ड्स, साइलेंस इज़ द वे टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स एंड साइलेंस इज द वे टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स। गुड मॉर्निंग आपको भी टोनी जी, एंड एकदम सही बात कही। एंड साथ में आप ये भी कहते हैं कि वेक अप अर्ली एवरी डे सो दैट व्हाइल अदर्स आर स्टिल ड्रीमिंग यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। इसी के बारे में तो हमेशा हम बात करते रहते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सपनों को साकार करें। एंड इसके लिए तो ऑफकोर्स हार्डवर्क इज द की वर्ड। हेलो नमस्ते दिव्या, वेरी गुड मॉर्निंग सरिता जी आप है गुडलैंड से, आपको भी शुभ दिन। और उम्मीद करते हैं कि ये सुबह आप लोगों के लिए सुहानी हो एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस हो। गुड मॉर्निंग दिव्या जी, आई एम रेखा, रेखा जी आपको गुड मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर यू एंड योर बेटा अंश फ्रॉम पोंबो जो स्पेशली मेरे लिए, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू रेखा जी। अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल दोस्त जो आपको जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, इट्स अ ब्यूटिफुल वन। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। एंड अगर किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है या फिर ऐसे ही सुबह से वेरी किसी को याद कर रही है, डू लेट देम नो ऑन 5499-1294।
1: Wake up with the sun and the sound of fun. RM2 Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वेल 5:35 होने को है और चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस की ओर. नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर सरोज जी ऑफ काट्रोबोन एंड डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर पूना मोनिका पल्लवी विशाल उमेश राजन एंड रेडियो मस्ती टीम के लिए. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. नीमा जीवन आप हैं मौद अलबेया से लिसनिंग टू द शो और कहती हैं कि सारे सुपर्ब्स गाने हैं एंड ऑल सॉन्ग्स आर ऑसम. थैंक यू सो मच. एंड इस ऑसम को एंजॉय करते करते आप अपनी मॉर्निंग को भी औसम बनाइएगा. नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर हबीब विशाल आपके 3 बेटे हैं यादव नीलेश एंड विरेश के लिए और हमारी टीम के लिए. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. एंड साथ में अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली आपकी पोती श्रिया के लिए जिनका बर्थडे है आज. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू प्रिंसेस श्रिया और उनको बहुत सारा प्यार बहुत सारी शुभकामनाएं एंड सक्सेस इन लाइफ फ्रॉम नानी संगीता एंड हेवनली ब्लेसिंग्स फ्रॉम नाना रघुनाथ जी. एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम आप हैं बदवक विदेशी जी एंड आप कहते हैं वेरी नाइस सिलेक्शंस थैंक यू सो मच. एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. एंड डोंट फॉरगेट दिव्या का साथ है अभी से लेकर सुबह के 7 तक इन योर राइज एंड शाइन.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:43 ऑलरेडी एंड चलिए बढ़ते हैं आपके डेली हॉरोस्कोप की ओर। शुरुआत करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। टॉरस वृषभ राशि, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। व्यापार में लाभ के योग हैं और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि, आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। बेवजह के खर्चों से बचें और अपनी वाणी पर जितना हो सके संयम रखें। कैंसर कर्क राशि, सामाजिक कार्यों में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट। लियो सिंह राशि, फिजूल खर्ची से बचें और कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। विरोधी आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं। सो जितना हो सके बी कॉशियस एंड बी वेरी अलर्ट और ये जाने कि कौन आपके वेल विशेज हैं और कौन नहीं है। वर्गो कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णय फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

0: लिब्रा तुला राशि आर्थिक निवेश के लिए दिन अच्छा है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें। सजिटेरियस धनुराशि, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके लिए दिन बेहद शुभ है। आर्थिक मजबूती मिलेगी और अटके हुए काम पूरे होने से मानसिक शांति का अनुभव भी आपको हो सकता है। अक्वेरियस कुंभ राशि, पारिवारिक कलह से बचें। नौकरी और व्यापार में सतर्कता बरतें, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। और आखिर में वी हैव पाइसेस मीन राशि, धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम लेकर आया है, सो जितना हो सके आप इस दिन का पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: Your daily horoscope, RM2 Radio Musti.
2: You're listening to RM2 Radio Musti.

होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला

0: गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे।
1: वेल फ्रेंड्स, 5:55 हो चुके हैं और चलिए इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 6 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, और ये गाना हमने खास तौर से छवि के लिए डेडिकेट किया है, एंड वो 6 साल की हैं और ये गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर छवि फ्रॉम पापा कमल दसानी ऑफ का कोको। एंड चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे सेकेंड आवर ऑफ राइज एंड शाइन में।

0: subscribe to Radio Mustin.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ पूजा से नमस्कार।
6: नमस्कार दिव्या सभी को मेरा नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में की। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस की शुरुआत की। डॉ. नवीन रामगुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रपति पद की वैधता तथा राज्य प्रमुख की निष्पक्ष और एकजुट करने वाली भूमिका में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। कल संसदीय सत्र काफी तनावपूर्ण रहा, जिसमें सांसद जुआना बेगौरी और श्रम मंत्री गिजाउद्दीन के बीच तनावपूर्ण क्षण देखने को मिला। सांसद ने अपनी मां की यहां कार्यरत एक लापता बांग्लादेशी महिला कर्मचारी के मामले को लेकर मंत्री से सवाल किए। उन्होंने विशेष रूप से ये जानना चाहा कि क्या वो कर्मचारी अपनी आवाजाही के लिए स्वतंत्र थी, जिस पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रिजाउद्दीन ने उन टिप्पणियों को गंभीर संकेत और आरोप करार देते हुए उनकी निंदा की। तनावपूर्ण बहस के दौरान स्थिति को शांत करने के लिए स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद को हस्तक्षेप करना पड़ा। मध्य अफ्रीका में एबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस के अधिकारी अपने रोकथाम और तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संबंधित पक्षों के साथ कल एक कार्य बैठक आयोजित की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मॉरिशस में किसी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए सभी प्रोटोकॉल लागू हो। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर फाजिल कुडाबोकस के अनुसार 2014 से तैयार किया गया एबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान फिर से सक्रिय कर दिया गया है। और अब मौसम का हाल।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं और पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी। रात को बादल कुछ घिर आएंगे, खासकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
0: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2.
4: Radio Musti. Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: इस ठंड वाले मौसम में यहाँ पर आपको बिल्कुल प्यार का वार्म्थ देने आए हैं और साथ में खूबसूरत गीतों के साथ आपके मन को थोड़ा सा बहलाने के लिए. आई नो सुबह का वक्त होता है, थोड़ा रश रश वाला मोमेंट होता है, आपको ये करना है वो करना है, कभी आपका शौक नहीं मिलता है और कभी कभी आप इतने रश में होते हैं कि खुद को टाइम देना भूल जाते हैं. तभी हम आते हैं आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि थोड़ा सा पॉज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अभी आप सोचेंगे कि सुबह सवेरे किसको पोज करने का टाइम मिलता है, लेकिन इट्स पॉसिबल अगर आप थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे अर्ली उठने के लिए. इवन 5 मिनट अर्लियर इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. 6:11 हो चुके हैं. एक बार फिर से दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हमारा और आपका साथ रहने वाला है 7 AM. और वैसे जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हाई सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि हाई चलो फाइनली मॉर्निंग हो ही गया और हम उनमें से एक हैं. आई रियली लव मॉर्निंग्स एंड मॉर्निंग पर्सन कैन डेफिनेटली रिलेट विद दैट. चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. हाई डियर, गुड मॉर्निंग संध्या, आप हैं लॉन्ग माउंटेन्स एंड वर्किंग नाइट शिफ्ट इन शेल्टर एट नोटरडम और आपके फ्रेंड्स हैं मालिनी, लालिनी, दिपिंती एंड यू वांट टू डेडिकेट अ ब्यूटीफुल गाना फॉर देम एंड ऑल द फ्रेंड्स वर्किंग इन नोटरडम शेल्टर. हाई डियर, आप बहुत ही फैंटास्टिक और फैबुलस काम कर रहे हैं और चलिए जहाँ पर भी आप हैं इस वक्त जो लोग शेल्टर में हैं उनको भी हम बहुत बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं. तो चलिए इसी के साथ बस आप हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिएगा. हाय दिव्या, नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच. अमृता जी, आप हैं पोएटो साबलिस से, आपको भी विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड. इंदिरा ओसेनी, आप हैं पिछी वेजे से एंड आप कहते हैं कि मीला, शीला, वीना, सोना, सत्यानंद, वीको, राजीव, संजनी, सियावीन, जसप्रीत, प्रिया, ईशा, प्रीशा, देवा, क्रिश, वंदना, गरवा, सीएम, रवि, सीमा, अविना, अविशा, रोमा, रिया, सिद्धि, यशना, फ्रेयस्टी, धीरज, अश्विन, अविश, कांति, मानती, सुनीता. ओ माय गॉड, लिस्ट काफ़ी लंबी थी लेकिन हमने ऑलरेडी आपके पूरे नाम कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट कैन ऑल्सो गोज आउट फॉर पूनम, आप है पीतों से, लिसनिंग रेडियो मस्ती फ्रॉम 3:30 AM while working and the next kana goes out for Habib Jay Singh and beta Ansh. To aapko bon courage ji aur saath mein yahan par आप कहते हैं कि नमस्ते, नमस्कार जिया, कैसी हैं आप. अगला गाना जाएगा मेरे परिवार के लिए, भाई विक्रम, बहन स्वीटी, भारती, बेटियां हैं वर्षिका, वर्षाली, वर्षीना, पोता है युवांश, पोती है दिव्यांशी, शिव, अभिनव, विश्वानंद, भजन, सुबह, सुदम, बोईजनाथ फैमिली के लिए और RM2 टीम के लिए भी. हिमलता भजन, आप हैं पोते पीमा से, थैंक यू सो मच जी हमारा साथ देने के लिए एंड हैव अ नाइस नाइस डे अहेड. और साथ में यहाँ पर अरमान जी ने हमें मैसेज भेजा है कि कल रात को हमने आपको सुना एंड यू आर बैक अगेन सो अर्ली इन दिस कोल्ड मॉर्निंग. हाउ डू यू वेक अप सो अर्ली इन दिस कोल्ड मॉर्निंग. ये तो बस काम का कमाल है. यू नीड टू लव व्हाट यू आर डूइंग और फिर क्या, सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू प्लेसेस. थैंक यू सो मच अरमान जी फॉर योर मैसेज. इट रियली गिव्स अस करेज जब आपका प्यार हम ऐसे देखते हैं. और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. कुछ और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रही है, यहाँ पर मैसेजेस की बौछार हो रही है, तो एक बार फिर से आपके मैसेजेस को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे ऑफकोर्स कुछ गानों के बाद.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ऑलराइट 6:23 हो चुके हैं, बस इतना सा ख्वाब है कि सुबह सवेरे आपका प्यार हमें हासिल हो एंड ऐसा ही हो रहा है। चलिए आप कहते हैं सुप्रभात रेडियो मस्ती टीम, आशा हियर एंड आप कहते हैं कि ओके आशा है कि आप ठीक हैं, मुझे लगा आपका नाम आशा है। बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। एंड छाया सुकोई आप हैं पिलखा सेवास्तोपोल से, अगला गाना गुज आउट स्पेशली आपके नाम क्योंकि आप रोज़ हमारा शो सुनती हैं एंड आप कहते हैं अर्ली मॉर्निंग राइजर्स के लिए एक इनर्जी बूस्टर हैं। अगला गाना जाएगा पति सुबिराज के लिए, बेटा श्रेयस, बेटी शैवी के लिए, खास कर मेरे लिए और सभी फैंस के लिए शुभ दिन आपको, आपको भी शुभ दिन और बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग खुशबू, नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली आपके नाम और आप हेलावाउ चेयर से, नेक्स्ट गाना गुजार फॉर चंदन, सोनाली, शनाया एंड शनवी के नाम। नमस्ते, वॉन्ट टू विश माई पेरेंट्स विनोद एंड हेमा लखनारायण ऑफ पुआदेलास्को अ वेरी हैप्पी 25th wedding anniversary. Wishing them loads of love, success, happiness and long life from do betiyan Pallavi and Jia and sabhi Laknarayan family ki taraf se. Aur saath mein yahan par agla gana hum khas taur se bajayenge for Akshay Sichin, bus drive kar rahe hain abhi, CMT bus mein hain. Take care from city of Rivière du Rempart and aap kehte hain namaste and good morning all my friends, how are you doing? Bilkul theek thaak. Sadhana ji aap hain Rivière du Rempart se, next gana jayega for Jibun family of Union Park, La Rosa, Maud Albert aur Rivière des Créoles. And saath mein yahan par aap kehte hain as usual good morning Divya ji, Hema here. Next gana jayega to sweet Parushi, Paridhi, Prithmi, Priya, Nishika, Nitin, Vishal, Yanesh aur sabhi team ke naam. Thank you so much and aapko hum wish karenge a very very good morning as well Kavita ji, saath dene ke liye thank you so much. Chaliye 6:25 ho chuke hain aur isi ke saath hum badhenge agle gaane ki aur and ye अगला गाना हमें लेकर जाएगा 6:30 के समाचार बुलेटिन की ओर। वक्त ने इजाजत दी तो एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी, वरना अगर नहीं हुई तो ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग वेदिता नेक्स्ट लेकर आएगी आप लोगों के लिए मॉर्निंग बीट।
1: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन।
0: आरएम2
1: रेडियो मस्ती।

0: नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में किया। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस की शुरुआत की। राष्ट्रीय सभा में सांसद जुआना बेहोंजी और श्रम मंत्री गिजा उद्दीन के बीच तनावपूर्ण क्षण के बीच स्थिति को शांत कराने के लिए स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद को हस्तक्षेप करना पड़ा। सांसद लुडोविक काजियन ने ऊर्जा मंत्री पत्रिका कासियावादेन से सार्वजनिक भवनों पर बिजली उत्पादन के लिए सौर्य फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया। जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में मॉरिशस और रोड्रिक्स के कई सार्वजनिक भवनों में 11 मेगावाट की परियोजना की योजना बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड और मॉरिशस सरकार द्वारा समर्थित इस परियोजना में लगभग 660 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। मध्य अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में संबंधित पक्षों के साथ कल एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बीच 2014 से तैयार किया गया इबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज करने के संकल्प के परिणाम स्वरूप दक्षिण और पूर्वी लबनान में इजरायली हमलों की तीव्र लहर में दर्जनों लोगों की मौत। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में किया। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस की शुरुआत की। डॉ. नवीन रामगुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रपति पद की वैधता तथा राज्य प्रमुख की निष्पक्ष और एकजुट करने वाली भूमिका में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम को सुनते हैं। आदित्य अवतार का विवरण पेश है।
1: The commission will be empowered to examine the introduction of an electoral college for the election of the President of the Republic with a view to strengthening democratic governance.
2: गणराज्य के राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए इस आयोग को एक इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना की योजना का अध्ययन करने का अधिकार सौंपा जाएगा। मकसद है देश में लोकतांत्रिक प्रशासन सुदृढ़ करना, जिससे गणराज्य के तहत पॉपुलर मतदान के बजाय राष्ट्रपति का चुनाव एक ज्यादा सुव्यवस्थित और विश्वसनीय मैकेनिज्म के जरिए हो। इस तरह के इलेक्टोरल कॉलेज के साथ देश में एक विशेष कोकस कायम हो पाएगा, जिसमें या तो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे या डेलीगेट्स, जो गणराज्य में इलाकाई, संस्थागत और सेक्टोरल विविधता का परिचय दें। ये एक ज्यादा संतुलित और समावेशी प्रक्रिया का सबूत देगा।
1: Thereby entering a more balanced and inclusive process.
0: खबरों को हम जारी रखते हैं। इस विधेयक में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे संविधान की समीक्षा करने और भविष्य में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान केवल राजनेताओं का एकाधिकार नहीं है। संविधान के अध्याय 2 में

0: विशेष रूप में मतलब विशेष रूप से सुधार किए जाने की संभावना है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने याद दिलाया कि ये मूल दस्तावेज 1968 का है और इसे देश की वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप विकसित होना चाहिए। कल राष्ट्रीय सभा में सांसद लुडोविक काजियान ने ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन से सार्वजनिक भवनों पर बिजली उत्पादन के लिए सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया। जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में मॉरिशस और रोड्रिग्स के कई सार्वजनिक भवनों विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में 11 मेगावाट की परियोजना की योजना बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र की ग्रीन क्लाइमेट फंड और मॉरिशस सरकार द्वारा समर्थित इस परियोजना में लगभग 660 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रतिष्ठानों से इतनी बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है जो लगभग 8000 परिवारों की वार्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इसका एक अंश पेश है अदिति अवतार के विवरण के साथ।
1: Sur un investissement initial total de 660 millions de roupies, le gouvernement injectera environ 480 millions.
2: ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन कहते हैं 660 मिलियन रुपए की प्रारंभिक निवेश पर सरकार इस परियोजना में अतिरिक्त रूप से 480 मिलियन रुपए लगाएगी। ये खासकर इमारतों पर सौर पैनल्स बिठाने की परियोजना के लिए होगा। सार्वजनिक इमारतों पर बिठाए जा रहे फोटोवोल्टाइक पैनल्स के लिए 175 इमारतों को लेकर तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है ताकि सोलर पैनल्स बिठाए जाने से पहले छतों की स्थिति की जांच की जा सके। 5 मेगावाट के पैनल्स की प्राप्ति सितंबर 2027 के लिए निर्धारित है। साथ ही हम रोड्रिग्स में इमारतों पर 2 मेगावाट की क्षमता वाले पैनल्स स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट इस साल के जून महीने तक जारी किया जाएगा, जबकि 4 मेगावाट के पैनल्स सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं के लिए होंगे। 2027 तक इनका इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा 11 मेगावाट की क्षमता वाले पैनल्स होंगे जो सालाना तौर पर करीब 6.5 मिलियन यूनिट्स ऊर्जा की पैदावार करेंगे। ये करीब 8000 परिवारों के वार्षिक बिजली इस्तेमाल के बराबर हैं।
1: Ce qui équivaut au besoin annuel en électricité pour 8000 familles.
0: और कल संसदीय सत्र काफी तनावपूर्ण रहा, जिसमें सांसद जुआना बेरांजे और श्रम मंत्री रिजा उद्दीन के बीच तनावपूर्ण क्षण देखने को मिला। सांसद ने अपनी मां के यहां कार्यरत एक लापता बांग्लादेशी महिला कर्मचारी के मामले को लेकर मंत्री से सवाल किए। उन्होंने विशेष रूप से ये जानना चाहा कि क्या वो कर्मचारी अपनी आवाजाही के लिए स्वतंत्र थी, जिस पर मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रेजा उद्दीन ने उन टिप्पणियों को गंभीर संकेत और आरोप करार देते हुए उनकी निंदा की। तनावपूर्ण बहस के दौरान स्थिति को शांत करने के लिए स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसका भी एक अंश पेश है।
3: You made an averment that this person was locked up. Is that what you did?
4: C'est dans le domaine public.
3: Dans les médias. Donc quand c'est dans les médias, vous répétez.
4: Merci.
3: Okay, time is up.
4: Dans le domaine public, c'est mon devoir de venir mettre dans le.
5: Okay. If I may, on a point of order.
3: Let's have a third party. Okay.
5: A third party will try to calm things down. Just to make clear, on a point of order, the honourable member has just stated that she's referring to the media and the press. The standing order says you can't. Full stop. So she has
3: that
5: to.
3: That is true.
5: So therefore, she has. If she bases herself on the press, she has to withdraw everything.
0: Or. हम खबरों को जारी रखते हैं। जी हां, राष्ट्रीय सभा में ही पीएमक्यूटी सत्र के दौरान कल डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने गंगा तालाब की पवित्रता संरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया। इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे। करुणा लालू का विवरण पेश है।
6: गंगा तालाब में मध्य मई के दौरान एक इटालवी नागरिक से जुड़ी घटना पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने चल रही जांच का उल्लेख किया।
7: I have also requested the Minister of Arts and Culture to develop an appropriate guidelines to establish a comprehensive framework for the management, protection and preservation of the sanctity of Ganga Talab.
6: उन्होंने इस पर जोर दिया कि पवित्र स्थलों की पवित्रता को संरक्षित रखा जाना चाहिए। यह मुद्दा 7 मई को सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन के प्रतिनिधि

0: दिखाते की जा सके ताकि गंगा तालाब की पवित्रता के रक्षा के साथ स्थल के संरक्षण और प्रबंधन हो सके। एक सर्कुलर राष्ट्र होने के नाते इस आध्यात्मिक स्थल पर प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इस बीच सभी यात्रियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है, खासकर व्यवहार और वेशभूषा को लेकर, ताकि पवित्रता के साथ साथ ऐसे स्थलों के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। इस संबंध में मुझे बताया गया कि पर्यटन मंत्रालय कला एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर एक चेतना अभियान चला रहे हैं स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए।
1: Local and international visitors to these spiritual sites.
2: अब कुछ अन्य खबरें। मध्य अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस के अधिकारी अपने रोकथाम और तैयारी संबंधी कदमों की समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संबंधित पक्षों के साथ कल एक कार्य बैठक का आयोजन किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मॉरिशस में किसी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए सभी प्रोटोकॉल लागू है, विशेष रूप से हवाई अड्डे और बंदरगाह पर सुरक्षा कदम, मरीजों की देखभाल की प्रक्रिया, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा तथा आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर फाजिल कुदाबोकस के अनुसार 2014 से तैयार किया गया एबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इंडियन ओशन कमीशन के साथ करीबी सहयोग में काम कर रहा है। अंजलि से रतन फुलशन की रिपोर्ट पर सुनते हैं अदिति अवतार को।
3: डॉक्टर फाजिल कुदाबाकस कहते हैं, हमने हवाई अड्डे पर लागू प्रोटोकॉल पर फिर से गौर किया है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सभी नियमों का पालन हो। डॉक्टर्स एबोला के मामलों और उसके संकेतों को लेकर पूरी तरह जानकारी रखे तथा साथ ही निगरानी प्रणाली तेज की जा रही है ताकि अगर कोई मामला पेश आए तो उसे एक विशेष अस्पताल में रखा जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास सभी जरूरी दवाएं या अन्य आवश्यकताएं स्टॉक में मौजूद हो। हम कर्मचारियों के बीच कैपेसिटी बिल्डिंग का भी ध्यान रख रहे हैं और जरूरी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस सिलसिले में हम और कई बैठकें लगाएंगे। हमने कुछ देशों को 21 दिनों के लिए सर्वेलेंस की सूची में रखा है। हम ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो।
2: दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी पीटर वैन रॉबर्ट्स की शिकायत पर कल सुप्रीम कोर्ट में जज सुलक्षणा बिकारी सनासी के समक्ष सुनवाई हुई। ये तब हुआ जब जज कैरोल ग्रीन जोकू ने बचाव पक्ष की एक याचिका के बाद स्वयं को इस मामले से अलग कर दिया। अपनी साथी ली एन पाल्मारोजा की हत्या के मामले में रिहा किए जा चुके पीटर वैन रॉबर्ट्स ने अनाहिता रेजिडेंस एंड विला लिमिटेड के खिलाफ गंभीर सुरक्षा चूक का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया है। ली एन पाल्मारोजा का शव इसी होटल के स्विमिंग पूल में मिला था। और कल पोर्ट लुइस जिला अदालत में जिनो मिटन की जमानत रद्द कर दी गई क्योंकि DPP कार्यालय ने इसका विरोध किया था, इसलिए जिनो मिटन 8 जून तक हिरासत में ही रहेगा। याद आपको बता दें कि रिशलियो के इस निवासी जिनो मिटन, जो पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है और मनी लॉन्डरिंग के मामले में सशर्त रिहाई पर था, ने 19 मई को सैंखवा में प्रदीप चिकोरी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं प्रदीप चिकोरी की 12 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा था।

विदेश में दक्षिण और पूर्वी लबनान में इजरायली हमलों की तीव्र लहर में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। ये तब हुआ जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज करने का संकल्प लिया। लबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ताज़ा हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से अधिक ठिकानों और लड़ाकों को निशाना बनाया। ये अप्रैल के मध्य में अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद ऐसे सबसे भारी बमबारी वाली रातों में से एक थी। ये कार्रवाई उस बयान के बाद आई है जिसमें नेतन्याहू ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने हिजबुल्ला को निशाना बनाने के लिए और अधिक कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय तथा दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे तथा देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर रहकर वर्षा होगी। रात को भी मौसम कुछ खराब रहेगा और देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश होने का अनुमान है। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:36 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा।

0: 6:48 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खी, यहाँ एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रीय सभा में किया। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस की शुरुआत की। राष्ट्रीय सभा में सांसद जुआना बेरांजे और श्रम मंत्री गिजाउद्दीन के बीच तनावपूर्ण क्षण के बीच स्थिति को शांत कराने के लिए स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद को हस्तक्षेप करना पड़ा। सांसद लुदोविक काजियान ने ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन से सार्वजनिक भवनों पर बिजली उत्पादन के लिए सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने की संभावनाओं को लेकर सवाल किए। जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्तमान में मॉरिशस और रोड्रिग्स के कई सार्वजनिक भवनों में 11 मेगावाट की परियोजना की योजना बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र की ग्रीन क्लाइमेट फंड में 660 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। मध्य अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद सभी प्रोटोकॉल लागू हैं। 2014 से तैयार किया गया इबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज करने के संकल्प के परिणाम स्वरूप दक्षिण और पूर्वी लबनान में इजरायली हमलों में दर्जन लोगों की मौत। 6:50 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: शोक समाचार सुनिए। तोहाबाली रोड गुडलैंड्स में, तोहाबाली रोड गुडलैंड्स में 82 साल की 82 years old बीबी रशीदा नूरदोली पैदाशी नाम लाल मोहम्मद और जिन्हें लोग मामा इंजा नूरदोली नाम से जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन की 11 बजे इनके मकान तोहाबाली रोड गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। मामबहाल लेन बाशेरी में 87 साल की 87 years old श्रीमती विरासपति खिरोदर पैदाशी नाम दोदी और जिन्हें लोग नानी नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे परमानंद राम दोहर के मकान मामबहाल लेन बाशेरी से उठाकर बाशेरी किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नेहरू रोड पे चिजरीली में 46 साल की 46 years old श्री शैलेश कुमार की सुंदयाल जिन्हें लोग बबलू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज दिन के ढाई बजे इनकी पत्नी श्वेता की सुंदयाल के मकान नेहरू रोड पे चिजरीली से उठाकर गौंद रोजाली किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। सिमेट्री रोड सैं कॉन्स्टेंस सैं पियर में 73 साल की 73 years old श्रीमती पद्मावती परिस पैदाशी नाम शाम और जिन्हें लोग चाची माजो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके मकान सिमेट्री रोड सैं कॉन्स्टेंस सैं पियर से उठाकर सैं कॉन्स्टेंस सैं पियर ही किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। निकोलसन रोड वाकुआ में 70 साल के 70 years old श्री सुभाष चमन जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के सवा दो बजे इनके मकान निकोलसन रोड वाकुआ से उठाकर फिनिक्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। सुखदेव बिसुंदयाल स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 75 साल के 75 years old श्री कृष्णा रिसोल जिन्हें लोग उदय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है आज दिन की 11 बजे इनकी पत्नी ललिता रिसोल के मकान सुखदेव बिसुंदयाल स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। स्टीवनसन स्ट्रीट सुयाक में 69 साल के 69 years old श्री ज्ञानदेव गुरखान जिन्हें लोग देव प्रोफेसिया नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान स्टीवनसन स्ट्रीट सुयाक से उठाकर सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और माउंट मानी पेरिस फ्रांस में 75 साल के 75 years old श्री महेश दुकरन की मृत्यु हो गई है। वे पहले मोसल मकुंजु प्लेंडे पपाई के रहने वाले थे। इनके अर्थी कल गुरुवार को दिन के डेढ़ बजे लोपिटाल पीछे साल पथरिया मोटमाई पेरिस फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशेरोल विल्टानेज किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: NBC Radio.TV. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: हेलो जी, गुड मॉर्निंग. सुबह के 7:07 आज हैं 27 मई, वेडनेसडे का ये खूबसूरत सा दिन है. आप भी सोच रहे होंगे विदिता को क्या हुआ, बीमार हो गई क्या. ऐसे रोमांटिक गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत क्यों? क्योंकि हमारे सीने में दिल है. हम जानते हैं, हम समझते हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग में अपने कंबल को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है. और ऐसे में अगर मैंने शोर शराबा किया तो आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा और पूरा दिन खराब हो जाएगा. इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज प्यार से आपको जगाया जाए. अभी हैंगओवर खत्म हो गया हो नींद की, तो आगे बढ़े. सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन. सुबह के 7:08 मैं हूँ विदिता, आपका साथ देने के लिए आई हूँ आपके अपने मॉर्निंग बीट में. और यहाँ मॉर्निंग बीट में आपको पता है यहाँ पर हम सारे स्ट्रेस को पकड़ पकड़ के ऐसे बीट करते हैं, ऐसे बीट करते हैं कि वो हमारी लाइफ में दोबारा नहीं आते. तो चलिए मैं आपका वेलकम करती हूँ रेडियो मस्ती पर और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम ठीक ठाक, एकदम फिट एंड फाइन है. हमारे इस आज के प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आपके लिए गेम्स ही गेम्स हैं, यानी कि जीतने का इनाम, आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं. तो साथ रहिएगा और गेम्स थोड़ी देर में शुरू करेंगे. फिलहाल अभी जो नींद से जागे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भाई करे तो क्या करे, बेटा पहले आँखें तो धो ले, फिर उसके बाद शिगर ऑफ. जो भी टेंशन है, आज का दिन एकदम मस्त रहने वाला है.
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2, Radio Musty in the mix.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Ougay, ça vous pas faire popcorn là? Astier! Si me dis ok popcorn, c'est nouveau façon pour gagner cashback le shopping. Ou sautez tellement content, non? Et ça cashback là? Ou capable transférer direct le compte la banque et l'air là? Ou décider que ça n'a pas pour faire content avec ça t'y casse là? Allons, pas tarder! Download application popcorn depuis Play Store ou App Store, scan ou ban récit paiement si, et si dans le panier n'a pas produit qui rapporte tout popcorn. Ça fait bon! Popcorn! Fais la bouse d'où? Vite, follow popcorn mon slow Facebook.
3: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans tout ban Winners.
2: Et promotion, bidoune balle. Un concombre pour 29,95 €. Un betterave pour 29,95 €. Un filet 500 grammes citron pour 39,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €.
3: Ban prix là, Bazaar Moudirou. Rendez-vous Gekot Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
4: On est tous Winners.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
5: चलिए जी यहाँ पर अब सवाल हम करेंगे जवाब आप देंगे रेडियो मस्ती पर हमारा जो गेम का सिलसिला है ये शुरू होता है सो ध्यान से सुनिएगा और मुझे सही जवाब दीजिएगा अभी हम खेल रहे हैं आपके साथ सो अगर आप मुझे सही जवाब देते हैं आपको मिलता है एक वाउचर वर्थ 500 रुपीज़ ऑफर्ड ओके 500 रुपीज़ मखामी ऑफर्ड बाय MG इवेंट्स ऑफ मान ओके सो आपको मिल रहा है गिफ्ट वाउचर ऑफ 500 रुपीज़ मखामी ऑफर्ड by MJ Events of Man तो आपको मैं बताऊं कि यहां पर आपको मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा आपको मुझे बताना होगा कि दिव्या भारती जी हां दिव्या भारती ने बॉलीवुड में किस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी जी हां आपको मुझे बताना है कि दिव्या भारती ने किस मूवी के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी जल्दी से जवाब भेजिए 5491294 पूरे नाम और पते के साथ
1: RM2
6: Radio Musty

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही एक आसान सा सवाल हम लेकर आए हैं और हमारी कोशिश यही रहती है ना कि हम बाकी हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी मौका दे कि वो भी हमें सही जवाब दे, वो भी यहाँ पर इनाम जीत के जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है, सो थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों ने इतनी भी कोशिश की कि वो मुझे उस फिल्म का भी नाम बता रहे हैं जिसके साथ उन्होंने पहली बार एक्टिंग शुरू की थी, लेकिन मुझे आपको बताना था कि वो कौन सी बॉलीवुड मूवी है जिसके चलते उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। एंड द राइट आंसर इज विश्वात्मा, जो 1992 में आई थी और इस मूवी में उनका किरदार था आज कुसुम वर्मा। उन्होंने सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और साथ में चंकी पांडे, सोनम के साथ काम किया। और ये जो गाना है सात समुंदर, आपको शायद पता होगा कि इस गाने के साथ वो काफ़ी फेमस हो गई थी, जिसके चलते उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर में कई सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको मौका देते रहें कि आपको यहाँ पर इनाम जीतने का अवसर मिले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो विनर है हमारे वो कौन है। सो लकी ड्रॉ के बाद लीजिए, हमारे पास नाम आ गया, लकी विनर है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया विश्वात्मा, ये है सुलेखा दावलोर और आप प्रत्यम ब्रह्मस्थान। कॉन्ग्रेचुलेशंस सही जवाब देने पर, आपको एमबीसी के साथ खेलने पर आपको मिल रहा है गिफ्ट वाउचर ऑफ 500 रुपीज मखा में ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफ मान। थैंक यू सो मच। हम आपको बता दूं कि आपका जो वाउचर है उसको पोस्ट कर दिया जाएगा, सो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको हमारी एक प्रोडक्शन असिस्टेंट कॉल करेगी थोड़ी देर में सारी डिटेल्स के लिए।
1: RM2 Radio Musty.
0: Hit music only.
3: Radio Musty feels a musty.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: अभी एक और इंटरेस्टिंग गेम के साथ हम आ गए हैं. गुड मॉर्निंग, दिस इज विनीता. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती मॉर्निंग बीट विनीता के साथ. तो यहाँ हम अब खेलने जा रहे हैं फॉर्मलैंड के साथ. हमने आपको कई सारे हिंट्स दिए हैं, हमने आपको बताया है कि हमारे इस एक प्रोमो चलाएंगे हम, जिसके अंदर आपको मिलेगा तीन टैगलाइंस जो कि आपको मुझे फ़ोन करके बताना है. तो जिन लोगों ने मिस कर दिया, आपको मौका फिर दे रहे हैं हम, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि और ज्यादा आसान, और ज्यादा तैयारी, और ज्यादा स्वादिष्ट. तो इसका क्या है ना कि आपको हमारे साथ खेलना है और फिर उसके बाद सुनना है अच्छे से और नोट करना है, फिर हमें कॉल करना है 4028035 पर पर और रिपीट करना है वो टैगलाइन, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है प्रोमो में वैसा ही बताना है. मैंने उसका अनुवाद आपको सुनाया है. तो अगर आप लोग रेडी हैं तो सुने.
3: Merci Madame Sheila. Et Formelaine, nous gagnons beaucoup plus.
4: L'habitude qui jamais pousse en zé, mon tea time avec Formelaine.
3: Ah ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smart.
4: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formelaine.
3: Mmh, où fais-moi faire?
4: Astérix Formelaine Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
3: Astérix Formelaine, nous gagnons encore beaucoup plus.
4: Formelaine, ça même nous smart choice.
2: देखा भाई, मदम शैला ने सारे डिटेल्स दे दिए. अगर आपने ध्यान से सुना है तो जल्दी करो, फोन करो, हमसे बात करो और हमें बताओ कि वो तीन टैगलाइंस कौन से हैं. नंबर है 4028035.
1: RM2 Radio Musty in the mix. Radio

0: अरे भले बाजार ये अकेली थोड़ी न गई है, हमारी पूरी टीम गई है। हम सबको ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर कौन है जो हमें देगा सही जवाब। हमने आपको सुनाया बिल्कुल एक प्रोमो जिसमें टैगलाइन थे तीन और आपको मुझे बताना था कि ये तीन टैगलाइंस कौन से हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हाय,
0: हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है हमसे बताइएगा।
1: मैं सुल्ताना हूँ।
0: हाँ जी बताइए, कहाँ से बोल रही हैं आप? ओके, और आपने हमारा प्रोमो सुना?
1: जी, एवरी सुनती हूँ।
0: ओके, तो बताइए जवाब क्या है?
1: अब एक फॉर्म लाइन नौको पुलिस से टास्क जिले एक इलाफा में के नौको पर इतने नखे को फोटो अब एक जिले फॉर्म लाइन ये अब शुक्रिया अक्षय कुला शुक मुझे नौको पुलिस पूरा फॉर्म को अंजाम को
0: हमने तीन टैगलाइंस मांगे थे तीन टैगलाइंस मांगे थे, आपने एक भी नहीं दिया उसमें, क्योंकि इसमें तीन टैगलाइंस थे। आई एम सो सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मौका देते हैं किसी और को, अगर उनके पास जवाब है तो जल्दी से फोन करें। थैंक यू सो मच।
2: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो आरएमटी
3: रेडियो मस्ती।
0: जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आपसे पूछा था, हमने आपको तीन टैगलाइंस दिए थे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक और श्रोता है, क्या वो हमें जवाब दे सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
4: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, आपका नाम?
4: मनीषा।
0: मनीषा कहाँ से?
4: मेजिन से।
0: मेजिन से। मनीषा आपके पास वो तीन कौन से टैगलाइंस है? कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पर। एंड हम यही कहते थे कि इसमें तीन टैगलाइंस हैं जो आपको यहाँ पर हमें देने हैं, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड अभी फार्मलैंड के साथ देयर इज सो मच मोर फन, यहाँ पर आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फार्मलैंड मिल्क, फैमिली सीरियल, हॉट चॉकलेट, ये सारी चीज़ें हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस, यू आर विनिंग अ स्पेशल फार्मलैंड गिफ्ट हैम्पर जिसमें फार्मलैंड हॉट चॉकलेट, फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फार्मलैंड मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग है। और मैं आपको कि आपको एमबीसी आकर अपने आईडी कार्ड के साथ ये जो गिफ्ट हैम्पर है उसे कलेक्ट करने आना है। सो आपके सारे डिटेल्स जो हैं हमने नोट कर लिए हैं, एंड आपको थोड़ी देर में हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट कॉल करके सारे डिटेल्स देंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग और थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय
3: बाय।
2: RM2
3: Radio Musti.
5: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu bain de parfum? Tu l'auto aussi bain de parfum? Tu sale de bain si bain de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandal à le kick? Pis toi l'im sandal 24-7 toi?
6: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fic tes beaux qui celle-là.
5: Allo kick gel air fresh no pocket sized? Astier, me comprend. Tu mets air fresh no dans ton postement sportou.
6: Vrai même, t'es bien comique toi, hein? Allez, essaye tout. Allo kick, peine à ce deuxième sans bosser.
7: Allo kick, freshness anytime, anywhere.
8: Pour la fête des mets à Côte Métrique, fais ou maman plaisir avec un joli moment de bien-être. Et n'a jusqu'à 50% réduction jusqu'au 7 juin dans tout bon showroom Métrique pour Mama Deals. Métrique, une enseigne du groupe Carinji.
9: 45 millions de roupies au loto et les tirages, c'est dans quelques heures seulement. Le jackpot du Loto Plus est estimé à 6 millions de roupies, tandis que celui du loto donne le vertige. Avec environ 45 millions de roupies. 45 millions de roupies au loto ce soir. Cette semaine, c'est celle de la fête des mères. Voyez plus grand qu'un cadeau cette semaine. Partagez l'émotion d'un rêve possible.
10: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musti.
0: अरे रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे पास और एक मौका है किसी को खुश करने का। आपकी बारी, आप जिनका बर्थडे है या तो फिर आपका ही बर्थडे है तो आप अपना नाम मुझे भेज दो। जी बिल्कुल, हम खेल रहे हैं लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से और यहाँ पर हमारे जो लिसनर्स हैं जिनका आज बर्थडे है, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आज मेरा बर्थडे है, आज मुझे भी तो यहाँ पर गिफ्ट मिलना चाहिए, तो आप ऐसा करो या तो फिर आप अपना ही बर्थडे अपना नाम मुझे लिख के भेज दो, या तो फिर अगर आसपास में किसी का बर्थडे है ना और आप सोच रहे हो कि भाई कोई बात नहीं, हमारा तो हमारी खुशी तो दूसरों की खुशी में ही है, तो ऐसा करते हैं आज इनका जन्मदिन है, आज इनका नाम और इनका फोन नंबर हम भेज देते हैं, क्या पता लकी ड्रॉ में इनका नाम आ जाए और लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से ये वाउचर उनको मिल जाए। तो जल्दी करें और उनका फोन नंबर और साथ में उनका नाम भेजिए ऑन 5499124।
3: वेलकम टू रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
11: Radio Musty feels a musty.

0: हाँ भाई जानती हूँ कि ये सर्दी का मौसम है, लेकिन इतना देर से सोने का क्या मतलब हुआ? टाइम पे जाग जाना चाहिए ना, स्पेशली जिन लोगों का बर्थडे होता है उनको चाहिए कि वो जल्दी से जाग जाए, लेकिन वो जागते नहीं है। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं इनको उठाने की। शायद काम पर भी होंगे, शायद ये बस में भी होंगे। कभी कभी बस में भी लोग क्या करते हैं ना, वो जो विंडो सीट होता है वहाँ पर चले जाते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं कुछ पल के लिए। चलो दुनिया से दूर अपना और अपना ये जो विंडो सीट है इसका मजा लेते हैं। तो अभी हम कॉल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आज जिनका नाम यहाँ पर आया है, चलिए एक और कॉल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक और नाम आया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम जगा दें और उनको हैप्पी बर्थडे विश कर दें, लेकिन शायद वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जिनका आज बर्थडे है, चलिए उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ये है प्रणव पांडू, उनको हैप्पी बर्थडे उनकी मम्मी की तरफ से, उनकी मम्मी भारती और उनकी पूरी फैमिली की ओर से।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम रेडियो मस्ती।
0: भाई हम तो बूढ़े मूड में आए थे कि आज इनसे गाना ही गवाएंगे, लगता है पता नहीं कहीं ना कहीं इनको मेरे मन की बात पहुंच गई होगी। बोला ये लड़की से पंगा लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, भारी पड़ेगा, अभी पूरा मॉरिशस सुन लेगा मुझे गाना गाते हुए। कोई बात नहीं, प्रणव पांडू आपको हैप्पी बर्थडे, और आपकी मम्मी अभी सुन रही है। तो मम्मी जी आपको पता है ना क्या करना है, प्रणव को चाहिए कि वो अपने आईडी कार्ड के साथ एमबीसी आए, और आपके पास मौका है आज नहीं तो कल, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर आपको आना है और यहाँ पर आकर अपना जो वाउचर है वो ले जाना है। सो लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हैप्पी बर्थडे और हमारी ओर से भी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए हमारे दोस्त अरविंद भी रेडी हो गए हैं, उनसे मिल लेते हैं।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स,
4: स्पोर्ट्स न्यूज,
5: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: वैसे यहाँ पे अरविंद इशारा कर रहा था, तेरी बकबक खत्म हो गई तो मैं शुरू करूँ। हाँ भाई प्लीज कम, बैठिए, आइए चाय वाय पीजिए, नहीं पहले स्पोर्ट्स न्यूज। गुड मॉर्निंग अरविंद।
6: वेरी गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग आरएम2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम

0: किसी बड़ी यूरोपीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मैच आरबी लेप्ज़िग के मैदान रेड बुल अरेना में खेला जाएगा 11 बजे। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस का सफर अच्छा नहीं रहा, केवल 15वां स्थान 15th प्लेस पर यूरोपीय मंच पर टीम ने शानदार खेल दिखाया है। इस्माइला सा 9 गोल स्कोर करके इस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर है। कोच ओलिवर ग्लासन का ये आखिरी मैच होगा। रायो वालेकानो लालीगा में 8वां स्थान ले पाया था, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है और जो जीतेगा ये मैच सीधे यूरोपा लीग का टिकट ले जाएगा। कल इंटरनेशनल फ्रेंडलीज भी खेले गए। मोरक्को ने 5-0 से बुरुंडी को हराया और नाइजीरिया 2 जिम्बाब्वे 0। यूईएफए अंडर 17 चैंपियनशिप में इटली 1 फ्रांस 0 मोंटेनेग्रो 1 डेनमार्क 2। फ्रांस में प्ले ऑफ सेंटेचेन 0 निस 0। फ्रांस न्यूज, ट्रांसफर बाजार में कई क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाड़ी एलियट एंडरसन के लिए तिजोरी साफ करने के लिए तैयार हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहला कदम उठाया है पर खबर है मैनचेस्टर सिटी लीडिंग द रेस। इंग्लैंड में रिकॉर्ड फी हो सकता है ये, एक बरतानी खिलाड़ी के लिए अभी रिकॉर्ड 105 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग है जो आर्सेनल ने चुकाया था डेक्लिन राइस के लिए 2023 में। आर्सेनल का टारगेट है एस्टन विला का मोर्गन रोजर्स, लेकिन एस्टन विला चैंपियंस लीग में है, शायद उसे नहीं बेचा जाएगा। लिवरपूल और पेरिस सेंट जर्मेन रेस में है आरबी लेप्ज़िग के खिलाड़ी आइवरी कोस्ट से यान जियोमांदे के लिए। कोवेंट्री के मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड को लीग मैनेजर्स एसोसिएशन मैनेजर ऑफ द ईयर चुना गया। कोवेंट्री के साथ प्रीमियर लीग में आया, लीग टाइटल जीता, लैम्पार्ड का ड्रीम सीजन। वैसे इस अवार्ड को, इस ट्रॉफी को सर एलेक्स फर्गुसन अवार्ड नाम दिया गया है। टेनिस फ्रेंच ओपन में यानिक सिनर ने आसानी से अपना फर्स्ट राउंड मैच जीता। सिनर ने फ्रांस के क्लेमेंट ताबुयर को 6-1 6-3 6-4 से हराया। कल सबालेंका, सित्सिपास, कोको गोफ, वाटसन, ओसाका, कालिंस्काया, ओग अलिसिमे ये सभी जीत पाए। मेदवेदेव और पेगुला की हार हुई। आज इगा श्वातेक खेलेगी बेचलेक के खिलाफ। वितोलिना ग्वेवेदो, जोकोविच, रोयर, मचाच, वेरेज, डेमिनो, ब्लॉक्स, पाउलिनी, सेरा ये कुछ महत्वपूर्ण मैच हैं। क्रिकेट आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्वालिफायर वन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराया, 92 रन, करारी शिकस्त देकर सीधे फाइनल में जगह बना ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 254 का टारगेट रहा और इसमें कप्तान रजत पतिदर 33 गेंदों में 93 रन बना पाया, 33 balls 93 runs। विराट कोहली 43 रन पर आउट हुआ। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का दूसरा फाइनल है। गुजरात टाइटन की टीम अभी आउट नहीं हुई है, आज एलिमिनेटर वाला मैच होगा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। जो जीतेगा सेमीफाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जो हारेगा आईपीएल 2026 को अलविदा कहेगा। दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। आज यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल क्रिस्टल पैलेस और रायो वालेकानो के बीच। और भूलिएगा नहीं, आई विल कैच यू एट 8:30 लेकर आएंगे चलो वर्ल्ड कप की ओर, द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।
1: Thank you so much. Thank you so much. Shubh din aapko bhi.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert. RM2.
3: Radio Musty. Feels a Musty.

0: veille chaque jour sur votre précieux cœur. C'est un petit geste simple, sain pour vous sentir bien, tout simplement. Flora, quoi qu'il arrive, protégez votre cœur.
1: 45 millions de roupies au loto et les tirages, c'est dans quelques heures seulement. Le jackpot du Loto Plus est estimé à 6 millions de roupies, tandis que celui du loto donne le vertige. Avec environ 45 millions de roupies. 45 millions de roupies au loto ce soir. Cette semaine, c'est celle de la fête des mères. Voyez plus grand qu'un cadeau cette semaine. Partagez l'émotion d'un rêve possible.
2: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
3: Chez McDonald's, nous pensons à toutes ces mamans qui se donnent à fond chaque jour, à la maison comme au travail. Ces mamans extraordinaires qui donnent le meilleur d'elles-mêmes avec leur énergie, leur sourire et cette façon unique de prendre soin des autres. Cette fête des mères, McDonald's vous dit merci. Et pour célébrer ces précieux moments en famille, profitez de nos offres disponibles dans tous nos restaurants, sur l'application McDonald's ainsi qu'à travers nos partenaires de livraison à domicile. Pour la fête des mères, Moms loving it chez McDonald's. McDonald's, Papa, I'm loving it.
4: Tech Mag, powered by
5: 365. Bien plus encore.
6: Police in London are increasingly using live facial recognition cameras in public spaces, and the technology is reigniting a major debate around privacy and surveillance. The system scans the faces of people walking through busy streets and compares them in real time against a police watch list containing thousands of wanted individuals. According to London's Metropolitan Police, the technology has already helped officers make thousands of arrests since the start of 2024, including suspects linked to violent and sexual offences. Supporters say the system is transforming policing and improving public safety, especially when tracking dangerous individuals using false identities. But critics argue the technology treats every passerby like a potential suspect, even if they have done nothing wrong. Civil liberties groups warn that widespread facial recognition could normalize mass surveillance in everyday life and raise serious concerns about privacy, freedom of movement, and even free speech. The debate intensified recently after the technology was reportedly used during a public protest in London for the first time. For now, British courts have ruled that the system can continue to operate legally, but the bigger question remains: how much surveillance are people willing to accept in exchange for security?
4: Tech Mag was powered by
5: 365. Bien plus encore.
7: RM2.
8: Radio Musty.
7: A good beat for your morning show. RM2.
8: Radio Musty.
9: हेलो जी, गुड मॉर्निंग. आई एम श्योर कि आपको अपने बर्थडे पे इतने सारे गिफ्ट्स नहीं मिलते होंगे जहाँ पर यहाँ पर हम रोज आपको देते रहते हैं. अभी जाने से पहले हम कहाँ जा रहे हैं, हम समाचारों की ओर बढ़े. आठ बजे भोजपुरी समाचार हैं, यू ऑलरेडी नो. हाँ, मुझे पता है. ऐसे गुस्सा क्या, स्माइल करो ना. हाँ चलो, मैं क्या बता रही थी कि आप लोगों ने MBC का जो नया MBC प्ले है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया ना, तो ऐसा करो, अगर आपने कर लिया तो आप 1.0 नया वाला, पुराना वाला नन्हे वाला, तो आपको चलो यहाँ पर क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजना है. और फिर हम लोग क्या करते हैं, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर जो है उसको हम एक छोटे से चिट में डाल के उसको लकी ड्रॉ के लिए रखते हैं. तो अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे. मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, चलो हमारा भाई साहब तो आ गए हैं यहाँ पर, और डिटेल्स के साथ उन्हीं को सुन लेते हैं.
10: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot des tickets chacun pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé ce compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone-le au 400D 8000. Conditions applicables.
7: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
8: RM2, Radio Musty, in the mix.
11: Deezer, ready.
9: चलो भाई सारी डिटेल्स आपको मिल गई है, तो जल्दी करो अगर आपको हेलीकॉप्टर में घूमने जाना है। दो लोगों को मौका मिल रहा है, 29 को लकी ड्रॉ होने

वाला है, जल्दी करो अपना एसएमएस का स्क्रीन शॉट भेजो, एमबीसी प्ले 1.0 भूलिएगा नहीं। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब समाचारों की और मिलते हैं उस पार थोड़ी ही देर में। अभी के लिए अंदर में जो खली भली मच रही है उसमें थोड़ा सा और हम फायर लगाते हैं और आपको थोड़ा सा और इनर्जेटिक बनाते हैं। चलिए इस गाने के साथ मूड बनाइए, आगे बढ़ते चलिए।

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: 8 बजे हैं। सबको एक नमस्ते भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको एक स्वागत करते हैं जहाँ कंस्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन खासकर के गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव खातिर एगो इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करे के प्रस्ताव पर विचार करी जेकर उद्देश्य हर राजनीतिक स्थिरता राष्ट्रपति पद के वैधता और राज्य प्रमुख के निष्पक्ष और एकजुट करे होला भूमिका में जनता के विश्वास के मजबूत करे के ई बात के घोषणा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम काल राष्ट्रीय सभा में करलन। राष्ट्रीय सभा में सांसद जुआन अबे रंगे और रेशम मंत्री रिजा उद्दीम के बीच तनावपूर्ण क्षण देखे के मिलल काल और स्थिति के शांत करे खातिर स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद के हस्तक्षेप करे के पड़ल। सांसद लुडोविक काजियन ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन से सार्वजनिक भवन पर बिजली उत्पादन खातिर सौर्य फोटोवोल्टाइक पैनल लगाए की संभावना के लेके सवाल करलन। अपन जवाब में मंत्री पत्रिका सेवादेन बोलन की वर्तमान में मॉरिशस और रोड्रिग्स के कयन को सार्वजनिक भवन में 11 मेगावाट के परियोजना बाते संयुक्त राष्ट्र की ग्रीन क्लाइमेट फंड और मॉरिशस सरकार द्वारा इस परियोजना में करीब 660 मिलियन रुपये निवेश करल जाए। मध्य अफ्रीका में एबोला वायरस के मामला बढ़ते जाता और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करल गल। मॉरिशस में कोनो संदिग्ध मामला से निपटे खातिर सभी प्रोटोकॉल लागू करल गल बा। 2014 से तैयार करल गल एबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान के फिनो से सक्रिय कर देवल गल बा। दूसर देश के खबर में लबनान में भीषण हमला में 31 जना के मौत होल बाते बेन्यामिन नेतन्याहू हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई तेज करे के निर्देश दिल्ली हवन। तकरी संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
7: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
8: Morning Beat. A good beat for your morning show.
9: James.
5: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: नीरज गुप्त मधु, क्या बात है, मूड में आ गए सब।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो भाई, मैं तो कहती हूँ बोले कराए मिल जाए तो उसमें थोड़े से पकोड़े भी तल दो, थोड़ा चाय भी बना लो और हमसे मिलने आ जाओ। सुबह के 8:06, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, ये स्माइल देखी आपने चेहरे पे अपनी, हैं कभी देखा? अरे आईने में देखो देखो देखो देखो, स्माइल देखी आपने, कितनी अच्छी लगती है। सोचो जब आपको इतना अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं तो लोग आपको दिखे उनको कितना अच्छा लगता है। इसीलिए कहती हूँ ये खड़ूस वाली चेहरा बनाना बंद करो, हमेशा स्माइल करो। आपका स्माइल मैजिक का काम करता है औरों के लिए, और जब आप किसी को देखते हैं ना स्माइल करते हुए तो हाय क्या बात है, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन से निकल कर चलते हैं, मिलते हैं पूजा से, देखते हैं कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है। हेलो, चलिए मिलते हैं।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं और पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी। रात को बादल कुछ घिर आएंगे, खासकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, आदि इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
4: Béala, Wednesday Bazaar, logue et cote winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans deux bonnes winners.
5: Et promotion, bidoun bal. Un concombre vert pour 29,95 €. Un betterave pour 29,95 €. Un filet 500 grammes citron pour 39,95 €. 500 grammes blanc cuit sec, aile de poulet frais pour 104,95 €.
4: Pas de prix là. Bazaar, Moudirou. Rendez-vous cote winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous winners.
1: Morning Beat.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: 102. Radio Musty.
1: À qui mettre à pied, on s'amuse, on s'amuse.
2: Et oui, en ce moment, ton Cheeky Fun Meal t'emmène en forêt à l'Ebony Forest de Chamarelle. Découvre en pleine nature les plus beaux panoramas, un musée d'histoire naturelle ainsi qu'une visite guidée de 30 minutes. Alors, en avant, marche !
1: 2 km à pied, on s'amuse.
3: Protézou contre l'heptospirose. C'est une maladie dangereuse. Ils transmettent à travers les rats, sat, les chiens, CF et BF. Ban symptômes comme douleur musculaire, douleur à la tête, gros la fièvre, frisson, vomissement, diarrhée et clazonis associés à sa maladie-là. Ban symptômes-là, li apparaît en 2 à 30 jours. Pour protézou contre sa maladie-là, pas besoin les ban manger découvert. Protézou ban aliments contre ban les rats et les autres onzés. Protézou ou la main, les pieds, les yeux et néné avec ban équipement comme les gants, boot, masque et lunettes spéciales, si et tout si vous travaillez aux animaux et accumulation des lots. Pour plus de détails sur leptospirose, contactez Ministère de la Santé et Bien-être, le 89 24. C'est un communiqué Ministère de la Santé et Bien-être.
4: Come and celebrate Mother's Day with RM2 this Saturday, 30th of May at Fabulous Strand, Nouvelle-France. Special Mother's Day promo of 30% discount on all items. Surprises, gifts and a buffet will be served for everyone present. RM2 will be live as from 5 p.m. to 10 p.m. So don't miss out!
5: Hey, Bombo! Pele, qui numéro? 10? Maradona.
6: 10.
5: Platini.
6: 10.
5: Johan Cruyff.
6: B 10.
5: Ronaldinho.
6: 10.
5: Zidane.
6: 10 ta.
5: Wayne Rooney.
6: 10.
5: Messi.
6: 10 Lizzy.
5: Mbappé.
6: 10.
5: 10. C'est pour ban best player ça.
6: Ben oui.
5: Et stay tuned. Jigala Chanoussi pour amener ce 10 là.
0: RM2.
3: Radio Musty.
0: Morning Beat.
3: James. RM2, Radio Musty, in the mix.
0: A good beat for your morning show. RM2,
3: Radio Musty.
7: Welcome to Radio Musty. Hey guys, कैसे हो आप? मूड ठीक है ना? अभी काम पर जाना है. देखो आज वेंसडे है, हम वीक तक पहुंच गए हैं और बस दो दिन, उसके बाद तो वीकेंड आ ही जाएगा. और चलिए, यहाँ पर अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल और आपको मुझे देना होगा जवाब. याद रखिए कि अभी हम आपको इनाम नहीं दे रहे हैं, आपका नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा क्योंकि 29th को एक ड्रॉ होने वाला है. तो यहाँ पर आप MBC के साथ खेलेंगे और आपको मौका मिलेगा जीतने का एक वाउचर, मौका मिलेगा जीतने का एक वाउचर वर्थ 4,000 रुपीज प्लोंजी सुमारिन ऑफर्ड बाय MG इवेंट्स ऑफ मान. सो यू कैन जॉइन अस एट कैप्टन मिमीज डाइविंग सेंटर एट द थ्रो बीच आज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. आप वहां डाइव कर सकते हैं, ये एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है. एंड ज़्यादा डिटेल्स के यू कैन कॉल ऑन 5713-6761. ड्रॉ जो है फ्राइडे 29th ऑफ मे को होगा और ये वाउचर आपको मिल सकता है. तो अभी आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा, ठीक है? तो आपको मुझे ये बताना है कि एक मूवी आई थी जहां पर आमिर खान है और करीना कपूर है. जी हाँ, आमिर खान है और करीना कपूर है. और इसमें क्या होता है कि पुलिस की जो वैन है वो पानी के अंदर चला जाता है और करीना जो है वो आमिर खान को वहां से बाहर निकालती है. अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी मूवी है. आमिर खान और करीना कपूर की ये मूवी है जहाँ पर लास्ट में पता चलता है कि करीना जो है वो इंसान नहीं थी. तो अभी जर में दर्द नहीं होगा, आपको पहले से ही पता है कि ये कौन सी मूवी है. कोई बात नहीं, अगला गाना जो होगा आपके सर को दूर, आपके सर दर्द को दूर कर देगा. आप जल्दी से मुझे बताइए कि ये कौन सी मूवी है जिसमें आमिर खान और कर, क्या बात है, देखो मैसेजेस आने शुरू हो गए, यानी कि आपको पहले से ही पता है आमिर खान, करीना कपूर और इसमें उनकी वैन जाती है पानी के अंदर और करीना उनको बाहर निकालती है. इसमें आमिर खान पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं. जल्दी से जवाब दीजिए 5491294 पर.
0: मॉर्निंग बीट. ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स. अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो जी, यहाँ पर अब हमने तो आपको बता ही दिया कि कहानी क्या है, और बहुत ही आसान था क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आपसे सवाल कर ही रही थी, यहाँ पर 18 मैसेज तो वैसे ही आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों ने चूज़ किया, देखते हैं कि ड्रॉ किया कि भाई किसका नाम आता है। सारे नाम हमने लिख दिए, बस एक दो नाम लिख दिया। हाँ, लिख दिया, चलो ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर किसका नाम आता है। हमने आपसे सवाल किया था और हमारा सवाल बहुत ही आसान था। आमिर खान, करीना कपूर, एक थ्रिलर मूवी आई थी और उसमें आपको मैंने बताया था कि आमिर जो है उनकी पुलिस की नौकरी होती है, पुलिस वाला होता है, उसकी वैन जो है पानी के नीचे जाता है और करीना उनको बचाने जाती है। ये करीना थी या उनकी आत्मा थी? आत्मा ही थी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, तलाश। एंड यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बने हैं सारिका जी। हाँ सारिका जी, हेलो जी सारिका जी, कैसी हो आप? आपका मैसेज मिला, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं कि आपका नाम जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है, क्योंकि हमारा एक बड़ा सा लकी ड्रॉ होने वाला है 29 मई को, फ्राइडे को, जहां पर अगर आपका नाम आता है, अगर यहां पर आप जीत जाते हो तो आपको मिल सकता है एक गिफ्ट वाउचर वर्थ 5000 रुपीज़। जी हाँ, 4000 रुपीज़ प्लॉन्जर सुमागिन ऑफर्ड बाय MJ इवेंट्स ऑफ मान, जहां पर कैप्टन मिमी डाइविंग सेंटर में आपको मौका मिलेगा जाकर इस मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस को जीने का, डाइव करना, वाह। और ये है डाइविंग सेंटर थ्रू ओबिश, मंडे टू फ्राइडे। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स 5713-6761। चलिए, तो आपका नाम हमने बड़े से ड्रॉ के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब वेट करते हैं फ्राइडे को, हो सकता है आपको मौका मिल जाए डाइविंग करने का और इनाम आपको मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट टू यू, और बाकी हम कल भी यही सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। देखते हैं कल किसका नाम आता है। भाई लकी ड्रॉ होने वाला है ना फ्राइडे को, तो थोड़ा इंतजार कर लो।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
6: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
3: दोस्तों, हम हमेशा सुनते हैं लोग कहते हैं कि इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे इसमें धोखा दे दिया। धोखा देना देने वाला हमेशा स्मार्ट नहीं होता है, कभी कभी बस किसी का सच्चा दिल उसकी आदत बन जाता है। जब कोई इंसान बार बार झूठ, फेक प्रॉमिसेस या ट्रस्ट तोड़ता है तो प्रॉब्लम सिर्फ उसकी चालाकी नहीं होती, कभी कभी हमारा ओवर ट्रस्ट और प्यू इंटेंशंस भी रीज़न बन जाते हैं। धोखा सिर्फ प्यार में नहीं होता, दोस्ती, फैमिली और एक्सपेक्टेशंस में भी होता है। देखो भाई, अगर हम धोखे की डीप रियलिटी में जाते हैं तो धोखा अक्सर वही देता है जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ट्रस्ट टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द बहुत लाउड होता है। हर धोखा एक लेसन देता है। किसी को जल्दी अपनी दुनिया मत बनाओ, वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस देखो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कंप्रोमाइज मत करो। धोखा तुम्हारी वैल्यू कम नहीं करता, बस दूसरों की असली औकात दिखा देता है। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो और अपने से ज्यादा किसी और पे भरोसा करना बंद करो।
2: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sans tous audi, il a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il peint sa tasse. Il y a un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
0: Radio.

0: चलिए तनिक गार्डन से निकलते हैं और तनिक बाहर चलते हैं, मिलते हैं अरविंद से।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर। वर्ल्ड कप स्पेशल, गाना के प्रिलिमिनरी स्क्वाड में आर्सेनल के फॉर्मर मिडफील्डर टोमास पार्टी को नाम किया गया है, उसको रखा गया है स्क्वाड में। अभी पार्टी पर रेप और सेक्सुअल असोल्ट के आरोप हैं। पार्टी अभी विलारियल में खेलता है, अभी तक प्री वर्ल्ड ट्रेनिंग चल रही है। फिर वेल्स के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच, सिटी का स्ट्राइकर एंटोन सेमेन्यो, कोवेंट्री का ब्रेंडन टोमास असांते, लेस्टर से जॉर्डन आयु भी स्क्वाड में है। टोटनहम हॉटस्पर का मोहम्मद कुदुस इंजुरी के कारण स्क्वाड में नहीं है। वर्ल्ड कप स्पेशल में टॉप स्कोरर पर फोकस करेंगे। जर्मनी का मिरोस्लाव क्लोजे ऑल टाइम टॉप स्कोरर है 16 गोल्स के साथ, 16 गोल्स 4 वर्ल्ड कप में खेलकर। फिर आते हैं ब्राजील का रोनाल्डो 15 गोल्स, गर्ड मुलर 14, जुस्ट फोंटेन 13, लियोनेल मेसी के खाते में है 13 गोल, एम्बापे के पास 12। ये दोनों ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का

0: रिकॉर्ड जुस्ट फोर्टेन का है। ये 1958 वर्ल्ड कप में हुआ था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड, जिसे गोल्डन शू कहते हैं, किलियन एम्बापे ने जीता था 8 गोल के साथ। 2018 में हैरी केन 6 गोल्स, 2014 में रामेस रोड्रिगेज 6 गोल, ब्राजील से रोनाल्डो 2002 में 8 गोल, 1970 में गर्ड मुलर 10 गोल्स, 1966 में यूजेबियो 9 गोल और 1958 में जुस्ट फोर्टेन 13 गोल। ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है। इस बार स्वर्णिम जूता यानी गोल्डन शू किसको दिया जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, पर इतना कह सकते हैं कि धन धनाधन गोल, गोलों की बारिश होगी जरूर, क्योंकि इस बार 48 टीम्स भाग ले रही हैं। सो मोर मैचेस मोर गोल्स, और इसका मजा हम लेंगे जरूर इन द वर्ल्ड कप। हमारे साथ जुड़े रहिए, विल बी गिविंग यू ऑल द अपडेट्स।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: 37 चलिए इसी के साथ एक और गेम लेकर आ गए हैं। आज तो हम गेम ही खेल रहे हैं भाई, सुबह से गेम ही खेल रहे हैं। पता है कितना मजा आता है लोगों को गिफ्ट देना, और कोई जहाँ पे खुश हो जाता है, मैसेज आते हैं उनके यहाँ पर 5191294 पर। अभी मेरे पास आपको देने के लिए क्या है, आपको पता है मेरे पास क्या है? मेरे हाथ में है एक प्लैटिनियम टिकट। कॉन्सर्ट में कौन जाएगा? जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट है भाई, कौन जाना चाहेगा? द गेम इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स .mu। यस, सो स्टे ट्यून टू RM2 रेडियो मस्ती, एंड यहां पर आपको मौका मिलेगा जीतने का एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड म्यूजिकल सेलिब्रेशन। जी हाँ, यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन अ प्लैटिनियम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट। कौन जाना चाहेगा? देखो इतने सारे लोग हाथ ऊपर करें, अरे हाथ ऊपर करने से कुछ नहीं होगा भैया, आप स्टेयरिंग पे हाथ रखो और अच्छे से ड्राइव करो। हाँ ठीक है, बगल वाले हैं उनको बोल देना, मैसेज भेज देंगे। अभी क्या है ना कि 30 मई सैटरडे को उनका कॉन्सर्ट होने वाला है, और ये होगा रात 8 बजे SBICC। अब यहाँ पर जुबिन के साथ जो इवनिंग आप बिताने जा रहे हैं, ये जो म्यूजिकल सफ़र होने वाला है, इट्स रियली गन बी अनफॉरगेटेबल। अब करना क्या है, ये कॉन्सर्ट जो है प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद द टिकट बॉक्स .mu। आपको अगर अपना टिकट बुक करना है www.ticketbox.mu पर जाइए और अपना टिकट वहां पे बुक कीजिए। रिजर्वेशंस के लिए यू कैन कॉल द हॉटलाइन 214-6464। जुबिन नौटियाल के बारे में हम जितना बात करें उतना कम है भाई, लड़का पता नहीं कैसे कहां से आया, बस आया और छा गया। मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स में इनका नाम आता है, इन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं, इंस्ट्रूमेंट तो बजाते हैं गिटार पियानो हारमोनियम और ड्रम्स, और जिस तरह से अपने म्यूजिक को ये ब्लेंड करते हैं ना, चाहे रोमांस हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे खुशी हो, ये सबको इस तरह से ब्लेंड करते हैं कि आज ये इंडिया तो क्या, अब्रॉड में भी इनके इतने सारे फैंस हो गए हैं, कई सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। और हमने लास्ट टाइम आपसे सवाल किया था ना कि आईफा की तरफ से उनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, और गाना था राता लंबिया, रिमेंबर? ओके, चले तो यहाँ पर हम उनको सेलिब्रेट करें, उनके म्यूजिक को सेलिब्रेट करें हैं, और उनका जो स्टेज प्रेजेंस है भाई, इतने लंबे चौड़े आदमी है, मैं तो उनके सामने दिखते भी नहीं हूँ, पैर हटाना पड़ेगा, अरे हट विदिता किधर है, हाँ इतने लंबे हैं, मिले हैं ना हम उनसे। चलिए तो मैं आपको बताऊं कि आपको मौका मिल रहा है उनसे, बस हो सकता है मौका मिल जाए आमने सामने बात भी करने का, तो करना आपको क्या है, मेरे सवाल का जवाब देना है, आपको मुझे बताना है, जी आपको मुझे बताना है कि 2014 में जब उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक अपने बॉलीवुड में हिंदी म्यूजिक के साथ जब उन्होंने एंट्री की थी, तो उनका एक गाना आया था एक मुलाकात, 2014 की मैं बात करी तो एक गाना आया था एक मुलाकात, आपको मुझे बताना है कि ये किस फिल्म से लिया गया था। जी हाँ, आपको मुझे बताना है फिल्म का नाम ऑन 5491294।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: पर भाई यहाँ पे कोई बर्बाद नहीं, यहाँ पे जो भी आता है यहाँ बात ही हो जाता है, खुश हो जाता है मोगैम्बो खुश हुआ। देखो देखो जैसे मैंने बोला अभी ना मोगैम्बो खुश हुआ, कितने सारे लोग अभी स्माइल करने लगे। अभी मेरे पास और दो गेम हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई छूट गया तो कुछ और मिल जाएगा। हमने आपसे सवाल तो पूछा था बहुत ही आसान, एक गाना है एक मुलाकात जो 2014 में इन्होंने अपना जब डेब्यू किया था आज सिंगर तो उन्होंने गाया था। मैंने पूछा था फिल्म का नाम बताइए और यहाँ पर सही जवाब है सोनाली केबल, ये कौन सा केबल है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बने हैं, विनर बने हैं राजीव हरी फ्रॉम रमसान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आपको एक प्लैटिनियम टिकट मिल रहा है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ खेला। द गेम इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स MU और यहाँ पर आपको मिल रहा है मौका जुबिन का जो लाइव कॉन्सर्ट है उसमें शामिल होने का, जो 30 मई को हो रहा है रात 8 बजे एट SVICC Pie। और बस आपको यही कहेंगे थैंक यू सो मच, आपको हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट थोड़ी देर में कॉल करेंगे ये कहने के लिए कि आपको टिकट लेने आना है, कब आना है, कैसे आना है। और कंग्रेचुलेशंस आपको राजीव। चलिए इसी के साथ मैं आपको बता दूँ द गेम वॉज पावर्ड बाई ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स MU। और गेम थोड़ी देर में।
0: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2
1: Radio Musty.

इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग राइट जियाओ जियो। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो गाना है इसमें आवाजें किसकी हैं। जी हाँ, ये जो रिप्राइज है आपको मुझे बताना है कि ये जो गाना भी आप सुन रहे हैं इसमें अगर आप एक भी आवाज पहचान लेते हैं तो मैं आपको मौका देती हूँ जीतने का एक वाउचर वर्थ 800 रुपीज ब्यूटी ला फ्रांसेज, जो कि हाट सेंटर पॉइंट ट्रियानो में दिस मदर्स डे आपको मौका मिलता है ये वाउचर जीतने का। एंड डोंट मिस द चैंपियन लीग फाइनल लाइव एट सेंटर पॉइंट, जहां पर होंगे बड़े बड़े स्क्रीन और होंगी बड़ी सारी वाइब्स। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इन दोनों आवाजों में से आपने कौन सी आवाज पहचानी।

0: तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपको एक गाना सुनाया था, पूछा था कि इसमें आवाजें कौन सी हैं। जिया ओ जिया कुछ बोल दो। यहाँ पर सही जवाब है ज्योतिका टंगरी और रशीद अली, और सही जवाब हमें दिया है तन्मय शर्मा ने। आप रहते हैं मौताल बेयर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैं आपको बता दूं तन्मय, आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है मिसी के साथ खेलने पर एक वाउचर वर्थ 800 रुपीज। जी हाँ, ये है वाउचर कोड से ऑफ अ ब्यूटी आला फ्रांसेज एट सेंटर पॉइंट ट्रियानो। इस मदर्स डे आप अपनी मामा को भी खुश कर सकते हो और किसी भी मामा को आप खुश कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको कॉल करेंगी थोड़ी देर में, आपका जो वाउचर है पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा। एंड साथ में ट्रियानो सेंटर पॉइंट का जो ट्रियानो है वहाँ पे, नहीं ट्रियानो का जो सेंटर पॉइंट है, क्या हो रहा है मुझे अब, एक और गेम ना, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ वरना वो मिस हो जाएगा। तो चलिए, पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा आपको आपका वाउचर, और चैंपियन लीग्स आप भूलिएगा नहीं, फाइनल लाइव होगा सेंटर पॉइंट ट्रियानो में। एक और सवाल आपके लिए, चलिए बढ़ते हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए जी, रोजर्स कैपिटल की तरफ से आपके लिए यहाँ पर सवाल हम लेकर आए हैं, और अगर आपने मुझे सही जवाब दे दिया तो आपको मिल सकता है क्या, एक वाउचर वर्थ

1000 रुपीज फ्रॉम डोमिनोज पिज्जा। तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि ऑन विच एप्लीकेशन कैन यू मेक अ क्रेडिट परचेज एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन विच एप्लीकेशन कैन यू मेक अ क्रेडिट परचेज एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स। जल्दी कीजिए 549 and 1294 पे भेजिए जवाब।

0: यहाँ पर हमें हमारा विनर मिल चुका है, सही जवाब देकर विनर बने हैं विदिश बिहारी फ्रॉम Pichikong Phoenix. Congratulations, the right answer is Nula. On this application, you can actually make a credit purchase at Dragon Electronics. Vedita kehti aapko bye bye. Milenge hum kal morning mein, bhuliyega nahi. Aa jayenge 7 baje. Bye bye. Take care.
1: Welcome to RM2
2: Radio Masti.
3: Radio Masti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Masti.
1: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Masti.
1: Feel the Masti.
4: 9 baje hain.
0: आइए जुड़ते हैं 9 बजे के समाचारों के साथ. पूजा जी उपस्थित हो चुकी है. नमस्ते पूजा.
5: नमस्ते रत्ना. सभी को मेरा नमस्कार. कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रपति पद की वैधता और राज्य प्रमुख की निष्पक्ष और एकजुट करने वाली भूमिका में जनता के विश्वास को मजबूत करना है. इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में किया. और राष्ट्रीय सभा में ही सांसद जोआना बेरांजे और श्रम मंत्री रिजाउतीम के बीच तनावपूर्ण के बीच स्थिति को शांत कराने के लिए स्पीकर और मंत्री शकील मोहम्मद को हस्तक्षेप करना पड़ा. मध्य अफ्रीका में एबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस में किसी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए सभी प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं. 2014 से तैयार किया गया एबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है. जिनो मिटन 8 जून तक हिरासत में ही रहेगा. पोटलिस की जिला अदालत में जिनो मिटन की जमानत रद्द कर दी गई क्योंकि DPP कार्यालय ने इसका विरोध किया है. रिश्लियो का रहने वाला जिनो मिटन, जो पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज है और मनी लॉन्डरिंग के मामले में सशर्त रिहाई पर था, उसने 19 मई को सैंकवा में प्रदीप चिकोरी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं पीड़ित की 12 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है. वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा था. और एक महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद अजार प्याबोकस को सशर्त रिहाई मिल गई है. वो कल 25 मई को फ्लाक की जिला अदालत में पेश हुए और उसे 25,000 रुपये की 2 जमानतें प्रस्तुत करनी पड़ी. बेलिया स्थित त्वाहा अकादमी बोर्डिंग स्कूल के पूर्व निदेशक अजार प्याबोकस को 18 मई को विमान से उतरते ही गिरफ्तार किया गया था. उस पर दुर्व्यवहार से संबंधित कई शिकायतें दर्ज की गई थी. अदालत का मानना है कि पुलिस द्वारा उठाए गए आपत्ति सिद्ध नहीं हुए हैं. अपने निर्णय में मैजिस्ट्रेट अक्षय कुमार नंदलोल ने कहा है कि छेड़छाड़ का जोखिम किसी ठोस सबूत पर आधारित नहीं है, बल्कि पुलिस की केवल एक आशंका पर आधारित है, खासकर क्योंकि अधिकांश दस्तावेज और सबूत पहले से ही जांचकर्ताओं के पास हैं. एक और बात सामने आई है कि मुफ्ती को एकेडमी से हटा दिया गया है, जिसका ये मतलब है कि अब सामान्यतः उसके पास संस्था के दस्तावेजों तक कोई पहुँच या नियंत्रण नहीं है. आजार प्याबोकस ने वकील यतीन वर्मा की सेवाएं ली हैं. विदेश में लबनान पर भीषण हमले, 31 लोगों की मौत. बेन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. नमस्कार और शुभ दिन.
1: RM2 Radio Musty.
3: Hit music only.
2: Radio Musty feels a musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, good morning. 9:00 minute and आप सभी का स्वागत म्यूजिक दुनिया के अंदर जहां पर कोई वीजा पासपोर्ट नहीं, बस सेफली लैंड कीजिए और उसके बाद हम आपके साथ जुड़ जाएंगे. वीजा में देख रहा हूँ भाग रही है, दौड़ रही है और कह रही कि इतने सारे गेम से कि मेरा खुद गेम बच गया. अच्छी बात है ना, लेकिन लड़की बड़ी जोश लगाती है और पूरी जान के साथ जुड़ जाती है. ऑलवेज नाइस टू सी कि ये जो रिदम है, जो वाइब्स हैं, मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है. चलिए बाकी बताइए, हालचाल कैसे? ठंडी ठंडी महसूस हो रही है ना, सुबह उठना मुश्किल, हर किसी की यही है कहानी. लेकिन हम अपनी जारी रखें मुंह जबानी कुछ गानों के साथ. डोंट फॉरगेट, यहाँ पर हाउस होल्ड डेकोरेशन टिप्स, कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े किस्से, बॉलीवुड के हिस्से सब कुछ शामिल करने वाला हूँ मैं यहीं पर. जाना है कहाँ? ये संगीत का जहाँ.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चल जानते से तारीख चालू शुरुआत करते हैं with
2: Aries मेष राशि।
1: भाई आज का दिन रिश्ते में मिठास घोलने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल इतना शानदार होगा कि छोटी छोटी बातें भी खुशी दे जाएंगी। वैसे कहते हैं कि जो प्यार होता है ना वो डिस्टेंस में नहीं उस सफर में होता है, उस छोटे छोटे लम्हे में होता है जो आप एक साथ बिताते हैं। घर का माहौल प्यार और अपनापन से भरा रहेगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे और कर्म धर्म में भी काम कर सकते हैं, मन लगेगा। किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाकर आपको भीतर से सुकून मिलेगा। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला मन को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। वैसे परेशान में शान की क्या बात।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: मिथुन की बात करिए। अब नारियल पानी तो पीना ही पड़ेगा। भाग्य आपके पक्ष में खड़ा दिख रहा है। धर्म और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। मन को गहरी शांति मिलने वाली है। बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको सुकून देगा और बिजी माहौल के बीच में भी मुस्कुराने का मौका लगा दो चौका।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: भाई जीवन के अंदर सुख सुविधा ना हो तो मजा नहीं आता ना। काम क्यों कर रहे हैं, इतनी भागा दौड़ी क्यों, इसलिए कुछ करना जरूरी है। वैसे चमक तमक तो है आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन इसके बीच में आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर कदम सोच विचार करके।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो टाइम रहते काम कर दियो। सितारे आपको फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर खुश होते हैं और कुछ कहते हैं ये क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं साहब, किसी कर आप ऐसी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कोई जो करता है करने दीजिए, लेकिन आप अपना काम करते जाइए उसी मजबूती से, उसी आत्मविश्वास के साथ। सेहत से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी अब गंभीरता से आ रही है तो साथ में जाना जरूरी है, किसी के डॉक्टर से सलाह ले लीजिए।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं। घर में खुशियों की दस्तक सुनाई देगी। नॉक नॉक, अरे देखो बज गए 9 o'clock। परिवार के नए सदस्य के आने से खबर अच्छी हो सकती है, उत्साह देगी। प्रेम संबंध में थोड़ी सी संवेदनशीलता अच्छी होगी, लेकिन साथी की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। खुद अपने मन की करना हमेशा ना इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: अधिकांश समय पर आप अपना काम करते जाएंगे और यही बात आपको गंभीर संतोष देगी, इसलिए क्योंकि टाइम रहते जो काम हो जाए वो अच्छा है। व्यापार में अटकी हुई कोई बड़ी डील आखिरकार फाइनल हो सकती है। हालांकि किसी दूर के रिश्तेदार से जुड़ी कोई खबर मन को थोड़ा उदास कर सकती है। यात्रा के दौरान मिली कोई जानकारी भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए बेहतर साबितमंद हो सकती है। उसको छुपा के रखो, किसी को बता के मत रखो।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज का दिन ये सिखाया गया कि काम टालना कभी कभी बड़ा नुकसान दे सकता है। बुरे काम का बुरा नतीजा अब करे चाचा या भतीजा। करियर से जुड़ी कुछ परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही हैं और आपकी समझदारी आपको सही दिशा दिखाने वाली है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यू लिसनिंग टू द वेरी बेस्ट।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: भागा दौड़ी से भरा दिन है। नहीं, मैराथन नहीं भागनी, 100 meters काफी है, एक दिन में पूरी हो जाएगी। भाई भागा दौड़ी आगे चलकर सफलता का रास्ता खोलेगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए नए नए अवसरों के दरवाजे खोलती जाएगी। आय में सुधार होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज का दिन घर परिवार में सुकून और शांति लेकर आने वाला दिन है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और जीवन साथी का साथ आपको मजबूत बनाकर रखेगा। पारिवारिक मामले उनको बहुत ही आराम से संभालिए, बहुत ही नाजुक होते हैं। नहीं, व्यवसाय से जुड़ी कुछ आने वाली चुनौतियां मन में चिंता पैदा कर सकती हैं, लेकिन अब सोच लिया तो डरना क्या।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज का दिन लाभ और नई संभावनाएं लेकर आएगा। कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके करियर या व्यवसाय को नई दिशा दे सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और लंबे समय तक आपका भविष्य रोशन करती जाएगी। शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अच्छा है।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज खुशखबरियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती नजर आएंगी। आय में बढ़ोतरी होने से मन काफी प्रसन्न होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बड़ी हाँ ये वाली सांस राहत की सांस मिल सकती है। घर की सजावट और रेनोवेशन का काम शुरू हो सकता है और परिवार में खुशियों का माहौल। उम्मीद से भरी जो आंखें हैं कुछ नया टटोलने में होंगी मददगार।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आप की भागा दौड़ी शुरू और हम भी शुरू हमेशा की तरह 24/7 आपका साथ निभाते हुए और साथ साथ में गाते हुए घर का काम हो या फिर थोड़ा करें और आराम हुआ छुट्टी लेकर ही सही ठीक है और वहीं पर कहीं निकल पड़े हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर तो ये भी बढ़िया है। वैसे वीकडेज में लॉन्ग ड्राइव का मौका किसी किसी को मिलता है और वहीं पर कई लोग हैं जो अभी ऑफिस पहुँच कर बातें करें भाई कल ये हुआ वो हुआ बात करनी वैसे बात करनी ना बहुत ज़रूरी है कभी कभी लगता है कि कोई सुनने वाला हो तो नहीं सच मानी अगर आप हैं रखते हैं किसी को अपने पास जो कि आपकी बात को सुनता है समझता है तो आप बहुत लगे हैं क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ना ये बहुत ज़रूरी है दिल को हल्का करती है कोई आपको समझ रहा है अपना ओपिनियन देता है और ये आपकी मेंटल वेलबींग में बहुत बहुत असर पैदा करता है। इसलिए कह गई आपके पास कोई आता है कलीग हो या फिर कोई आपका परिवार या कोई भी अगर आपसे बात करना चाहता है जिसको आप जानते हैं ऑफकोर्स और उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं तो सुनिए Lend me your ears. कभी कभी लगता है ना ये आप सच मानिए बहुत बड़ी थेरेपी है वापस घर जाकर बात करना कि आज क्या क्या हुआ स्कूल में काम में दफ्तर में जहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क पैदा करते हैं। इसलिए मैं भी चाहूँ कि आप अपनी बात हमें बताएं नहीं नहीं अपनी पर्सनल वाली नहीं लेकिन ये बताएं कि आपकी साइड पर हाल चाल कैसे है हाल कैसा है जनाब का बताया नहीं अभी तक इंतजार में हूँ 5491294
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वही इस गाने में सुना हमने जुबिन नौटियाल की आवाज को, बहुत ही कमाल किया वैसे। 2026 तो आई गया, 2025 में बेस्ट सिंगर अवार्ड इनको मिला और वहीं पर बहुत सारे कमाल के गाने हिट्स फ्रॉम बॉलीवुड उनको लेकर शामिल होने वाले लाइव इन मॉरिशस एंड दैट्स गोना बी हैपनिंग ऑन द 30th ऑफ मे HVICC पाई के अंदर। ticketbox.me में जाकर अपनी टिकट्स आप ले सकते हैं। वहीं पर यह बता दें कि दिस इवेंट ब्रॉट यू बाय ग्रैविटी जीरो और बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं, लेकिन इट्स गोना बी अ ग्रैंड इवेंट। डोंट फॉरगेट, जुबिन नौटियाल इज गोना बी लाइव इन मॉरिशस 30th ऑफ मे SVICC पाई।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए प्यार मोहब्बत की बात करते हैं जिससे ये पूरा संसार चलता है। वैसे कभी आप कहीं जाते हैं कॉफी शॉप या फिर मेट्रो में या रेस्टोरेंट में, एक दूसरे की आंख में आंख डालकर मुस्कुराते देख कर कोई अगर कपल बैठा तो लगता है कि हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया। वहीं पर सीन अगर थोड़ा बदला हो, दोनों आम सामने बैठे हैं लेकिन एक अपने सोशल मीडिया पर कुछ देख रहा हो, दूसरा कुछ और देख रहा अपने फ़ोन पर ही, मतलब बैठे हैं साथ में लेकिन फिर लगता है कि हाँ शादीशुदा नहीं। कभी कभी तो एक ख्याल माइंड में आ ही जाता है। नहीं, सवाल ये कि ये ऐसा होता क्यों है। वैसे आपको बताएं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की है, रिसर्च की है, और कहते हैं कि जो डोपामिन का हाई लेवल है वो आमतौर पर 18 महीने से 3 साल तक ही रहता है। शादी के शुरुआती वर्षों में ये केमिकल लेवल कम होने लगता है और फिर एक्साइटमेंट बदलकर स्टेबल का रूप ले लेती है, स्टेबिलिटी। दिक्कत ये कि हम उस स्टेबिलिटी को प्यार का अंत समझ लेते हैं, फिर लगता है कि हाँ ठीक है ज़िंदगी नहीं, उसको पता तो है ही कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, बताने का क्या फ़ायदा। वो मैसेजेस आना या छोटे छोटे सरप्राइजेस या हाथों में हाथ डाले कहीं घूमते फिरते, ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। नहीं, क्यों ना ऐसा किया जाए, ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट, कुछ सरप्राइज फैक्टर ज़िंदगी में लाया जाए, क्योंकि वो इंसान जिसके साथ 24/7 आपने ज़िंदगी बिताने का फैसला कर ही लिया, तो क्यों ना उसमें एक्साइटमेंट लाएं, प्यार लाएं, मोहब्बत लाएं। हर दिन कोशिश कीजिए। शादी के बाद बॉडी लैंग्वेज में अक्सर एक अजीब सी दूरी आ जाती है। शादी से पहले वो इंसान जो एक सेकंड भी अकेला छोड़ने का मन नहीं करता, शादी के बाद उसके साथ मॉल में घूमते हुए जैसे एक दूरी सी बना ली, या फिर इग्नोर, हाँ ठीक है तो है, मैं अपने प्लान्स और वो अपने प्लान्स। तो इसकी बात हम जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें आप शेयर करना चाहते हैं कुछ तो 5491294 पर। अभी धीरे धीरे इस घंटे के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन एक अंत का मतलब दूसरी शुरुआत, फिर जल्दी करते हैं ना मुलाकात।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती। Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
6: Time check exactly 10 a.m. स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
7: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। मध्य अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामले और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस में किसी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए सभी प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। 2014 से तैयार किया गया इबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी पीटर वैन रॉबर्ट्स की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में जज सुलक्षणा भिकारी सनासी के समक्ष सुनवाई हुई। ये तब हुआ जब जज काहुल ग्रीन जोकू ने बचाव पक्ष की एक याचिका के बाद स्वयं को इस मामले से अलग कर लिया। अपनी साथी ली आन पाल्मारोजा की हत्या के मामले में रिहा किए जा चुके पीटर वैन रॉबर्ट्स ने अनाहिता रेजिडेंस एंड विला लिमिटेड के खिलाफ गंभीर सुरक्षा चूक का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया है। ली आन पाल्मारोजा का शव इसी होटल के स्विमिंग पूल में पाया गया था। एक महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद मुफ्ती आजार पीर बोकस को सशर्त रिहाई मिल गई है। वो कल 25 मई को फलाक की जिला अदालत में पेश हुए और उसे 25,000 रुपए की दो जमानतें प्रस्तुत करनी पड़ी। बिले स्थित त्वाहा एकेडमी बोर्डिंग स्कूल के पूर्व निदेशक आजार पीर बोकस को 18 अप्रैल को विमान से उतरते ही गिरफ्तार किया गया था। उस पर दुर्व्यवहार से संबंधित कई शिकायतें दर्ज है। अदालत का मानना है कि पुलिस द्वारा उठाए गए आपत्ति सिद्ध नहीं हुए। अपने निर्णय में मैजिस्ट्रेट अक्षय कुमार नंदलोल ने कहा कि छेड़छाड़ का जोखिम किसी ठोस सबूत पर आधारित नहीं है, बल्कि पुलिस की केवल एक आशंका पर आधारित है, खासकर क्योंकि अधिकांश दस्तावेज और सबूत पहले से ही जांचकर्ताओं के पास हैं। एक और बात सामने आई है कि मुफ्ती को एकेडमी से हटा दिया गया है, जिसका ये मतलब है कि अब सामान्यतः उसके पास संस्था के दस्तावेजों तक कोई पहुंच या नियंत्रण नहीं है। आजार पीर बोकस ने वकील यतीन वर्मा की सेवाएं ली हैं। और जिनो मीटन 8 जून तक हिरासत में ही रहेगा। पुलिस की जिला अदालत में जिनो मीटन की जमानत रद्द कर दी गई, क्योंकि DPP कार्यालय ने इसका विरोध किया था। रिश्लुए का रहने वाला जिनो मीटन ने 19 मई को सैंखवा में प्रदीप चिकुरी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित की 12 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के दिन जिनो मीटन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा था। वो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है और मनी लॉन्डरिंग के मामले में सशर्त रिहाई पर था। विदेश में वाशिंगटन में एक पेपर मिल में हुए बड़े रासायनिक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत और 9 लोग अभी भी लापता है। ये घटना लॉन्गव्यू स्थित निपन डायनावेव पैकेजिंग फैसिलिटी में हुई, जो सीटल से लगभग 210 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। लॉन्गव्यू दमकल विभाग के अनुसार इस हादसे में 9 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिसमें 8 कर्मचारी और एक दमकल कर्मी शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 145 पुल टू रो सैंखवा में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शांति मालापुरन पैदाशी नाम तिरबोहन और जिन्हें लोग बाबू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान नंबर 145 45 पुल टूरो सैकड़ों से उठाकर सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM बासे रोड रिविया जुरान पाव में 74 साल की 74 years old श्रीमती तारामती बायरू सिंह, जिन्हें लोग शोभा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। की अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी बेटी रेनू सिबालक के मकान बासे रोड रिविया जुरान पाव से उठाकर पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM और बैगेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव में 58 साल की 58 years old श्रीमती लालिनी सुहानी गुमानी, श्रीमती लालिनी सुहानी गुमानी पैदाशी नाम रघुबर और जिन्हें लोग सुनीता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई धर्मानंद रघुबर के मकान बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठाकर प्लान मायाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: RM2, Radio Musty.
4: Feels a Musty.

0: स्कार्फ्स, पैंट्स, हैंडबैग्स सब अमेजिंग प्राइसेस पर। और जेंटलमैन आपके लिए भी बहुत कुछ है, कूल शॉर्ट्स, ट्रेंडी टी-शर्ट्स, हैट्स एंड मेनी मोर। टिल 31st ऑफ मे शॉप स्मार्ट, शॉप स्टाइलिश, शॉप होमा फैशन और कार्ड वियर्जिनी नियर मॉरिशस टेलीकॉम सेंट्रल फ्लैग।
1: Alala ki zoli zoli, ou pa konnen ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, pri King Savers ki zoli zoli.
2: Uniquement chez King Savers, du 22 mai au 10 juin, le code 7 est à 700 roupies. Le plazo est à 350 roupies. King Savers, in sports, we believe.
3: RM2
4: Radio Must.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग फैशन लवर्स, एंड मेदर का मूड भी कुछ फिल्मी हो रहा है। सुबह कूल कूल 19 से 21 डिग्री और आफ्टरनून में हल्का वार्म 25 से 26, तो आउटफिट भी होना वैसा ही चाहिए। हीरो एंट्री वाला रेडी भाई, सुबह के लिए लाइट जैकेट या डेनिम शर्ट, बिल्कुल रणबीर कपूर स्टाइल एयरपोर्ट लुक। हाँ, वैसे कुछ वाइब दे सकता है। इनसाइड एक सिंपल सॉलिड टी, इट्स गोना वर्क परफेक्टली फाइन। नीचे चीनोज या फिर फिटेड जीन्स, क्लासी भी और कॉम्फी भी। भाई कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, खाली स्टाइल के चक्कर में नहीं। आफ्टरनून में स्लीव्स को फोल्ड करो और सनग्लासेस लगाओ और फुल ऑन बॉलीवुड हीरो वाली एनर्जी। शूज में वाइट स्नीकर्स, क्योंकि स्टाइल भी जरूरी है और कम्फर्ट भी। मॉर्निंग ब्रीज के लिए पास्टल श्रग। लेडीज, आपके लिए लाइट कार्डिगन या फिर फ्लोई कुर्ती विद जीन्स, फुल आलिया भट्ट, क्यूट एंड शिक मोड। आफ्टरनून तक वेदर वार्म हो जाता है, तो ब्रीथेबल फैब्रिक्स जैसे कॉटन या रेयन बेस्ट रहने वाले हैं। लॉन्ग इयर रिंग्स, लाइट मेकअप और कॉम्फी फ्लैट्स, सिंपल लेकिन मूवी हीरोइन वाली फ्रेशनेस। और हाँ, स्कार्फ या फिर स्टोल कैरी करना मत भूलिए। स्टाइल भी स्मार्टनेस भी, ये है कमाल का फैशन फंडा।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
1: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: और तैयार हो जाए क्योंकि यहाँ पर आपको मिल सकती है एक प्लैटिनम टिकट वर्सेस द स्पेक्टाकुलर जो नॉट यार लाइव इन कॉन्सर्ट। ये जो म्यूजिकल मैजिकल जर्नी है ये होने वाली है कब, बस आपको ये बताना है। राइट, होने वाली है कब ये आपको बताना है। हो गया फ्रॉम 8 PM एट SVICC, एक अनफॉरगेटेबल इवनिंग होगी जुबिन नौटियाल की। और ब्रॉट यू बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu। फोन कर सकते हैं ऑन हॉटलाइन 214-6464 फॉर मोर डिटेल्स। बस आपको फ़ोन करके या मैसेज करके बताना है कि ये जो कॉन्सर्ट है होने वाला है भाई जुबिन नौटियाल जो है वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स, उनका जो सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग्स है ना, जो इमोशनल लेवल है वो बहुत ही कमाल का। यानी कि बचपन से उनको आइडिया हो गया था कि वो अब संगीत में घुसना चाहते हैं। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन, उसके बाद मूवीज़ और उसके बाद इतने सारे शोज़ की कमाल, यानी कि बहुत ही कमाल के। जहाँ पर गाते हैं वहीं पर गिटार, पियानो, हारमोनियम, ड्रम्स, ही इज़ इनटू ऑल। जो म्यूज़िक लवर्स उनके ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ पर चार्ट टॉपिंग बॉलीवुड नंबर्स के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर कैप्टिवेट करते हैं अपने ऑडियंस को अपने हार्ट फेल्ट वॉइस एंड स्टेज प्रेजेंस से। तो बस मैसेज भेजिए ऑन 549-1294 नॉर्मल मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि जो कॉन्सर्ट होने वाला है कौन सी तारीख इन मे। जल्दी जल्दी अब आपके जवाब पहुंचेंगे, फिर देखते हैं कौन बनता है लकी विनर। ऑल द बेस्ट।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: और अंदर से ये गाना लिया हुआ एंड माय गॉड व्हाट सोलफुल वॉइस, एक अलग ही अंदाज नहीं राइट टॉकिंग अबाउट जुबिन नौटियाल.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: नहीं आपको भी लग रहा हो कि इतना आसान सा क्वेश्चन जल्दी से पूछ लिया. हाँ लेकिन इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. बहुत सारे लोगों ने जवाब भेजे, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. और क्वेश्चन यही था कि हमें बताइए कि जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट किस तारीख होने वाला है इन मे. एंड द करेक्ट आंसर इज ये जो मैजिकल म्यूजिक जर्नी होगी वो होगी ऑन सैटरडे 30th of May 2026 आज फ्रॉम 8 PM एट SVICC पाए. एक अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल. और यहाँ पर सही जवाब देकर लकी विनर कौन बन गए हैं? बहुत सारे लोगों ने जवाब भेजा लेकिन लकी विनर बन गए हैं कौन? चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं. राजा उजाइये जो कि पहले रिवेस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशन चुनेंगे से लकी विनर. और स्टे ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मसी, और भी चांस आपको मिल सकते हैं. लेकिन अभी राजा उजाइये आपको मिलती है एक प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव इन कॉन्सर्ट. वहां पर जाइए और मजे उड़ाइए इस कॉन्सर्ट के. Take back home lots of memories and proudly organized by Gravity Zero in collaboration with ticketbox.mu. Apni tickets jaldi jaldi book kijiye on www.ticketbox.mu and reservations ke liye phone kar sakte ho on 214-6464. Ebar bas yaad dilate the game was powered by Gravity Zero and ticketbox.mu.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती मैं जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SVICC Pi विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025 Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
2: Alala ki zoli zoli, upa kone ki zoli zoli. Alala ki zoli zoli, we King Savers ki zoli zoli.
3: Uniquement chez King Savers, du 22 mai au 10 juin, le code 7 est à 700 roupies. Le plazo est à 350 roupies. King Savers, in sports, we believe.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: You're listening to Radio Masti.
1: Beautiful songs और हमेशा साथ देने के लिए तैयार RM2 24/7 आप ही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: वैसे कहते हैं कि जब आप अकेले चलते हैं तो हो सकता है कि रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो और दूर तक जाएंगे, लेकिन किसी का साथ हो तो बस ये लम्हे यूं ही प्यार से कटते जाएंगे। वैसे कहते हैं 27th of May, टाइम चेक एग्जैक्टली 11 AM। चलते हैं संक्षिप्त समाचारों की ओर। स्टूडियो में आगे पूजा, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रपति पद की वैधता तथा राज्य प्रमुख और एकजुट करने वाली भूमिका में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में किया, और राष्ट्रीय सभा में ही सांसद लुडोविक काजियान ने ऊर्जा मंत्री पत्रिक आसियावादेन से सार्वजनिक भवनों पर बिजली उत्पादन के लिए सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया। अपने जवाब में पत्रिक आसियावादेन ने बताया कि वर्तमान में मॉरिशस और रोड्रिक्स के कई सार्वजनिक भवनों में 11 MW तक की परियोजना बनाई गई है, और ग्रीन क्लाइमेट फंड और मॉरिशस सरकार द्वारा समर्थित इस परियोजना में करीब 660 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। मध्य अफ्रीका में एबोला वायरस के बढ़ते मामले को देखकर मॉरिशस में किसी संदिग्ध मामले से निपटने के लिए सभी प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। 2014 से तैयार किया गया एबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान ने भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। विदेश में वाशिंगटन में एक पेपर मिल में हुए बड़े रासायनिक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत। कंपनी के बयान के अनुसार ये विस्फोट एक टैंक में पाए गए व्हाइट हेलिको के फटने के कारण हुआ है। आपको बता दें कि ये व्हाइट लिक्वर एक अत्यंत क्रोसिव रसायन है, जिसका उपयोग कागज निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 145 पुल टूरो सैंक्वा में 67 साल की 67 years old श्रीमती शांति मालापुरन पैदाशी नाम तिरबोहन और जिन्हें लोग बाबू नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान नंबर 145 पुल टूरो सैंक्वा से उठाकर सिपाही भोईले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 2:30 PM। बासन रोड रिविया जोहान पर में 74 साल की 74 years old श्रीमती तारामती बैरू सिंह जिन्हें लोग शोभा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी बेटी रेनू सिबालक के मकान बासन रोड रिविया जोहान पर से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 12:30 PM। बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव में 58 साल की 58 years old श्रीमती लालिनी सोहानी गुमानी पैदाशी नाम रघुबर और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई धर्मानंद रघुबर के मकान बागेलू लेन मोफियाचिल न्यू ग्रोव से उठाकर प्रेम माया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre aux ban questions climatiques qui concernent nous pays et nous planète. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 30 mai pour la suite compétition débat climat entre ben élèves collèges à partir 8h30 à soir, l'OMBCN et MBC SAT.

0: वैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यहाँ पर ही कि ये कौन है, अरे वेलकम टू द जंगल। मैंने जंगल है तो जंगल में मंगल तो होगा ही होगा। नहीं
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: जी हाँ जी हाँ, देखो सोच रहा हूँ कि जो पिक्चर आने वाली है ये काफ़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब देखते हैं कि ये बड़ी पिक्चर बड़े पर्दे पर आएगी तो क्या कमाल करेगी। हाय हाय हाय हाय, मल्टी स्टार मूवी है और 26 जून को बड़े थिएटर पे आने वाली है। फैमिली एंटरटेनर, वैसे अटेंशन ग्राब कर चुकी है और स्ट्रॉन्ग बस भी, और मेकर्स ने कहा कि बहुत ही कमाल की पिक्चर इसलिए भी हुई क्योंकि आ रहे हैं बहुत सारे लोग साथ में। 19 ईयर्स के बाद अक्षय कुमार, शान और कोरियोग्राफर है अहमद खान, साथ में फिरोज नादेवाला। जंगल इस बारी अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी को, यानी कि रियूनियन के लिए एक अलग लेयर ऐड करने वाले हैं। फन, केओस और लाचंद लाइव वाइब होने वाले हैं। ओरिजिनल सॉन्ग तो बहुत कमाल का ही है, विजुअल्स बहुत वाइब्रेंट है, एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस है और कैची म्यूजिक। उन्होंने कहा कि सबको वापस लाना एक पागलपन था और ये पागलपन आप विटनेस कर पाएंगे। देखिए साहब, कभी कभी वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन फाइनली जो आता है बड़े पर्दे पर वो इतना कमाल नहीं कर पाता। देखते हैं कि जंगल में कितना होता है मंगल।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: Hey, वक्त मिले तो शबाना, अब तुम ही बताना।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, घर परिवार में ऐसा भी होता है कि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं और फिर उनकी जिम्मेदारी, कभी कभी गिल्ट एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं कि उनको हर जगह प्रेजेंट होना है, काम पर ध्यान देना है, अगर घर पे भी आ जाए तो फिर लैपटॉप ऑन है और बच्चों के साथ थोड़ी सी बातचीत, ये प्रेशर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता नहीं। बस सच्ची बात है कि गिल्ट इज नॉट द राइट वे, कभी कभी एक साइन होता है कि पेरेंट्स की वैल्यूज आर स्टिल अलाइव, क्योंकि वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन बस क्या करें, कभी भागा दौड़ के बीच में ये बैलेंस फाइंड करना आसान नहीं है। तो फिर एक आइडल तरीके को रखना सामने, ये ठीक नहीं होगा, हर एक की सिचुएशन अलग होती है, बाउंड्रीज लाइंस ड्रॉ होती हैं, लेकिन हर किसी की अलग, अब जो जितना कर सकता है, लेकिन बच्चे जब छोटे होते तो ये नहीं समझ सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ज़रूरी हो जाता है समझना कि हर किसी को अपना टाइम देना है, स्पेस देना है और साथ साथ में बॉन्डिंग को भी मेंटेन करना है। इमोशनल लोड कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ये कैरी करते हैं वर्किंग पेरेंट्स इन साइलेंस, वो मैनेज करते हैं लॉजिस्टिक्स, मैनेज करते हैं वो इनविजिबल लेबर, प्लानिंग मील्स या फिर ट्रैकिंग अपॉइंटमेंट्स या फिर स्कूल फॉर्म भरना, एंटिसिपेट करना मूड्स को या फिर बच्चों को चुप कराना, ये गिल्ट इज नेवर गोना फाइंड एनी सोल्यूशन। ऐसे ज़रूरी है कि जब मौका मिले बच्चों से बात करें, उनको समझाएं कि देखो बात ये है कि काम करना कितना ज़रूरी है और उसके बीच में वक्त निकालना, अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, पढ़ो, वो पॉइंट्स नोट करो जो नहीं समझ में आ रही, शाम को बैठ के बात करते हैं ना। सो एक हेल्दी, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करो और फिर देखिए साहब, थिंग्स गोना फॉल बैक इन ट्रैक, निकल पड़ेगी रेलगड्डी स्टेशन टू स्टेशन और फिर आप भी चढ़ जाएंगे उसमें, पहुँचेंगे सीधा म्यूजिक वर्ल्ड।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: listening to Radio Musty.
1: Feels a Musty.
2: एक शुरुआत म्यूजिक के साथ, अब लगता है कि ठीक है, जिंदगी में और क्या चाहिए, बस चाहिए दिल से निकलते जज्बात।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: आ गया
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि इतने सारे कपड़े हो गए ना, वैसे हमेशा कहते हैं कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, लेकिन फाइनली रियलाइज करो कि आपके वार्डरोब में इतने कपड़े जो यूज नहीं हो रहे, पाइल ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, बहुत सिंपल आइडिया है उनको कुशन कवर्स या फिर आप सोचें कि कैसे जहां पर जरूरत है पैचेस की वो कुछ किया जा सकता है. कभी कभी हम देखते नहीं कि इतने सारे कपड़े करें तो क्या करें, लेकिन इतने कलरफुल कपड़े होते हैं कि उनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं. कभी कोशिश तो कीजिए. देखिए अब आपके काम के तो है नहीं, अगर कट भी जाएंगे, अब अगर आप उसको किसी से मिला कर कुछ क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है और आप वेस्टेज नहीं कर रहे. वैसे कहते हैं कि जो ओल्ड शर्ट्स है ना उनको स्मार्ट एनवलप कवर्स बना सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही. जो बैक पैनल है ना उसको यूज़ कर सकते हैं स्मूथ फ्रंट सेक्शन के लिए एज अ मेन फेस. उसके बाद जो स्लाइटली स्मॉलर पीस काटना तो स्लीव्स में से काट लीजिए. अब बस आप ये कहानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी. वहीं पर कई लोग जीन्स के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि होती हैं सैंड ब्लास्टर जीन्स होती हैं, अलग अलग कलर्स की जीन्स होती हैं, तो कैसे पैचेस बना सकते हैं, मज़ा आएगा. क्रिएटिविटी और साथ साथ में मटेरियल फुल ऑन. ओल्ड जीन्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पैचेस, सीम्स जैसे मैंने कहा फेडेड एरियाज होते हैं, परफेक्ट होती हैं पैचवर्क स्टाइल पिलो फ्रंट के लिए. स्क्वेयर्स बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगल्स, डिपेंड करता है आपका कुशन कितना बड़ा है. उसके बाद शुरू हो जाइए अपनी कलाकारी दिखाना, इधर से उधर, उधर से इधर. वहीं पर साड़ी और कुर्ता, अरे वो भी बहुत कमाल के फैंसी फैब्रिक्स होते हैं. साड़ी दुपट्टा या फिर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज, इनको बना सकते हैं अपनी परफेक्ट चॉइस. और उसके बाद शुरू हो जाइए उसको एक पहले डिज़ाइन में बना लीजिए कि कैसे करना है, चाहे वो जरी वाले पैनल्स हो, मिरर पैचेस वाले, उनको पिन करके पहले एक आइडिया बना लीजिए कि कैसे होना चाहिए. उसके बाद स्टिचिंग शुरू, और एक बार शुरू होगा तो बाय गॉड काम चलेगा नॉन स्टॉप, और फिर अप्रिसिएशन भी नॉन स्टॉप.
1: You're listening to Radio Musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. पूजा से. पूजा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी को मेरा नमस्कार. कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को लेकर राज्यसभा में कल बहस जारी रही. विपक्षी नेता जूली रोगो सहित कई सांसदों ने इस विधेयक पर अपने विचार रखे. इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे आयोग की स्थापना करना है जो संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव तैयार करे, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए. रिनोमितनाथ जून तक हिरासत में रहेगा. पुलिस की जिला अदालत में रिनोमितन की जमानत रद्द कर दी गई क्योंकि डीपीपी कार्यालय ने इसका विरोध किया. रिशलियो का रहने वाला रिनोमितन ने 19 मई को सैंखवा में प्रदीप चिकोरी को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई. पीड़ित की 12 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है. हादसे के दिन रिनोमितन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था. वो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सशर्त रिहाई पर था. अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों और 17 मई से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद मॉरिशस के अधिकारी अपने रोकथाम और तैयारी संबंधी कदमों की समीक्षा कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय में संबंधित पक्षों के साथ कल एक बैठक का आयोजन किया गया. स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार 2014 से तैयार किया गया इबोला वायरस ऑपरेशनल प्लान भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और हिंद महासागर आयोग के साथ करीबी सहयोग में काम कर रहा है. और विदेश में इस वायरस के फैलने में गलत जानकारी और असुरक्षा की भावना और भी बढ़ गई है जिसने सालों से इस पूर्वी अफ्रीकी देश को परेशान किया है. एक्शन एड के एक सर्वे के मुताबिक प्रभावित इलाकों में लिए गए लोगों में से सिर्फ 34% ही इबोला फैलने के तरीकों को सही ढंग से पहचान पाए हैं. आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस बीमारी को आध्यात्मिक कारणों से जुड़ी घटना या पैसे जुटाने के लिए बनाई गई एक योजना मानता है. इस बीच वैज्ञानिकों के अनुसार इबोला से संक्रमित 25% से लेकर 90% तक लोगों की मौत हो सकती है. यही कारण है कि स्वास्थ्य एजेंसियां इस बीमारी को लेकर बेहद सतर्क है. और उधर वाशिंगटन में एक पेपर मिल में हुए बड़े रासायनिक विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत. कंपनी के बयान के अनुसार ये विस्फोट एक टैंक में पाए गए व्हाइट लीको के फटने के कारण हुआ है. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार. एलियनसन बोबासे में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुराजनी रंग बहादुर पैदाशी नाम सिवचन और जिन्हें लोग सुराजनी नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनके अर्थ आज दिन के 1 बजे आज दिन के 1 बजे एलियनसन बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1 PM. आर्य मंदिर रोड पीछे गाफरे में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुसुमावती रमेसर जिन्हें लोग कुमकुमवा नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनके अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके मकान आर्य मंदिर रोड पे चिराफरे से उठाकर मोमास्काल पे चिराफरे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. नंबर 127 बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में 66 साल की 66 इयर्स ओल्ड श्री सेउलाल सिबालक, जिन्हें लोग सिलाल नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनके बेटे ऋषि सिबालक के मकान नंबर 127 बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैथेड्रल से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमॉरो 9:30 AM। और फ्रांस में 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड श्री महेश दुकरन की मृत्यु हो गई है। वे पहले मुसलमान कुंजु प्लेंडे पापाई के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल दिन के देर बजे लोपिताल पिछे साल पेट्रिया पेरिस फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जों शोल विल्टानर्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमॉरो 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
7: Retro Rhythm
4: RM2 Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम 12:10 हो चुके हैं। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, मैं आ गई हूँ आपसे मिलने, आपके गानों के साथ, आपके प्यार भरे मैसेजेस के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये दोपहर का वक्त बहुत ही प्यारा वक्त है, जिस टाइम थोड़ा सा हम चाहते हैं रिलैक्स करना, थोड़ा सा काम को कम करना और आराम से खा के पी के जो हमारा टाइम है, जिस टाइम का हम इंतज़ार करते हैं कि ये टाइम थोड़ा सा हमारे लिए हो, हमारे अपनों के लिए हो, तो ये टाइम आ गया है आपका। तो शुरू करते हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम रेट्रो रिदम, और अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। आपके मैसेजेस का भी इंतज़ार रहेगा और आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो कई टाइम से आपने नहीं सुने उनका भी इंतज़ार रहेगा। तो मैं यहाँ पर हूँ और आपके साथ में ज्वाइन करते हैं ये वाले रेट्रो रिदम का ब्यूटीफुल सॉन्ग
1: रेट्रो रिदम। RM2 रेडियो मस्ती।

रेट्रो रिदम 12:22 हो चुके हैं और आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चल कहीं दूर निकल जाएं। सच बात है, कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि हम सब कहीं ऐसे ही बस चलते फिरते कहीं मिल जाएं और साथ में कहें चलो भाई कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, तो ये टाइम ऐसा ही है खाने पीने का। आपने अगर आप किचन में हैं तो बनाइए पकाइए सबके लिए खिलाइए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खुद भी खाइए। तो ये चलिए भाई मैसेजेस के साथ, जो मैसेजेस का दौर चलता है उसके अंदर बस हम यही कहते हैं कि आपके फेवरेट सॉन्ग्स बहुत सारे होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, बट थोड़ा सा मूड होता है तो कई बार कोई लोग बहुत पुराने गाने भेज देते हैं तो वो हम चला नहीं पाते। पर हम अगर आपके कुछ ऐसे फरमाइश है जो रोमांटिक भी है, थोड़ा सा मूड को चेंज करता है और थोड़ा सा एनर्जेटिक है, तो हम बिल्कुल वो गाने चलाएंगे। तो जना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक गाना सुनना चाहती हैं। नीलम नारायण जी का आज बर्थडे है, जो कि ग्लेन पार्क की रहने वाली हैं और वो सभी परिवार और उनके फ्रेंड्स उनको विश करते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे। और हम भी पूरी एमबीसी की टीम की तरफ से आपको यही कहेंगे, हमेशा खुश रहिए, इंजॉय कीजिए आपका ये स्पेशल डे और अपना बर्थडे अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। येलिस सूरीनाम से जुड़े हैं हमारे साथ और इंजॉय कर रहे हैं और सभी को कह रहे हैं

0: अच्छे से खाइएगा पीजिएगा। तो चलिए भाई, आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार है और 5499-1294 पर आप मैसेजेस भेज सकते हैं जो कि आप रेगुलरली भेज रहे हैं, पर हम इतना कहेंगे कुछ स्पेशल गाने हो जाएं। अगर आपकी लिस्ट में कोई ऐसी चीज़ है तो हमें ज़रूर बताइएगा।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: दोस्तों 12:35 हो चुके हैं और जरा सा इमेजिन कीजिए मॉरिशस की खूबसूरत व्यू और ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड, और वो भी कपल राइड, क्या बात है। तो सुनिए एमबीसी प्ले और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के लेकर आए हैं मिलके आपके लिए एक शानदार सा मौका। बस आपको करना क्या है, एक नया एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर से। फिर से हम आपको बताते हैं, एमबीसी प्ले स्टोर पर आप जाएंगे जब प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पर एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड कीजिए आपकी ये एप्लीकेशन। ध्यान रखिए दोस्तों, पुराना वाला जो उसके अंदर एक ऐप आ सकता है एप्लीकेशन, बट वो जून में बंद कर दिया जाएगा। आपको न्यू वर्जन ही डाउनलोड करना है और रजिस्टर करते ही जो मोबाइल पर आपके एमबीसी ओटीटी आएगा उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना है 5499-1294 पर, क्योंकि 18 तारीख से हम ये आपके साथ गेम खेल रहे हैं और 28 तारीख यानी 28 तक ये रोज़ चलेगा। और जो आपकी वैलिड एंट्रीज होंगी जिसकी भी स्क्रीनशॉट आएगा हमारे पास, उसको 5 से 6 बजे शाम का रेडियो प्रोग्राम होता है उसमें आपको एंट्री दी जाएगी। आपसे एक दोनों जो भी लोग आएंगे उनसे सवाल पूछे जाएंगे और सबसे पहले जो सही जवाब देगा वो बनेगा डे ऑफ द विनर। और जो डे ऑफ द विनर बनेगा, फिर 29 मई को जो प्रोग्राम होगा ग्रैंड फिनाले का, उसमें जो लकी लिसनर होगा उसको मिलेगा हेलीकॉप्टर राइड फॉर कपल। तो बस आप बिल्कुल इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए 5499-1294 पर, क्योंकि मैं शाम के आरजेस को दे सकूं और आप जीत पाएंगे ये आपका स्पेशल हेलीकॉप्टर राइड। तब तक एंजॉय कीजिए आपका सॉन्ग
0: रेट्रो रिदम।
2: RM2 Radio Mustie.
3: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
2: RM2 Radio Musty.
4: Hit music only.
5: Radio Musty feels a musty.

0: रेट्रो रिदम। जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती को आज ड्राइव करते हुए सुन रहे होंगे, कई लोग अपने घर पे सुन रहे होंगे, पर हम आपको यही कहेंगे अगर घर पे है तो काम करते रहिए, साथ साथ अपना रेडियो ऑन रखिए, और ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से चलाते चाहिए गाड़ी, बस अपना ध्यान रखिएगा। और कहते हैं ना कि जब इतने प्यारे प्यारे गाने चल रहे होते हैं तो आपको टायर्डनेस फील नहीं होती, आपको थकान नहीं होती, आपको एहसास होता है अरे इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, चलो भाई ड्राइव करते रहें। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आपका प्रोग्राम है रेट्रो रिदम, और रेट्रो रिदम में बस सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि आपके पसंद के गाने चलते हैं जहां पर आपकी बातें दिल की होती है। तो चलिए भाई दो तीन प्यारे से मैसेजेस लेते हैं, बेस्ट विशेस दे रहे हैं टू आहिर एंड महिरा रोड्रिक से, उनकी आज रात को शादी है, डैरन श्वेता रवेश प्रीशा लवेशा एंड अपादू फैमिली उनको विश कर रहे हैं, साथ में अभिजीत एंड मैसनील भी जुड़े हुए हैं और वो भी विश कर रहे हैं सभी को कि अच्छे से खाइए इंजॉय कीजिए और ये गाने बहुत मस्त चल रहे हैं। चलिए जी ज्योति जी शाते बनारस से जुड़ी हुई हैं, अपने पूरे परिवार को बहुत सारे गाने सुनाना चाहती हैं और जो भी कह रही हैं कि कोई भी जो भी चलाओगे मुझे तो बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं। सो स्वीट कविता जी जुड़ी हुई हैं और साथ में एक प्यारा सा फरमाइश की है उन्होंने भी एक गाने की, अब्दुल एंड सायरा बानो भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं और बस ये कहते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए विश कीजिएगा कि सारी जिंदगी खुशियाँ एक दूसरे को दे पाएं। सो स्वीट जी ये बहुत अच्छी बात है कि जब इंसान एक दूसरे के लिए सोचता है तो बहुत अच्छा लगता है। कमला रीता वीना वृंदा श्रादा रेखा मुकेश प्रदीप सूरज राज सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो चलिए भाई देखते हैं किसने किसको मारा, ये है यारा
1: रेट्रो रिदम RM2।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं सुमायरा से संक्षिप्त समाचार। सुमायरा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार और आदाब। कल राष्ट्रसभा में ऊर्जा मंत्री पैट्रिक कासियावादेन ने सौर्य पैनल्स बिठाई जाने की परियोजना के बारे में जानकारियां दी, जो बिजली के उत्पादन के लिए सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे। 11 मेगावाट परियोजना को शुरू किया जाएगा, जिसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र ग्रीन फंड और मिशन सरकार द्वारा किया जाएगा। कुल 660 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। मामी गवातो मांग को शर्त पर रिहा नहीं किया जाएगा। कल सुप्रीम अदालत ने मलगासी उद्योगपति की मांग को ठुकराया। वो बेल एंड रिमांड कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे, जिसने 30 दिसंबर 2025 को उनकी रिहाई पर एतराज जताया। मनी लॉन्ड्रिंग के दो अस्थाई इल्जामों के तहत मामी गवातो मांग पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। आज सऊदी अरब में सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं। आज खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम की सुन्नतों पर अमल किया जा रहा है, जिन्होंने रब का फरमान बगैर किसी सवाल से कबूल किया। आज हमारे मोशन हाजी भी शैतान का अक्कास करने वाले 3 सुतोनों की तरफ कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा कर रहे हैं और ईद उल अधा वहाँ मना रहे हैं। कल इसराइल ने लेबनान के दक्षिण पूर्व में हवाई हमले किए, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें कई बच्चे शामिल। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा मूल ढांचों पर हमला किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। लुवदाकोचिया में 91 साल के 91 years old श्री प्रेमदत्त जाटुआ जो प्रेम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम सवा चार बजे इनकी पत्नी ज्ञानती जाटुआ के घर लुवदाकोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन कौंदेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:15 PM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 83 साल के 83 years old श्री राधाशो फुलमोन जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल जुमेरात को डेढ़ बजे इनके बेटे रमेश फुलमोन के घर रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
5: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. Retro Rhythm.
0: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: क्या बात है आशा भोसले की आवाज़ में प्यासे दो बदन के गाने से जो मतलब जो फील आती है ना, मतलब पुराने ज़माने में जो डिशम डिशम वाली साउंड होती है वो आज भी कानों में गूंजती है। कितनी ही मूवीज़ देख लो बट जो वो जो पर्टिकुलर जो आवाज़ होती थी वो आज भी कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है, एहसास दिलाती है कि जो पुराने गाने होते थे, पुरानी मूवीज़ होती थी, उनका स्टाइल ही कुछ और होता था। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ यादें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं 5499124 पर। और ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 1:22 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ में, क्योंकि हम आपके लेके आते हैं रेट्रो रिदम के वो पुराने गाने जहाँ पर आपका दिल खुश तो होता ही है, साथ में आपके मैसेजेस भी होते हैं, कोई बहुत सारी डेडिकेशंस होती हैं। तो इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग तो जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा उनके मैसेजेस सिर्फ यही आ रहे हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं। तो बस आप इंजॉय करते रहें, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस समय मुझे लगता है माधवी जी के चेहरे पर ज़रूर ये मुस्कान ज़रूर आई होगी, क्योंकि उन्हीं का पसंद का गाना था। तो चलो इंजॉय किया आपने, थैंक यू सो मच। इंडिया से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं कमलेश रानी, हिना, युवराज, अर्जुन, और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। माधवी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विश्वानी जी, अपनी सिस्टर इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा और सभी फैमिली फ्रेंड्स को एक गाना सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि लंच आवर में तो हम लोग लंच लेते हैं, पर जब RM2 रेडियो मस्ती का ये जो रेट्रो रिदम प्रोग्राम चलाते हैं ना, तब हमारा दिल खुश हो जाता है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे फूल भेजे हैं और आपके उन फूलों के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उसके साथ में आज गीता जी और ईश्वर जी की 47th वेडिंग एनिवर्सरी है, और तीनों डॉटर्स उनकी रीना, रोमा, नितिन एंड रिया उनको विश कर रही हैं और उन्हें कह रही हैं कि आप हमेशा साथ रहो, आप साथ रहोगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और हम भी सीख सकेंगे कि छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परेशानियों में कैसे एक दूसरे का साथ देना है। तो इंजॉय कीजिए ये आपके गाने
1: रेट्रो रिदम RM2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: वे साय तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:33 हो चुके हैं दोस्तों, और कहते हैं कि जो जिसको हैप्पी रहना होता है ना, उसको उसकी किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ कोई वजह बनेगी तो ही मैं हैप्पी रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बस आपको बस हंसना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। कैसा भी दिन निकल रहा हो, मुझे नहीं पता सबके कैसा दिन जा रहा है, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप गाने सुनते रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और थोड़ा सा शांति मिलती है, उसी से आपका मूड भी चेंज हो जाता है। पुरानी बातें, पुरानी यादें जब जुड़ती हैं, और कई बार न्यू यादें जनरेट होती, न्यू यादें नई ताज़ा हो कि न्यू बनती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जब हम

0: और ओल्ड होंगे तब आज का दिन को ही याद करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ बातें ही नहीं होंगी, यादें ही कैसे बनेंगी, तो फिर कैसे मुस्कुराएंगे उस समय जब ज़रूरत पड़ेगी मुस्कुराने की। तो चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इंडिया से इस समय, रवीना, प्रिया और कुछ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं यहाँ की गर्मी का जितना बड़ा बुरा हाल है मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत गर्मी है। और ये जो गाने हैं ना, यही हमारे को थोड़ा सा सुकून दे रहे हैं। आर एम टू रेडियो मस्ती, थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच, हमें आपको बोलना चाहिए आप हमें सुन रहे हैं इंडिया से और इन्जॉय कर रहे हैं आपके गाने आपके पसंद के। उसके साथ में ही प्रकाशवंती जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ बेल्जियम से, और वो भी यही लिख रही हैं कि गर्मी, इतनी गर्मी कि मैं बता नहीं सकती। तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा गाना है जिसमें हमें एहसास हो घर के अंदर बैठ के कि हमें एसी की टेंशन नहीं है, एसी पूरे दिन चल रहा है, पर हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ठंडी की हवा और थोड़ी सी बारिश की बात हो जाए। तो चलिए भाई, ये गाना उनकी पसंद का चलाते हैं।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
0: Retro Rhythm.
2: कई लोग बहुत देर से हमारे साथ ज्वाइन कर पाए हैं क्योंकि वो लोगों के भी कई लोगों के काम होते हैं, कई लोग इधर उधर जाते हैं और बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि वो वेडिंग की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि वेडिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग ये करनी होती है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, सोके आप आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस समय हमारे साथ पोटली से जुड़ी हुई हैं फिया जी, राजन जी जुड़े हुए हैं लंदन से और संगर जी जुड़े हुए हैं फ्रांस से, और वो यही कह रहे हैं कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम को, तो ऐसे ही गाने चलाते रहिए और हम इंजॉय करते रहें। और जहाँ भी गर्मियाँ हो रही हैं हमने आपके लिए एक ठंडी ठंडी बारिश वाला एक तरह सा गाना भेज चुके हैं, तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं। ये आप सबका, मुझे लगता है सभी का ही फेवरेट सॉन्ग है, इंजॉय कीजिए ये वाला।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: RM2 Radio Musty
1: Feels a Musty.
2: तो दोस्तों आज के लिए

बस इतना ही, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और गानों को दिल से बस इंजॉय कीजिए। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे आरएम टू रेडियो मस्ती में। मेरे बाद आपको मिलेगा साथ गिनीशा का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।

0: mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा से। सुमायरा, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार आदाब। उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसर एक कार्यशाला लगाई गई, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कुमेजा तथा दक्षिण अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कल रात राष्ट्रसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहसें जारी रखी गईं। विपक्ष नेता जूली जोंगा और कई सरकारी सांसदों ने इस विधेयक पर अपना अपना नजरिया पेश किया। इसका मकसद एक ऐसे आयोग का गठन करना है जो संवैधानिक सुधारों को प्रस्तावित करे, खासतौर पर बुनियादी हक की हिफाजत और लोकतांत्रिक इदारों की मजबूती शामिल है। मामी खवातुन मांग को शर्त पर रिहा नहीं किया जाएगा। कल सुप्रीम अदालत ने मलगासी उद्योगपति की मांग को ठुकराया। वो बेल एंड रिमांड कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे, जिसने 30 दिसंबर 2025 को उनकी रिहाई पर एतराज जताया। मनी लॉन्डरिंग के 2 अस्थायी इल्जामों के तहत मामी खवातुन मांग पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। और विदेश में आज सऊदी अरब में सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं। आज खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम की सुन्नतों पर अमल किया जा रहा है, जिन्होंने रब का फरमान बगैर किसी सवाल से कबूल किया था। आज हमारे मुर्शिद हाजी भी शैतान का अक्कास करने वाले 3 सुतूनों की तरफ कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा कर रहे हैं और वहां ईद उल अधा मना रहे हैं। और इसराइल ने कल लिबनान के दक्षिण पूर्व में हवाई हमले किए, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें कई बच्चे शामिल। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा मूल ढांचों पर हमला किया। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। नंबर 29, नंबर 29 एमिल पिचो स्ट्रीट क्यूपिक में 74 साल की 74 years old बीबी फरीदा रहमत, बीबी फरीदा रहमत पैदाइशी नाम मादियाबुकस, जो फरीदा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज 3:30 बजे इनकी बेटी बीबी अजीज़ा रहमत के घर एमिल पिचो स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। लुबर्ड अगोत्सिया में 91 साल के 91 years old श्री प्रेम दत्त जाटुआ, जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सवा चार बजे इनकी पत्नी ज्ञानती जाटुआ के घर लुबर दागोचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:15 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
4: Aaj Azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
0: Radio Musti.

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, सभी लोगों का हम वेलकम करना चाहेंगे इन दिस ब्यूटीफुल शाम. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज. बिना टिकट कटाके लेके जाएंगे आज बॉम्बे की दुनिया में. हाँ जी दोस्तों, यानी कि बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज. यानी कि हम हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए स्ट्रेट अवे बॉलीवुड की दुनिया से. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप? हम तो बिल्कुल ठीक है जी. किसी ने हमसे पूछा नहीं तो हमने सोचा हम बता ही देते हैं. हम तो एकदम मस्त है, जकास है, क्योंकि आ गए हैं दो घंटे की सफर में आप लोगों का साथ देने के लिए. I've got you the latest Bollywood गाने जो अभी अभी रिलीज हुए हैं. हॉट एंड स्पाइसी गाने स्पेशली फॉर यू माय डियर लवली पीपल. आज ऑलरेडी वन इज द 27th ऑफ मे 2026 एंड फॉर दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द एंटायर शो फॉर यू माय डियर. सो विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे. सो ऑल इज सेट राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन RM2 रेडियो मस्ती विद मी आरजे गणेशा एंड ऑफ कोर्स माय डियर लवली पीपल. मैजिकल नंबर तो आपको पता ही है, 5491294 पर यू कैन स्टार्ट sending me your dedications. Whoa, whoa, whoa.

0: Sondé 8000. Conditions applicables.
1: Bombay Talkies. Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: बिल्कुल जी, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मस्ती पे आप जुड़े हुए हैं गिनेशा के साथ इन दिस ब्यूटीफुल शानदार जो बॉम्बे टॉकीज़। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था आपको ये खूबसूरत सा गाना हम्मा हम्मा, दैट्स अ ब्यूटीफुल रीमेक इन द लवली वॉइस ऑफ हमारे प्यारे से ऑफकोर्स जुबिन नौटियाल, जो बहुत ही सून यू कैन कैच हिम लाइव इन मॉरिशस। बिल्कुल, सो जॉइन द मैजिक म्यूजिकल जर्नी ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे माय डियर लवली लिसनर्स। इस सैटरडे को यानी कि रात के 8 बजे से लेकर रात It's going to be an unforgettable evening only with the one and only Jubin Nautiyal. अगर आप भी उनके फैंस हैं, उनके गानों के दीवाने हैं, so why not? The concert is proudly organized by Gravity Zero in collaboration with Ticketbox.mu. वैसे अगर आपको अपना टिकट्स खरीदना है, इट्स अवेलेबल ऑन www.ticketbox.mu और रिजर्वेशंस के लिए यू कैन कॉल ऑन देयर हॉटलाइन 2146464 2146464। वेल ट्रस्ट मी, इट्स अ नाइट नॉट टू मिस, लाइव इन मॉरिशस जुबिन नौटियाल। फिलहाल के लिए स्टूडियो की घड़ी में 2:16 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। और फिलहाल के लिए हम आपको याद दिला दें, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक और ऑन रेडियो मस्ती। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर डेडिकेशन साउंड, द रियल मस्ती वहीं पे होता है हमेशा। सो फिलहाल क्या करें, सुनाए आपको एक खूबसूरत सा गाना। Here we go, let's hit it my way.
1: RM2 Radio Mustang।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो दोस्त जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है, आपका भी स्वागत है न्यू बॉम्बे टॉकीज ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती, जहां पे गिनीश आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल माय डियर लवली लिसनर्स, फिलहाल के लिए लेके जाएंगे आप लोगों को बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी बॉलीवुड गॉसिप्स। सबसे पहले शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी किंग का जो क्रेज है उसके बारे में बात करेंगे। यस, द क्रेज इज फुल ऑन, बिल्कुल चल रहा है मेरी जान। केप टाउन शूट के लीक विजुअल्स वायरल हो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया और फैंस जो है सौके के एंड दीपिका की जो केमिस्ट्री को लेकर सुपर डुपर एक्साइटेड है। बिल्कुल जी, रणवीर सिंह को लेकर भी बज है कि वो किंग में स्पेशल कैमो कर सकते हैं। एंड वही डॉन 3 को लेकर रूमर्स गरम है कि एसओके ने पहले स्क्रिप्ट रिजेक्ट की थी और उसके बाद अब क्या हो रहा है। सो भाईजान जो है या जो हमारे सलमान खान है, उनका 7 डॉग्स कैमियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और उनका एक फन बर्थडे सेलिब्रेशन वीडियो भी ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। लेकिन ये जो किंग का क्रेज है, मूवी किंग का क्रेज है, चलता ही जा रहा है। और अगर आपको लेटेस्ट न्यूज एंड रिव्यूज चाहिए अबाउट ऑल दिस, सो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट चेक आवर पेज फेसबुक आरएनटी रेडियो मस्ती। वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन मॉरिशस जहां पे आपको एवरी बॉलीवुड न्यूज मिलते हैं रहते हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए जो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टू ऑल दोस्त जो हमें सुन रहे हैं लाइव ऑन आर एन टू रेडियो मस्ती एंड टू ऑल दोस्त हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आर एन टू रेडियो मस्ती। बिल्कुल जी, इन योर बॉम्बे टॉकीज हम लेके जाते हैं बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हम भाईजान के बारे में बात करेंगे, यानी कि सलमान खान के बारे में। और अब बात करते हैं उस खबर की जो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रही है दोस्तों, यानी कि भाईजान सलमान खान का इंटरनेशनल धमाका। सऊदी इजिप्ट एक्शन थ्रिलर जो सेवन डॉग्स के इजिप्ट प्रीमियर में सलमान खान फिजिकली मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरा इवेंट जो है उनके नाम रहा। जायंट सलमान पोस्टर्स प्रीमियर वेन्यू पर लगाए गए थे और फैंस उनके पोस्टर्स जो है उनके साथ सेल्फीज लेते नजर भी आए। वैसे देखा जाए तो फिल्म में सलमान का एक स्टाइलिश कैमियो है और स्पेशली उनका बार्बर शॉप सीन जो सोशल मीडिया पर क्रेजी वायरल हो गया है। क्लिप में सलमान खान जो है इंग्लिश डायलॉग्स बोलते हुए और इंटेंस स्वैग के साथ एंट्री मारते दिख रहे हैं और फैंस ने उस सीन को बाप लेवल कैमियो और पैसा वसूल एंट्री बोलकर ट्रेंड कर दिया। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेवन डॉग्स एक इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर है जिसमें सलमान खान के साथ संजय दत्त और हॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेलूची भी नजर आ रही हैं और फिल्म को आदिल ए अरबी और बिलाल फलाह डायरेक्ट कर रहे हैं। सो इस बीच में सलमान का एक बिहाइंड द सीन्स बर्थडे सेलिब्रेशन वीडियो भी वायरल हुआ है। वो अपनी अपकमिंग मूवी जो है SVC 63 के सेट पर एक क्रू मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट करते दिखे। सो केक कटिंग स्माइल्स एंड फुल भाईजान मस्ती के साथ फैंस बोल रहे हैं कि ऑन स्क्रीन सुपरस्टार ऑफ स्क्रीन प्योर गोल्ड। एक्चुअली पूरे बॉलीवुड में यही माना जाता है कि सलमान खान जो है उनका दिल सोने का है।
1: Radio Musty.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
4: Kédé? Un télévision Samsung 75 pouces 10 pour 39 990 roupies et qu'en plus tu gagnes soundboard K2? Ça ben brille like K2. Zis si dans la case, ben ma code 3 season qui te bougain ça. Eh oui! Fin profit ben meilleur offre de ben téléviseur Samsung que 3 season et clos 3season.mu avec facilité crédit pour Sim Finance ou Rogers Capital ou même 12 mois zéro l'intérêt quand on paye avec ou code crédit.
5: 3 season. Bien plus encore.
6: Allons chez Lolo.
7: Chez Lolo, saveur marine, gambas, ucette, 1 kg de Madagascar, 800 grammes, 50 roupies 50. Hola, cream cheese, 200 grammes, 96 roupies 95.

0: to Radio Musti. RM2.
1: Radio Musti. Feels a Musti.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Well, जी चेक योर टाइम 2:43 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ ऑन आवर टू रेडियो मस्ती एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, यानी कि बॉम्बे की दुनिया से, बॉलीवुड की दुनिया से लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज, हॉट एंड स्पाइसी बॉलीवुड न्यूज, आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में हम आप तक पहुंचाते हैं। एंड साथ में आपको सुना रहे हैं लेटेस्ट बॉलीवुड गाने जो अभी लेटेस्टली रिलीज हो चुके हैं दोस्त। लेकिन साथ साथ में कैसे भूल सकते हैं आपके डेडिकेशंस को 5499-1294 पर। कीप ऑन सेंडिंग मी योर दिल की बात, कहां पे हो, क्या कर रहे हो, हमें सुन रहे हो, किसी के साथ हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, या वर्किंग, कुछ भी आप हमें बता सकते हैं। और गाने किसके नाम आप डेडिकेट करना चाहेंगे, व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। सो वी हैव संगर फ्रॉम फ्रांस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून्ड, एंड हे आई एम जस्ट हियरिंग द शो, इट्स ऑसम, सो द नेक्स्ट वन फॉर यू एंड आरजे परी के लिए एंड सारी टीम के लिए, विजया फ्रॉम वाकवा, थैंक यू सो मच। वी हैव जाना, मेरी जाना, कैसे हो मेरी जाना, मैं तो ठीक हूँ, आप फ्लैग से हमारा साथ दे रहे हो। सैयारा मूवी का जुबिन नौटियाल का गाना है, हाय मेरी जान सैटरडे को, यानी कि आप जा रहे हो at the concert, Jubin Nautiyal ka. वैसे उनकी आवाज के गाने सभी अच्छे हैं, and I love you so

सो मच गिनी, यू आर द बेस्ट, ओ माय गॉड, इतना भी प्यार मत बरसाओ मेरे ऊपर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज माय हनी, एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. तो चलिए जी, आई हैव द नेक्स्ट वन फॉर ड्राइवर अस्मीर, ही इज अ बस ड्राइवर एंड ही इज एट मोशवाजी राइट नाउ, एंड कंडक्टर बच्चन के लिए भी द नेक्स्ट वन, एंड टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, आरएनटू रेडियो.

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: I really hope that you guys are really loving this beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. तो फिलहाल के लिए चलिए जी लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में. एंड फिलहाल के लिए हम बात करेंगे अबाउट आलिया भट्ट. आलिया भट्ट जो है इस वक्त अपनी मोस्ट एम्बिशियस एक्शन मूवी अल्फा को लेकर फुल हेडलाइंस में है. ये YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर है. एंड जहाँ आलिया के इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएगी और फिल्म में उनके साथ शर्वरी, बॉबी डियोल एंड अनिल कपूर भी इंपॉर्टेंट रोल में है. सो माय डियर लवली, जिस दिनों की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया ने लंदन और यूरोप में कुछ इंटरनेशनल स्टाइल एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए हैं. इनसाइडर्स कह रहे हैं कि मूवी का स्केल हॉलीवुड स्पायर फिल्म जैसा होने वाला है. हाई स्पीड चेजेस, हैंड टू हैंड जो कम बैक है और इवन स्टाइलिश एसेसिन लुक्स के साथ. ओ एम जी, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि पहले फैंस सोच रहे थे कि आलिया एक स्पाई का रोल कर रही है, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही है कि वो एक्चुअली एक डेडली असासिन का कैरेक्टर प्ले करेगी. इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी कंपैरिजन स्कारलेट जोहानसन के ब्लैक विडो कैरेक्टर से हो रही है. एंड आलिया ने रिसेंटली रेड सी फिल्म फेस्टिवल में भी अल्फा को बिग रिस्क बिग एम्बिशन प्रोजेक्ट बताया था. एंड उन्होंने कहा कि फीमेल लेड एक्शन फिल्म बॉलीवुड में अभी भी रेयर है और लेकिन वो ऑडियंस को एक फ्रेश एंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना चाहती हैं. और फैंस के लिए ये भी एक गुड न्यूज है कि अल्फा रिपोर्टेडली जुलाई 2026 में थिएटर्स में रिलीज होगी और सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हैशटैग्स लाइक #alpha और #alia

0: एक्शन क्वीन ट्रेंड करने लग गई हैं. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट लवली मूवी टू गेट रिलीज टू सी आवर प्यारी सी ये खूबसूरत सी मोस्ट टैलेंटेड आलिया भट्ट इस अवतार में.
1: RM2 Radio Mastery.

0: अमेजिंग प्राइसेस पर। और जेंटलमैन, आपके लिए भी बहुत कुछ है, कूल शॉर्ट्स, ट्रेंडी टी शर्ट्स, हैट्स एंड मेनी मोर। टिल 31st of May, शॉप स्मार्ट, शॉप स्टाइलिश, शॉप होमा फैशन और कार्वियर्जिनी नियर मॉरिशस टेलीकॉम सेंट्रल फ्लैग।
1: Join the RFG team at Dream Price Boulet Rouge Flag this Saturday, 30th May from 11 a.m. to 2 p.m. Come and celebrate Mother's Day with gifts, new products tasting and games. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
2: RM2
3: Radio Musti.
4: More music in the mix.
5: Aaj Azadi hai.
6: Bombay Talkies
7: Radio Musti
3: Radio Musti

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: शकियो टाइम स्टूडियो के घड़ी में एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार। सुमेरा अकबर अली के साथ नमस्कार और आदाब।
6: नमस्कार आदाब। देश में कम बारिश की वजह से जलाशयों पर बहुत दबाव है और पानी की सप्लाई को लेकर नए सूत्र ढूंढने की बहुत बड़ी आवश्यकता आ गई है। जल संचालन मुरशस में एक बहुत बड़ी चुनौती है। महोवा कुआं सिर्फ 48% भरा है, इसलिए अधिकारी जल संचालन को लेकर अपनी रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नदियों में करीब 50 फिल्टरों को स्थापना की जा चुकी है। कल रात राष्ट्रसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहसें जारी रखी गईं। विपक्ष नेता जोली जोंग और कई सरकारी सांसदों ने इस विधेयक पर अपना नजरिया पेश किया। इसका मकसद एक ऐसे आयोग का गठन करना है जो संवैधानिक सुधारों को प्रस्तावित करे, खासतौर पर बुनियादी हक की हिफाजत और लोकतांत्रिक इदारों की मजबूती शामिल हैं। उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसर एक कार्यशाला लगाई गई जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कुमेजा तथा दक्षिण अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देश में इसराइल ने लिबनान के रक्षिन में हवाई हमले किए हैं। दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है जिनमें कई बच्चे शामिल। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से ज्यादा मुढ़ांचों पर हमला किया है। और उधर भारत में बेंगलुरु में एक संदिग्ध एबोला मामला पाया गया। एक महिला जो युगांडा से आई उसे आइसोलेशन में रखा गया है। प्रथम टेस्ट के मुताबिक वो टेस्ट नकारात्मक हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। नंबर 29 नंबर 29 एमिल पिचो स्ट्रीट क्यूपिप में 74 साल की 74 years old बीबी फरीदा रोहमत पैदाशी नाम मादिया बुकस जो फरीदा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज साढ़े तीन बजे इनकी बेटी बीबी अजीजा रोहमत के घर एमिल पिटो स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
0: आज आजादी है। Bombay Talkies,
2: Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल जी, चेक योर टाइम। स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हो चुके हैं। बॉम्बे टॉकीज

में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हम स्वागत करना चाहेंगे और हमें गिनीशा जो साथ दे रहे हैं और लेकर आए हैं आज की सबसे गरम गरम बॉलीवुड खबरें और सीधा मुंबई फिल्म की नगरी से। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड बुलेटिन आज की तारीख 27 मई 2024 फिर से इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटिफुल शो। तो चलिए विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए जी, टाइम बीटा चला जा रहा है, आई रियली होप कि गानों का कलेक्शन एंड सिलेक्शन आपका दिल से अच्छा लग रहा है। 3:21 हो चुके हैं, यानी कि इट्स टी टाइम एंड कॉफी टाइम। हो सकता है यू आर हैविंग योर गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हो, हे पकौड़े शकोरे भी खा रहे होंगे। अभी हाई गोज ऑल एमबीसी स्टाफ जो विशाल के कैंटीन में बैठे हैं नीचे। एंजॉय योर लवली लवली स्नैक्स एंड गर्मा गर्म चाय अगर पी रहे हो, कॉफी भी पी रहे हो तो हमें भी याद कर लीजिए। तो चलिए जी, साथ में योर डेडिकेशन ऑफ द मोस्ट वेलकम ऑन 5499-1294 पर। And we do have the next one, especially for you, Mr. Badwag, Bidesi. And koi sa bhi gana ho jaye, aapke Anusha ke liye zarur, meri jaan. So we have the next one for you, Varuna. Hey Varuna, how are you? Bolte hai aapke favorite RJ ke liye. Oh, oh, meri jaan. Kya baat hai? So for you as well, my beautiful lady. Next one, for me, beta masa. Ye kya hai? For me, beta masa. बेटा मासा, ये आपका नाम है, पता नहीं आपने क्या लिखा है। सो मेरी जान, हम डिकोड कैसे कर सकते हैं ऐसे ऐसे मैसेजेस। कोई बात नहीं, जिसने भी लिखा है ये अगला गाना आपके लिए, आपके लिए है। तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर सिटिंग इन अ बस राइट नाउ, और बस में कभी कभी जब हम बैठे होते हैं ना तो बड़ी जोरों शोरों से सुन रहे होते हैं RM2 रेडियो मस्ती। तो अगर यही बात है, ये गाना आपके नाम। 5499-1294 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस।

0: Oldies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए बात करेंगे अबाउट द मोस्ट

एक अवेटेड पैट्रियोटिक ड्रामा जो है 2024 के इट्स दो लाहौर 1947 बिल्कुल जी सनी डियोल प्रीति जिंटा और आमिर खान की ये मेगा फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होने वाली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक टीजर नेक्स्ट महीने लॉन्च किया जा सकता है और फैंस स्पेशली सनी डियोल और प्रीति जिंटा की आइकॉनिक जोड़ी को बड़े स्क्रीन पर कम बैक करते हुए देखने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड है जी बिल्कुल फिल्म को डायरेक्ट किया जा रहा है बाय लेजेंडरी फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी जिन्होंने पहले घायल और दामिनी जैसे कल्ट क्लासिक्स दिए हैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनी देओल और संतोषी का रियूनियन ऑलमोस्ट 30 साल बाद हो रहा है इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो है ऑलरेडी स्काई हाई हैं और मूवी इज गोइंग टू बी बेस्ड लाइक इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के इमोशनल बैकड्रॉप पर बेस किया है और जो फेमस प्ले जिस लाहौर ने विख्या ओ जामिया ए नई से इंस्पायर्ड किया गया है वैसे बताया जा रहा है कि स्टोरी एक मुस्लिम फैमिली और एक एल्डरली हिंदू वुमन की इमोशनल बॉन्ड के अराउंड घूमती है जिसमें ह्यूमैनिटी और यूनिटी का पावरफुल मैसेज जरूर होगा कास्ट भी काफी स्ट्रांग है उसमें सनी देओल पाजी दिखाई देगा और प्रीति जिंटा शबाना आजमी अली फजल और करण देओल इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे वैसे म्यूजिक का मैजिक ए आर रहमान क्रिएट कर रहे हैं और लिरिक्स लिख रहे हैं जावेद अख्तर साहब और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में फिल्म का टाइटल बटवारा 1947 होने की बात सामने आई थी लेकिन आमिर खान ने क्लैरिफाई किया कि ऑफिशियली टाइटल अभी भी लाहौर 1947 ही है ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि गदर 2 और बॉर्डर 2 के बाद सनी देओल की मास पॉपुलैरिटी अभी पीक पर है और इसी वजह से लाहौर 1947 को ऑलरेडी 2024 की पोटेंशियल मूवी में माना जा रहा है।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए जी देखते हैं ऑन 5491294 पर आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस लश्कर के साथ में आंदर चलिए जी द नेक्स्ट वन जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे खूबसूरत सा गाना हसबैंड आश्विन के लिए इज वर्किंग राइट नाउ एट द मोमेंट सो कुगाश टू यू आपकी ब्यूटीफुल वाइफ प्रीतिशा की तरफ से मामा आशा पापा राजीव बहन श्रेया खुशी एंड ब्रदर वीर मोंगा फैमिली एंड दोयाल फैमिली के लिए फ्रॉम ट्रू दू डू से लेस्पेरेंस पीतों से भी हैं सो हैव अ ग्रेट टाइम बाय लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन हे ग्रीटिंग्स गनीशाम फ्रॉम नेदर Lens, I'm enjoying your beautiful songs again. Thank you, sir ji. आपका नाम है Jimmy Jimmy. आजा आजा कैसे हो मेरी जान? Hey Vina Jagisa from Bellevue Morel. एक गाना सभी परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, आपके लिए और सभी लोगों के लिए जो साथ दे रहे हैं. That's so sweet of you. Thank you so much. Enjoying the show, returning from work, dedicating the next one. बेटी Kaira के लिए, बेटा Prayan and Mama Krishti and also we do have Nani Sarita, Jani Anita, Shobha Nana Mukesh. Sugan Manoj, Masima, Manisha, Obhu Parivar from Rosil, Diapul family of Leskali and Nikit Singh Parivar from Rosbell. And chaliye ji, we do have Kumar Debichan ji. Kaise ho bena? Bhai sahab, hum bilkul theek hai. Aage vapas kaam se from the college and abhi garma garam ilaichi wali chai pee rahe ho apne papa ke saath, Mr. Shyam ke saath. You are from Piribea, so... You just want to say, I love you, Papa, every day. That's so sweet. You still have this chance to say, I love you, Papa, jab tak aapke paas Papa hai aur ye chance hai bolne ka. So please do tell your Papa. Apne mummy, Papa ko zarur bolte rehna ki aap unse kitna pyar karte ho. Kyunki jab tak ki wo hai, to aapke paas saari blessings hai. Jab wo nahi honge, then you will realize ki what you're missing in your life. Here the next one goes out to everyone jo saath de rahe hain, Ginisha. Thank you so much, ji. And here we go. Ye agla gana hamari taraf se to all lovely listeners on R&2 Radio Mastich.

0: Mikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: Well, guys, that was such a beautiful and mesmerizing track in the lovely voice of Jubin Nautiyal. Are you a fan of Jubin Nautiyal? Well, let me ask the Manishma. Manishma, aage hai in the studio. So, kya ko Jubin Nautiyal ke gaane acche lagte hain? Do you love his voice?
4: Oi, tere hawale kar diya.
3: Hi, hi, meri jaan.
4: Mera dil main na Jubin ke saamne ja hi nahi sakungi.
3: Kyun?
4: प्यार हो जाएगा आवाज के साथ, पर्सनालिटी के साथ भी. मैंने कहा कि अब मैं बस ना उसको प्ले बैक सिंगिंग में देखूंगी और सुनूंगी, इतनी खूबसूरत है वो.
3: यस्टरडे व्हेन आई केम ना, यू नो, परी वाज टेलिंग मी, आज परी की गिनने डे मुझे जाना है, आपको चलना है मेरे साथ. मैंने कहा इफ यू लव हिम आई हैव टू वॉच हिम, तो शी सेड या मुझे भी जाना है.
4: नहीं, इतने खूबसूरती से वो गाते हैं, जो सेंसिबिलिटी है और रोमांस है जो डेपिक्ट करता है उसकी आवाज में, या कोई मैच नहीं है उसकी.
3: And I remember उनका एक कॉन्सर्ट आया था, I don't know where, और उन्होंने बोला था कि ये गाना और ये उनके लिए गाना चाहता है to all those who have actually who has fallen in love and lost in love.
4: Yes, oh my God.
3: That hits really hard on me. ये मुझे अच्छा लगा. तो चलिए जी, आपको याद दिला दे, अगर आप जाना चाहोगे, I don't know, परी तो she's full on excited. I don't know who's going to join.
4: मैं भी.
3: Okay, so we are all going to join you guys there.
4: मैं सोचूंगी.
3: नहीं, सोचना नहीं है. इट्स अ मैजिक म्यूजिकल जर्नी एंड इट्स गोइंग टू हैपन दिस सैटरडे. इस सैटरडे 30 मई 2024 रात के 8 बजे से लेकर आता है SVICC पाई फॉर एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. यू कैन जॉइन अस विद Jubin Nautiyal. सो द कॉन्सर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलाबोरेशन विद ticketbox.mu. और अगर टिकट खरीदना चाहोगे सो www.ticketbox.mu पे जाइए एंड यू कैन ग्रैब योर टिकट्स देयर. एंड रिजर्वेशन के लिए यू कैन कॉल द हॉटलाइन 214-64-64-64. At 214-64-64.
4: And what's your favorite song of his?
3: सारे अच्छे हैं यार, सारे अच्छे हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं.
4: या गाने में फर्क नहीं हो सकती है.
3: Actually, when you love music, so you just get drawn into that.
4: Yes, yes, yes. All the best.
3: तो चलिए जी, it's time for me to say goodbye to you. Like and rendezvous for tonight. शाम के 7 बजे से लेकर रात के

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, it's 4 p.m.
6: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ सुमेरा। नमस्कार आपको।
7: नमस्कार रादाब। कम बारिश की वजह से जलाशयों पर बहुत दबाव है। पानी की सप्लाई के लिए नए साधन तलाशने की बहुत बड़ी जरूरत है। मुर्शिद के लिए जल संचालन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। महोबा को सिर्फ 48% भरा है। अधिकारी जल संचालन की रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नदियों में करीब 50 फिल्टरों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा भूमिगत जलाशयों के वास्ते टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारी कम महंगी वाली परियोजनाओं को मद्देनजर रख रहे हैं। उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसर एक कार्यशाला लगाई गई, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कोमेजा तथा दक्षिण

0: अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समाज सुरक्षा दफ्तर रिजिल में सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया, लाभार्थियों के दस्तावेजों को डिजिटलाइज बनाने का सुधार अपनाया गया है ताकि उनको दी जा रही सेवाओं को मजीद तेज तथा आधुनिक बनाया जा सके। लॉन्चिंग के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभों और जूनियर मंत्री कुकान पगापेन भी मौजूद थे। विदेश में वॉशिंगटन में कागज के कारखाने में रासायनिक विस्फोट की वजह से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है, 9 लोग अभी भी गुमशुदा है जबकि दूसरे 9 लोगों के घायल होने की खबर है। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। मिहदीदीन लेन सैपुल फिनिक्स में 57 साल के 57 years old श्री मनोज कुमार मिहदीदीन, जो कोको के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई रितेश मिहदीदीन के घर मिहदीदीन लेन सैपुल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलेब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। आले जाक बॉम्बू में 60 साल के 60 years old श्री सदेव जीतन जो कॉल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके भाई सुशील जीतन के घर आलेजाक बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। नॉर्थर्न बाउंड्री कैथोबोन में 40 साल के 40 years old श्री प्रीत गुरुदयाल जो आकाश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी माँ मावती गुरुदयाल के घर नॉर्थर्न बाउंड्री कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतो कोदुगौद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: चलिए वेलकम, स्वागत है आप सभी का बुधवार 27 मई 4 बजे के बाद, यानी कि 4:08 हुए हैं यहाँ पर। वेलकम, स्वागत है आप सभी का न्यू रफ्तार वाइब्स विद मी मनीषमा। वैसे यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे गाने चुनकर लाए हैं आपकी खिदमत में, हाजिर हूँ मैं 7 PM। अरे न सिर्फ गाने, बस टिकट भी है आपको देने के लिए, तो जुड़े रहिए।

0: जुड़िया फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन टेकन फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अगेन अ वंडरफुल आफ्टरनून गुड टू ईच एंड एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएम टू रेडियो मस्ती यहां पर यू कैन प्ले विद आरएम टू एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जॉबिन नॉट योर लाइफ कंसर्ट। जी हाँ, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अभी के अभी और बताएगा ये जो अगला गाना चला रहे हैं एक बार याद जुबिन वर्जन इज टेकन फ्रॉम विच मूवी। सिंपल बनाते आपके आफ्टरनून को, आप बस बताइएगा ऑन दिस नंबर 549 and 1294 पर एक वारिया जुबिन नौटियाल के जो वर्जन इज टेकन फ्रॉम विच मूवी और जीतिए हमारे साथ ये प्लैटिनम टिकट। ऑल द बेस्ट
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: अच्छा, पूरे नाम और पते के साथ मैसेज भेजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गुड आफ्टरनून। सही जवाब का इंतजार 5499 1294 पर।

0: मोतीलाल की आवाज में ये गाना वो सीख फ्रॉम विच मूवी सवाल था आपके लिए और द राइट आंसर इज राब्ता लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ है विद द राइट आंसर बन गई है विजेता फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस प्लैटिनम टिकट हमारे साथ है लवीना कंग्रेचुलेशंस टू यू लवीना जी आप रहते हैं ब्रिजेवा जी थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस हियर यस यू वन द वन प्लैटिनम टिकट टू सी द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट जॉइन द मैजिक म्यूजिकल जर्नी ऑन सैटरडे 30th ऑफ मई 2026 को रात्रि के 8 बजे से लेकर वैसे देर रात तक हो जाएगी आपके लिए और एट SBICC 5 में भूलेगा मत दिस अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल द कंसर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu for booking you can please go on the website www.ticketbox.mu for reservations and call hotline on 214-6464 thank you so much for participating have a wonderful afternoon ahead
1: Raftaar Vibes Filmy Rides
2: RM2
3: Radio Musti

0: क्या बात है, जावेद अली फॉर यू एंड अंतरा मित्रा साथ में निभाते हैं आपके लिए ऑन द वेव्स ऑफ आरएमटी रेडियो मस्ती। यहाँ पर हम साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे एमपीसी प्ले 1.0 द न्यू वर्जन को। जी हाँ, डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा और लेट मी टेल यू कि रजिस्टर करने के बाद ये जो एमबीसी ओटीटी आपके नाम के साथ आ जाते हैं उसको आप स्क्रीनशॉट करके हम तक पहुँचा दीजिएगा 5491294 पर और बनिए वन ऑफ द चोजन पीपल आफ्टर लकी ड्रॉ जो कि हर शाम को, जी हाँ, टिल द 29th ऑफ दिस मंथ, आज और कल और परसों भी होगा। आप क्या चल रहा है, आज और कल होगा ये लकी ड्रॉ। शाम को 5:30 बजे हम दो लिसनर को, दो चोजन पीपल को लकी ड्रॉ करने के बाद लेंगे ऑन एयर। एक सवाल करेंगे हम आपसे और आपको जल्दी से जवाब देना होगा एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ड्रॉ। यस, द वन हु इज शॉर्ट लिस्टेड टुडे और टुमारो विल बी क्वालिफाइड फॉर द लकी ड्रॉ, फाइनल ड्रॉ जो लगने वाले 29th ऑफ मे को। सो ऑल द बेस्ट गोज आउट टू ऑल दोज जिनके पास है ये एमबीसी प्ले 1.0 न्यू वर्जन है, स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा हम तक 5491294 पर। ऑल द बेस्ट।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2
1: रेडियो मस्ती।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News,
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए अभी के लिए कदम डालते हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया में. हाजिर है स्टूडियो में अरविंद जी. गुड आफ्टरनून टू यू.
5: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून लिसनर्स. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फुटबॉल. वैसे विला जानते हो क्या है? विला. हाँ, विला. तो विला में एक ट्रॉफी आ गई. अब पैलेस है, पैलेस. अब पैलेस में ट्रॉफी आएगी या नहीं ये देखना है. सो अब कहने का मतलब है, इन फुटबॉलिंग टर्म्स, क्रिस्टल पैलेस आज फाइनल खेल रहा है रायो वालेकानो के खिलाफ, जबकि इससे पहले आस्टन विला यूरोपा लीग जीत चुका है. और इंग्लैंड से ही क्रिस्टल पैलेस, उसके पैलेस में ये यूरोपा, ये कॉन्फ्रेंस लीग वाला ट्रॉफी आएगा या नहीं ये आज पता चलेगा. पर अभी से ही महल के बाहर गड़बड़. 60 क्रिस्टल पैलेस फैंस, उनको अरेस्ट कर लिया गया है. ट्रबल मेकर्स बोलते हैं उनके उनको. और लेप्ज़िग में जहां पर ये फाइनल खेला जा रहा है वहां से उनको निकाल दिया गया है. थाउजेंड्स ऑफ फैंस ट्रैवल कर गए हैं लेप्ज़िग में फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल, जो पैलेस और स्पैनिश साइड वालेकानो के बीच होगा. तो ये मैच मैदान से पहले, मैदान के बाहर हाथापाई शुरू हो गई है. मैच को लेंगे तो क्रिस्टल पैलेस को फेवरेट बनाया गया है, लेकिन रायो वालेकानो का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ला लीगा में. दे फिनिश्ड 8th, जबकि क्रिस्टल पैलेस प्रीमियर लीग में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, 15th पोजीशन पे. तो इसमें क्रिस्टल पैलेस का अनुभव ज़्यादा है इन यूरोप, और उनका जो टॉप स्कोरर है इस्माइल असार 9 गोल स्कोर कर चुका है. सो एडवांटेज क्रिस्टल पैलेस. इंग्लैंड में एक ट्रॉफी आ गई है, आज अगर ये भी आ जाए तो ठीक ही है, और अगर आर्सेनल जीत जाए तो सोने पे सुहागा. सो दिस इज़ दी फाइनल जो आज खेला जाएगा. वैसे फुटबॉल को लेकर इधर खबर है कि बार्सिलोना न्यूकासल यूनाइटेड से बात कर रहा है उसके खिलाड़ी गोर्डन को साइन करने के लिए, एंटोनी गोर्डन. लेकिन बायर्न म्यूनिख भी इस रेस में है. साथ साथ में स्पर्स को चाहिए कंप्लीट रीसेट, ऐसा उसके अंडर फायर सीयू ने कहा. बाल बाल बचे रिलेगेशन से, लेकिन वी कैन से इस टीम को पूरा बदलना चाहिए. इधर कास्पर स्माइकल सीरियस शोल्डर इंजरी के कारण एट द एज ऑफ 39 वो सेल्टिक और डेनमार्क का गोलकीपर वो रिटायर हो रहा है. ये स्माइकल, आपको पता है कास्पर स्माइकल जो अपने पिताजी की तरह एक ग्रेट गोलकीपर हैं. इधर लियोनेल मेसी का एक 70 फीट स्टेचू जो इंडिया में था उसे अनसेफ बताया जा रहा है, और उसे शायद वहां से निकाला जाएगा. और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बॉस नूनो ने कहा कि रिलेगेशन के बावजूद वो क्लब को नहीं छोड़ेगा. नहीं छोड़ेगा एक बात है, उसे वहां रहने देंगे ये दूसरी बात है. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इतना कुछ फुटबॉल के बारे में. टेनिस में भी काफ़ी कुछ हो रहा है विद द फ्रेंच ओपन, अभी काफ़ी मैच खेले जा रहे हैं. सो कुछ नतीजे आज सुबह, आज दिन के दौरान जो मैच खेले गए. श्वातिक ने बेजलेक को हराया 6-2, 6-3. फिर अभी मैच चल रहा है वितोलिना और क्वेवेडो के बीच.

फर्स्ट सेट में विटोलिना 6-0 से जीत पाई और आज जोकोविच का मुकाबला रोयर से होगा। मैच खेलेगा वेरेज के साथ। डेमिनो अपना मैच जीत गया वॉकओवर से, उसका मुकाबला ब्लॉक से था, जबकि रिबाकीना खेलेगी, लेट मी चेक इफ आई गेट द नेम राइट, इस Tara Dubseva ke khilaf. Paolini will be against Sarah Rude against Medvedevic.

0: मुश्किल हो जाता है. एनीवे जिसे क्रियोली भाषा में बोलते हैं ललांग माई, होता है ऐसा, ये नाम ही ऐसे है.
1: और टंग ट्विस्ट
0: है. हाँ, तो चलिए यहाँ पर क्रिकेट के बारे में बता दें. आज एलिमिनेटर है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच. न्यू चंडीगढ़ में ये मैच खेला जाएगा. जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा खेलने गुजरात टाइटंस के खिलाफ, और जो हार जाएगा उसको आईपीएल 2026 को अलविदा कहना होगा. सो राजस्थान रॉयल्स, ऑल आईज वंस अगेन विल बी ऑन वैभव सूर्यवंशी. जो अभी कुछ छक्का बनाएगा तो वो एक रिकॉर्ड तोड़ सकेगा, क्रिस गेल का ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ए सिंगल आईपीएल सीजन. सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. थोड़ी देर बाद विल हैव द स्पेशल वर्ल्ड कप.
2: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानिट एक क्वार्ट्ज, रिकासे लो लावो, ला लिनिया मोडेन प्रिसोक.

0: को।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Get ready for the biggest World Cup ever!
3: 2026 FIFA World Cup.
2: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
3: चलिए
2: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
3: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
4: चलो वर्ल्ड कप योर वर्ल्ड कप स्पेशल गाना के प्रिलिमिनरी स्क्वाड में आर्सेनल के फॉर्मर मिडफील्डर टोमास पार्टी को नाम किया गया है, उसको रखा गया है स्क्वाड में. अभी पार्टी पर रेप और सेक्सुअल असोल्ट के आरोप हैं. पार्टी अभी विलारियल में खेलता है. अभी तक प्री वर्ल्ड ट्रेनिंग चल रही है. फिर वेल्स के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच. सिटी का स्ट्राइकर अंतोन सेमेन्यो, कोवेंट्री का ब्रेंडन टोमास असांते, लेस्टर से जॉर्डन आयू भी स्क्वाड में हैं. टोटनहम हॉटस्पर का मोहम्मद कुदुस इंजरी के कारण स्क्वाड में नहीं है. वर्ल्ड कप स्पेशल में टॉप स्कोरर पर फोकस करेंगे. जर्मनी का मिरोस्लाव क्लोजे ऑल टाइम टॉप स्कोरर है 16 गोल्स के साथ, 16 गोल्स 4 वर्ल्ड कप में खेलकर. फिर आते हैं ब्राजील का रोनाल्डो 15 गोल्स, गर्ड मुलर 14, जस्ट फोटेन 13, लियोनेल मेसी के खाते में है 13 गोल, एम्बापे के पास 12. ये दोनों ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. एक ही टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड जस्ट फोटेन का है. ये 1958 वर्ल्ड कप में हुआ था. 2022 का फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड, जिसे गोल्डन शू कहते हैं, किलियन एम्बापे ने जीता था 8 गोल के साथ. 2018 में हैरी केन 6 गोल्स, 2014 में रामेस रोड्रिगेज 6 गोल, ब्राजील से रोनाल्डो 2002 में 8 गोल, 1970 में गर्ड मुलर 10 गोल्स, 1966 में यूजेबियो 9 गोल और 1958 में जस्ट फोंटेन 13 गोल. ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है. इस बार स्वर्णिम जूता यानी गोल्डन शू किसको दिया जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, पर इतना कह सकते हैं कि धन धनाधन गोल, गोलों की बारिश होगी जरूर, क्योंकि इस बार 48 टीम्स भाग ले रही हैं. सो मोर मैचेस मोर गोल्स, और इसका मजा हम लेंगे जरूर इन द वर्ल्ड कप. हमारे साथ जुड़े रहिए, विल बी गिविंग यू ऑल द अपडेट्स.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Fifth Archives, Filmy Rides,
1: RM2,
2: Radio Musti.
3: वैसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं सेकंड आवर में। वैसे मुलाकात अभी बाकी है, शाम के 7 बजे तक मनीष मा का साथ है।

0: ये बारिश, कहीं पर जोर जोर से बारिश हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कह रही कि आप वेदर में थोड़ी सी सुधार कहीं कहीं पर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आर इनटू रेडियो मस्ती, वेलकम इन द सेकंड आवर। यहाँ पर बस साथ माने के लिए आ गए हैं सम रियली नाइस ट्रैक आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: देखो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड टेकन फ्रॉम द मूवी लव याप्पा, यहाँ पर जो भी नॉट याल के गाने चल रहे हैं, आपको सिर्फ ये एक सवाल का जवाब देना होगा और यहाँ पर जीत सकते हैं प्लैटिनम टिकट टू द स्पेक्टेकुलर जो भी नॉट याल लाइव कंसर्ट। जी हाँ, आपको सिर्फ बताना है कि द हॉटलाइन का नंबर फॉर द बुकिंग एंड रिजर्वेशन क्या है फॉर ticketbox.mu। बताइएगा हॉटलाइन ऑफ ticketbox.mu। आप ना बस कंप्लीट ही कर दो 214 एंड देन कौन सा नंबर आता है 214 द हॉटलाइन बता दीजिएगा ऑन दिस नंबर 5491294 पर। ओके 214 एंड कंप्लीट द नंबर, बताइए ये हॉटलाइन फॉर टिकट बॉक्स फॉर मोर रिजर्वेशन एंड दिस इज द हॉटलाइन। आपको बताना है द हॉटलाइन का नंबर ऑन दिस नंबर 5491294 पर। जीते हमारे साथ ये अमेजिंग टिकट प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द जुबिन नौटियाल लाइव कंसर्ट।
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Masti.

0: वैसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल ticketbox.mu का हॉटलाइन बताने का, और द हॉटलाइन इज 214-6464. सही जवाब देकर बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, और हमारे साथ है हमारे लकी विनर का नाम है विलास शाह. कंग्रेचुलेशन. क्या बात है विलासा जी, कंग्रेचुलेशंस के साथ यू यू विन द प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल कंसर्ट जो ऑन द मैजिक म्यूजिकल जर्नी ऑन द 30th ऑफ मे सैटरडे को 2026 फ्रॉम 8 PM एट SVICC फॉर एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल. द कंसर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन www.ticketbox.mu for reservations and you can call the hotline जैसे कि हमने बताया था 214-6464. वैसे जुबिन नौटियाल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स इन इंडिया एंड बॉलीवुड. वी टॉकिंग बॉलीवुड लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉलीवुड कमिंग टू मॉरिशस एंड ही इज नोन फॉर हिज सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड इमोशनल वॉइस. साथ ही साथ जुबिन इज एडमायर्ड फॉर ब्लेंडिंग रोमांस सैडनेस एंड मेलोडी इन टू हिज सिंगिंग स्टाइल मेकिंग हिम अ फेवरेट अमंग म्यूजिक लवर्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. ओवर द इयर्स ही हैज वन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग IIFA अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर आतालंबिया. टुडे ही इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज लाइव परफॉर्मेंसेज एंड चार्ट टॉपिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेज विद हिज हार्टफेल्ट वॉइस एंड स्टेज प्रेजेंस. वैसे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद. ग्रीन कंग्रेचुलेशन जो रहते हैं. लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन प्लेइंग खुसू खुसू फॉर यू. हियर वी गो.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu baignes de parfum? Tu l'auto aussi baignes de parfum? Tu sale des bains si baignes de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Mais toi l'im sandale 24-7 toi?
3: Sen là, tu peux en trouver ça? Fic des bords qui sen là?
1: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fraîcheur dans ton postement sportif.
3: Vrai, même tu bien comique, toi. Hein? Allez, essaye tout. Allo Kick, peinasse au deuxième sans bosser.
4: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
5: 45 millions de roupies au loto et les tirages, c'est dans quelques heures seulement. Le jackpot du Loto Plus est estimé à 6 millions de roupies, tandis que celui du loto donne le vertige. Avec environ 45 millions de roupies. 45 millions de roupies au loto ce soir. Cette semaine, c'est celle de la fête des mères. Voyez plus grand qu'un cadeau cette semaine. Partagez l'émotion d'un rêve possible.
6: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
1: RM2
2: Radio Mustang.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और एमटी
2: रेडियो मस्ती।
1: चलिए गुड आफ्टरनून, 5:30 बज रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हर रोज हम यहाँ पर दो मेहमानों को लेते हैं ऑन एयर और उनसे उन दोनों से पूछा जाएगा एक सवाल। उनको जल्दी से, सबसे ज्यादा जल्दी जो कोई जवाब देगा वो बन जाएगा द वन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ड्रॉ, जो कि 29th of May को लगने वाला है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीसी प्ले 1.0 द न्यू वर्जन, जहाँ पर लोगों को रजिस्टर करना है और एमबीसी ओटीटी नाम के साथ हमको स्क्रीनशॉट भेजना था 549 and 1294 पर, और जिन्होंने सही तरीके से किया है और हमारे लकी ड्रॉ में आ गई। हमारे साथ शोभा जी, हेलो नमस्ते।
3: हेलो नमस्ते,
1: वेलकम ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती।
3: थैंक यू।
1: ओके जी, आप नर्वस ना हो जाइए। ओके हम साथ में बात करने वाले हैं विद शालिनी जी। हेलो
3: हेलो
1: शालिनी जी, जो थोड़ी देर

0: पहले ड्राइव करी थी, आई होप कि आप ने गाड़ी को साइड किया है। ओके जी, सो मैं दोनों का टाइम नहीं लूंगी, अभी फटाफट एक मैं सवाल करूंगी, आप दोनों को जल्दी, द वन हु विल आंसर द क्विकेस्ट ओके विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल ड्रॉ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा सवाल ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट कैन बी वॉच्ड लाइव ऑन MBC प्ले?
1: वी कैन लिसन टू रेडियो एंड वॉच टीवी।
0: ये शोभा जी ने जवाब दिया है अभी, रेडियो टीवी यस स्पोर्ट्स आल्सो। मैंने कौन है?
1: शालिनी जी।
0: ओके शालिनी जी ने दिया है ओके ये चिप, आपका नाम और ये जो फोन का ये जो वेव है गलत हो गया। शालिनी जी जो गाड़ी चला रही थी आप ही हो ना? हाँ जी ओके। तो शोभा जी आप थोड़ी देर बाद आपने जवाब दिया है, थैंक यू सो मच शोभा जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। दो शोभा जी जाने से पहले एक आप मैसेज भेजना चाहती हैं, डेडिकेशन करना चाहती हैं, हम आपको सुन रहे हैं।
2: अगला गाना मेरे सब परिवार के लिए।
0: अच्छा जी,
2: हाँ
0: इतना ही
2: सभी।
0: अरे यार थैंक यू, आपने तो दिल जीत लिया शोभा जी। शालिनी जी थैंक यू सो मच। अभी शोभा जी थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड योर पार्टिसिपेशन। अभी शालिनी जी कंग्रेचुलेशंस टू यू,
1: थैंक यू।
0: यस गाड़ी साइड करके आप खुश हो गई ना? वैसे आप सिलेक्टेड हुई अभी चालू है। डोंट से दैट कोई सुन लेगा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज आप गाड़ी ना चलाओ ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हम 29th को विश करेंगे आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सिलेक्टेड हुई है फॉर द फाइनल ड्रॉ जो लगने वाला है ऑन 29th ऑफ दिस मई। ओके जी,
1: थैंक यू सो मच।
0: अच्छा शालिनी जी कुछ कोई मैसेज है, किसी के नाम डेडिकेट करना चाहती है अगला गाना?
1: For my whole family and of course to you and all the best FM listeners.
0: Thank you so much, Shalini ji. Bye bye. Have a wonderful drive.
1: Thank you very much.
0: Bye.
3: Raftar Vibes. Filmy Rides. RM2. Radio Musti.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: आप पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं. देन पिक अ सिंगुलर कलर, जो कुछ भी है आपके वार्डरोब में, तो सिंगुलर कलर भी ऊपर से नीचे तक आप सजा सकते हो अपने आप को. यस, यू कैन स्पॉट इट फ्रॉम हेड टू टो एज एवरीबॉडी डज इट. आई सी इट एवरी डे, सो मेनी पीपल डज इट. एंड यहाँ पर आई गेट यू नो दिस एडवाइस, डोंट यू नो इट व्हेन यू पिक अप अ सिंगुलर कलर, सर से लेकर पांव तक, यू नो इट इट फील्स लाइक इट्स अ कंटिन्यूस लाइन. द लेस यू ब्रेक, यू नो द लॉन्गर यू लुक, इट्स लाइक दिस. सो ऑल दोज पीपल हु जो कदम में थोड़े से छोटे रहते हैं, तो फुल कलर, यू नो द ब्लेजर शुड बी, इफ यू चूज इन फॉर अ ग्रीन कलर, द शॉर्ट इज ग्रीन, द पैंट इज ग्रीन, एंड यू नो सर से लेकर पाँव तक ग्रीन ही ग्रीन, एंड देन यू फील लाइक इट्स वाइडर. या ऐसा ही कुछ ये हमारा फैशन नज़रिया है, एंड आई होप कि आप उसको अप्लाई कर पाएंगे आपकी डे टू डे लाइफ में. हर रोज़ एक नया कलर, और आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितने खूबसूरत रंगीन बन जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आरएम टू रेडियो मस्ती.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2
2: Radio Musti.

0: शाम के ठीक 6 बजे हैं। अहम खबरें सुनिए। मोगोवाकवा सिर्फ 48% भरा है। अधिकारी जल संचालन रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नदियों में फिल्टरों की स्थापना और भूमिगत जलाशयों के लिए टेंडर प्रक्रिया मुख्तलिफ कदमों में शामिल। समाज सुरक्षा दफ्तर रुजिल में सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया। लाभार्थियों की दस्तावेजों को डिजिटलाइज बनाने का सुधार अपनाया गया ताकि उनको दी जा रही सेवाओं को और तेज तथा आधुनिक बनाया जा सके। सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीकाकरण अभियान देश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू। अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों ने ये टीका लगवा लिया है। और यूरोप में गर्मी की तेज लहर, स्पेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नमस्कार और आदाब। कल कम बारिश की वजह से जलाशयों में बहुत दबाव है जलाशयों पर बहुत दबाव है। पानी की सप्लाई के लिए नए साधन तलाशने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुर्शस के लिए जल संचालन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। मोगोवाकवा सिर्फ 48% भरा है। अधिकारी जल संचालन की रणनीति पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नदियों में करीब 50 फिल्टरों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा भूमिगत जलाशयों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारी कम महंगी वाली परियोजनाओं को मद्देनजर रख रहे हैं। पानी को स्टॉक करने के वास्ते भी कदम उठाए जा रहे हैं। नीतूषा जिहा।
1: मई के इस महीने में मोगोवाकवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

0: द्वीप का प्रमुख जलाशय केवल 48% तक ही भरा हुआ है। इस वर्ष भी गर्मी में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। फरवरी, जिसे आमतौर पर सबसे अधिक वर्षा वाले महीनों में गिना जाता है, उसमें भी सामान्य वर्षा का केवल 27% ही दर्ज किया गया। इस स्थिति का प्रभाव केवल जलाशयों पर ही नहीं बल्कि नदियों पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की बारिश लगातार कम होती जा रही है।
1: Durant 5 dernières années, nous avons gagné 2 ou 3 l'événement de déficit pluviométrique. Actuellement, nous avons un stock total de à peu près autour de 66% de maximum. Mais l'année dernière, nous avons fini affiche un stockage de à peu près 80-85%. Nous avons un déficit de à peu près 22% quand nous comparons à l'année dernière. Et quand nous comparons à l'année 2024, que là, nous gagnons bon la pluie durant la période de janvier, février, mars, nous avons un déficit de plus que 50%.
0: हर साल दोहराई जाने वाली स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय जल नीति में बदलाव लाना पड़ा है। मुख्य उद्देश्य है जल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना।
1: Sa réservoir qui nous est rempli durant le mois de janvier, février, mars, c'est ça même ça stock là nous servit durant le mois d'octobre, novembre et décembre. Mais cette fois-ci, nous pas fini réussir rempli ça. Ça veut dire ça stock qui nous est là actuellement là, nous besoin faire durer le plus longtemps possible.
0: प्रस्तावित समाधानों में नदियों में कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स की स्थापना भी शामिल है। अब तक लगभग 50 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।
1: Ça, l'IP aide beaucoup à pallier ban manque dans ban région très déficitaire. Côte, par exemple, si il y a ban forage, c'est-à-dire ban borehole qui peut chuter, bien à partir de là, ce qui peut arriver, c'est que je peux pallier ce ban manque là à travers ban containerized pressure filters. Il y a un ban appel d'offres qui nous finit lancer pour ça, pour faire ban forage, tout ça. Développe ban forage davantage dans différentes parties de l'île, mais surtout nous donne priorité dans ban région un peu sec.
0: जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अन्य प्रस्ताव मिनी डैम्स का निर्माण। ऊर्जा मंत्रालय वाटर डिसैलिनेशन की संभावना पर भी अध्ययन कर रहा है। इस संबंध में एक टेंडर जारी किया जा चुका है।
2: उपभोक्ताओं की हिफाजत के लिए एक नए कानून पर काम किया जा रहा है। आज सुबह पैदावारों पर मुनहसिर एक कार्यशाला लगाई गई जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने शिरकत फरमाई। गैर सरकारी संगठनों और कोमिजा तथा दक्षिण अफ्रीका से नेशनल कंज्यूमर कमीशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुनल गुजी, आशिता रघु।
3: उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए कानून के तहत परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जिस पहलू पर विचार किया गया वह है उत्पादों की सुरक्षा। कॉर्पोरेट जोखिम या मुनाफे के अनुपालन पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन हमें कभी भी वास्तविक मानवीय कीमत को नहीं भूलना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाण पत्र उत्पाद की मजबूती जैसे प्रदर्शन मानदंड तथा बाजार निगरानी तंत्र, ये सभी पहलू जिम्मेदार व्यापार सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में शामिल किए जाएंगे। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आयातित उत्पाद मॉरिशस पहुंचने से पहले सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हों।
4: प्रोडक्ट सेफ्टी इज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी।
3: उत्पाद सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। प्रस्तावित महत्वपूर्ण उपायों में असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगवाने से जुड़े कड़े प्रावधान, अनुचित अनुबंध शर्तों पर रोक और कानून लागू करने की क्षमताओं को और मजबूत बनाना शामिल है। आसिम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रोटोकॉल को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। मॉरिशस उपभोक्ता संघ की एक सिफारिश ये है कि उपभोक्ताओं के लिए सहायता तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें कानूनी सहायता भी शामिल हो।
5: Au-delà de la sécurité, la possibilité que de pagaye satisfaction qu'ils ont capable challenge ça.
3: सुरक्षा से अधिक असंतुष्टि होने पर आपको अदालत तक जाने का अवसर मिलेगा। उत्पाद के साथ-साथ सेवा पर भी बल डाला जा रहा है। उचित लेबलिंग का होना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ऐसे कानूनी ढांचे पर विचार कर रहा है जो ऑनलाइन बिक्री, भ्रामक विज्ञापनों और ग्रीन वॉशिंग जैसी मौजूदा समस्याओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत बनाए।

0: कल राष्ट्रसभा में कॉन्स्टिट्यूशन और रिव्यू कमीशन बिल को दूसरी पढ़त पर पेश किया गया। संविधान में सुधार लाने के मकसद से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने लोकतंत्र को मजबूत करने, सरकारी संस्थाओं में असमानताओं को खत्म करने और सुधारों में जनता के फायदों को ध्यान में रखने पर जोर दिया। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, इतला करने की आज़ादी, जुडिशियल और चुनाव प्रणाली में सुधार, आयोग इन सभी पहलुओं का जायजा लेगा। अब्दुल बुला की रजनी बेकर।
1: दूसरी पढ़त पर कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बिल के प्रस्तुत किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री ने इस विधेयक के महत्व पर जोर दिया, खासकर सरकारी संस्थाओं में निष्पक्षता बढ़ाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करते हुए। इसके अलावा डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आयोग के उद्देश्यों पर भी बात की, जो अपने कार्यों में जनता के हितों को आगे रखेगा। उन्होंने कहा,
2: By this bill we take an important step to fulfill an electoral promise.
1: इस विधेयक के साथ एक अहम कदम उठा रही है चुनाव वचनों का पालन करने की दिशा में। आज हम संविधान में सुधार नहीं ला रहे हैं, बल्कि स्वतंत्रता की बात कर रही है, इसे कायम करने की बात कर रही है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन, जिसके अंतर्गत विस्तृत रूप से परामर्श किए जाएंगे, संवैधानिक सुधारों की जांच की जाएगी और राष्ट्रपति तथा इसके साथ साथ सरकार को सुझाव पेश किए जाएंगे। आयोग को सभी विचारों को सुनने की जिम्मेदारी होगी, विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी, साथ में सिविल सोसाइटी संस्थाओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ, कानूनी पेशेवरों के साथ, एकेडमिक्स भी और नागरिकों के साथ भी। संवैधानिक सुधारों पर केवल राजनीतिज्ञों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, पूरा राष्ट्र ही इससे संबंधित है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने सरकारी टेंडरों की अपील में पारदर्शिता की अहमियत पर बल डाला और साथ में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आयोग के कार्यों की प्राथमिकताओं में खबर की स्वतंत्रता भी शामिल है। उन्होंने कहा,
2: फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस गवर्नमेंट एंड द कमीशन विल एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल।
1: ये सरकार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पेश करेगी और आयोग संवैधानिक सिद्धांतों की जांच करेगा। देश को लंबे समय तक अंधेरे में रखा गया है। दूसरी बात, आयोग सीनियर ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट कमेटी कायम करने की बात की जांच करेगा, जो प्रमुख सरकारी संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति पर सुझाव देगा। ये पाया गया है कि पिछली सरकार के शासन के दौरान किस तरह बुरे प्रभाव पड़े, जब स्वतंत्र कही जाने वाली संस्थाओं के प्रमुख राजनीतिक कारणों से कार्यरत रहे, न कि योग्यता और ईमानदारी के बलबूते पर कार्य करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप संस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा, स्थिति चिंताजनक होती चली गई। इसके अतिरिक्त आयोग न्यायिक अधिकारों के संचालन पर सुझाव भी तैयार करेगा, जैसे कि एक नई अपील अदालत कायम करने की संभावना पर, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक डिविजन को लेकर भी। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की स्वतंत्रता सुदृढ़ करने पर भी चर्चा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार आयोग गणराज्य के राष्ट्रपति की नियुक्ति पर एक इलेक्टोरल कॉलेज कायम किए जाने की भी जांच करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस के चुनाव प्रणाली पर भी कार्य निर्धारित है। उन्होंने कहा, हमारी चुनाव प्रणाली की अखंडता सबके लिए नींव की तरह है। एक चुनाव जो स्वतंत्र नहीं है, न्याय संगत नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो चुनाव है ही नहीं। लोकतंत्र का प्रदर्शन है, लोकतंत्र का पोशाक पहने हुए। अतः आयोग चुनाव सुधारों के कॉम्प्रिहेंसिव समझदार पैकेज की जांच करेगा। चुनाव आयुक्त के लिए ज्यादा मजबूत अधिकार और स्वतंत्रता निर्धारित है, इलेक्टोरल सुपरवाइजरी कमीशन के लिए भी। तीव्र गति से न्याय, चुनाव विवादों को लेकर भी कदम, जिससे लोगों की चाह की झलक मिले। एक कारगर विपक्ष की जरूरत है, किसी भी लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के रेगुलेशंस भी हैं, चुनावी फंडिंग भी है, सदस्यों के लिए राइट टू रिकॉल की भी बात है, जब गंभीर व्यवहार हो इस पर भी गौर करना चाहिए। आयोग को राज्यसभा के सदस्यों की रक्षा की दिशा में भी कार्य करना है, संसद की गरिमा और मतदाताओं द्वारा दिए गए मैंडेट बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अंत में इस आयोग के कायम करने की सरकारी फिलोसोफी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को कभी भी 2014-2024 जैसी स्थिति में जाने नहीं देना चाहिए। ये विधेयक एक शुरुआत होगी इस दिशा में।
2: Beginning of the guarantee that it will never be again the same. With these words, Madam Speaker, I commend the bill to the House.
0: और कल रात राष्ट्रसभा में इस बिल पर बहस जारी रखी गई। विपक्ष नेता जुलेजोंग और कई

0: सरकारी सांसदों ने इस विधेयक पर अपना अपना नजरिया पेश किया। इसका मकसद एक ऐसे आयोग का गठन करना है जो संवैधानिक सुधारों को प्रस्तावित करे, खासतौर पर बुनियादी हक की हिफाजत और लोकतांत्रिक इदारों की मजबूती शामिल है। अनिशा मदया, रजनी बेकर।
1: जूलियो जागो ने इस विधेयक में मौजूद कई असंगतियों पर जोर दिया।
2: Les citoyens sont en droit de se demander, cette réforme est-elle dictée par des principes ou par un calendrier politique? With regard to the consultation process, Madam Speaker, Section 7.1 outlines a four-stage process, which is good, but it lacks safeguards. No timeline, no requirement to publish submissions, no obligation to explain how public input shape recommendations.
1: श्रम मंत्री रेजा उद्दीन ने आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक को कई चरणों के अंतर्गत अमल में लाया जाएगा।
3: This document will be made public. Everybody will have a chance to see what have been the recommendation of the committee. And then we'll move to cabinet. Cabinet will examine it, and then we will come to this house with an act of parliament to implement the recommendation of that committee.
1: रोड्रिग्स के सांसद फ्रांसिस्को फ्रांसवा ने उम्मीद जाहिर की कि इस विधेयक में रोड्रिग्स पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने सरकार के सामने चार प्रस्ताव पेश किए।
4: To guarantee an independent gender balance geographically representative commission with a commissioner from Rodrigues. Second, added new clause 7A to set and let's say an 18-month deadline requiring tabling of the final report and mandate a full parliamentary debate. Third, added new clause 41T small t to constitutionally reinforce the entrenchment of Rodrigues' autonomy, not as a consequential amendment, but as a first order constitutional commitment. Fourth, and a new clauses for one you to establish a constitutional right to digital access and e-democracy framework.
1: बहुमत के सांसद रोशन जमन का मानना है कि संविधान पर गौर करने का समय आ गया था।
5: If we are to modernize this mama da constitution, we must do it through the structured, expert-led and serious process outlined in this very bill.
1: जबकि श्वाना पेहांजे ने इस विधेयक की निंदा की।
6: Il faut parler de la réforme du système électoral qui ne figure pas dans ce texte. La dose de proportionnel, la représentation des femmes au Parlement, l'équilibre de nos circonscriptions, rien de tout cela n'est confié à la Commission. La fin de la déclaration communautaire obligatoire, elle non plus, n'y figure pas.
1: इसके अलावा रविराज बिचुक ने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के महत्व पर भी बात की, जिसकी बदौलत अतिरिक्त पारदर्शिता होगी।
7: La constitution qui inscrira la freedom of information va renforcer l'action, l'accès à l'information publique, mais par là même va encourager la transparence des dirigeants, la responsabilité et va instaurer une culture d'accountability.
1: Stéphanie Auchtil ne is vidhyak ki ahmiyat par baat ki.
8: Le Constitutional Review Commission Bill n'est pas simplement un texte de plus dans l'agenda parlementaire. C'est une invitation à ouvrir les fenêtres de notre maison commune, à faire entrer l'air du temps et à dire avec courage notre République mérite d'être regardée, réparée, modernisée, renforcée.
0: समाज सुरक्षा दफ्तर जिलमी सेवाओं को डिजिटलाइज किया गया। लाभार्थियों की दस्तावेजों को डिजिटलाइज बनाने का सुधार अपनाया गया ताकि उनको दी जा रही सेवाओं को और तेज तथा आधुनिक बनाया जा सके। लॉन्चिंग के दौरान समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो दुनिया और जूनियर मंत्री कुगान पगापेन भी मौजूद थे।
9: कागजी फाइलों के ढेर से डिजिटल व्यवस्था की ओर रोजिल कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत के साथ एक ऐसी सुधार प्रक्रिया शुरू की है जिसे अधिकारी ऐतिहासिक बता रहे हैं। समाज सुरक्षा मंत्रालय को डिजिटलाइज करने की परियोजना 2013 में ही शुरू हो चुकी थी, पर कुछ हुआ नहीं था, इसलिए अब 10.5 मिलियन फाइल्स को स्कैन किया जा रहा है।

0: हाँ हैं। इस पहल को एक ऐसे तंत्र के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो बड़ी संख्या में आवेदनों और भरे हुए आर्काइव्स की चुनौती का सामना कर रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है जहां इन फाइलों में लोगों का जीवन है। इस सरकार की बड़ी परियोजनाओं में ये एक है और इसे सफल बनाने के लिए काफी साधन उपलब्ध कराए गए हैं। आज सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर 3 लाख से अधिक लाभार्थी निर्भर हैं, जिनके लिए हर महीने लगभग 8 लाख रुपए चुकाए जाते हैं। हम एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां लाभार्थी के प्रमाण पत्र के माध्यम से ही उसके फाइल तक पहुंच पाएंगे। ई सोशल सिक्योरिटी परियोजना के तहत चलाया जा रहा ये अभियान बेसिक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की फाइलों से शुरू हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ फाइलों को करीब 18 महीनों में डिजिटलाइज किया जाना है। इस पहले चरण के लिए 16 अधिकारियों को तैनात किया गया है। हालांकि आवश्यकता बढ़कर लगभग 100 कर्मचारियों तक पहुंच सकती है। वही कागजी फाइलों को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
1: सर्दी जुकाम से बचने के लिए टीकाकरण अभियान देश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू हो गया। अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों ने ये टीका लगवा लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सर्दी की शुरुआत की वजह से अभी से ही टीका लगवाना चाहिए, जिसका असर 2 हफ्ते बाद होता है। सिंचा मुटु अशिता रघु।
0: मॉरिशस में हर सप्ताह 4,000 से अधिक श्वसन संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सर्दियों के आगमन के साथ ये संख्या बढ़ने की आशंका है। फ्लू के खिलाफ टीकाकरण विशेष रूप से जटिलताओं के जोखिम वाले लोगों के लिए सुरक्षा का एक प्रभावी उपाय बना हुआ है। फ्लू के कारण कभी कभी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, विशेषकर 5 वर्ष के आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध जनों, विकलांग तथा जिन लोगों को पहले से ही अन्य गंभीर बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी, श्वसन अस्थमा, कैंसर, मधुमेह इत्यादि। अतः इन लोगों को साइनस, ब्रोंकाइटिस तथा सबसे गंभीर निमोनिया भी हो सकता है। हर वर्ष प्रचलित वायरस स्ट्रेन के अनुसार एक नया वैक्सीन उपलब्ध कराया जाता है। यदि अभी तक टीका नहीं लगाया है तो लगवा लेना चाहिए, जिससे फ्लू संबंधी 3 सक्रिय वायरसों से सुरक्षा प्राप्त होगी, जिनमें H1N1, H3N2 और B। इसके अलावा सांस संबंधी वायरस भी सक्रिय हैं, जिनमें RSV, COVID-19, पारा इन्फ्लुएंजा और A2NO वायरस शामिल हैं। पोर्ट लुइस के जीतू अस्पताल में कुछ लोग पहली बार वैक्सीन लगवाने पहुंचे, जबकि कई नियमित रूप से ये टीका लगवाती हैं। जैसे ही अस्पताल में टीका उपलब्ध होता है, हर साल अप्रैल या मई महीने में मैं टीका लगवाने आती हूं। मैं अस्पताल हाइपरटेंशन के अपॉइंटमेंट पर आया था, तभी मैंने ये टीका लगवाया। पहली बार के लिए टीका लगवाया है क्योंकि बहुत लोग सर्दी जुकाम से प्रभावित हो रहे हैं। मैं अस्थमा का मरीज हूँ, इसीलिए हर साल टीका लगवाने आता हूँ, जिससे मैं सुरक्षित रहूँ। पहले खरीद कर टीका लगवाते थे, अभी सरकार की ओर से मिल रही है। अब तक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के माध्यम से 65,000 से अधिक लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है।
1: काफी वक्त से मेनोपॉज करीब 50 साल या 50 साल के बाद की उम्र वाली महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन जिंदगी के नए तरीकों से जैसे दबाव, खान पान, हार्मोनल चेंज वगैरह से मेनोपॉज की अवधि में बदलाव आया। बहुतों के लिए ये एक टाबू है जो अक्सर बुढ़ापे से जोड़ा जाता है। इसका असर जिस्मानी के साथ साथ एहसासों और पेशवराना जिंदगी पर भी पड़ता है। सुयाकर अस्पताल में हालिया चंद मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया, उनकी हालत गंभीर थी। स्विस मेडिकल सर्विसेज से विदेशी डॉक्टर प्रोफेसर शॉल यू ने सर्जरी की, साथ में उन्होंने आम जनता की भलाई के लिए कौमी डॉक्टरों के साथ अपनी महारत बांटी। लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य के इतुरी राज्य में इबोला से प्रभावित इलाकों में नई मुसीबत आई है। वायरस के फैलाव पर काबू पाना अब एक जंग को रोकने के बराबर है। अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोंगो में इबोला के चलते अधिकारियों ने एक प्रिपेयरनेस प्लान को विकसित किया। बंदरगाह और हवाई अड्डे पर कदम उठाए जाएंगे। कल राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने इसका ऐलान किया। सुयाक अस्पताल को ज़रूरत पड़ने पर आइसोलेशन केंद्र बनाया जाएगा।

0: वाशिंगटन में एक कागज़ के कारखाने में रासायनिक विस्फोट की वजह से कम एक व्यक्ति की मौत हुई। 9 लोग अभी भी गुमशुदा है। दूसरे लोगों के घायल होने की खबर है। पश्चिम यूरोप में गर्मी की तेज़ लहर है। ग्रेट ब्रिटेन में मई महीने में सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन दिनों में यूके में तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। फ्रांस और जर्मनी में भी पारा बहुत ऊंचा है। आने वाले दिनों में स्पेन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का अनुमान है। कल इसराइल ने लिबनान के दक्षिण पूर्व में हवाई हमले किए। दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। 31 लाशों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्ला के 100 से ज़ायद मूल ढांचों पर हमला किया। आज सऊदी अरब में सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं और आज खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम की सुन्नतों पर अमल किया गया, जिन्होंने रब का फरमान बग़ैर किसी सवाल से कबूल किया था। आज हमारे मोशन हाजियों ने भी शैतान का अक्कास करने वाले 3 सुतूनों की तरफ यानी जमारात पर कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा किया और ईद उल अधा आज मना रहे हैं।
1: आज सऊदी अरब में हाजियों को पूरा दिन हज के बाकी मरहलों से गुजरना पड़ रहा है। सभी हाजी आखिरी रिवाज मुकम्मल कर रहे हैं। पूरी रात मुज़दलिफा में खुले आसमान तले शब बिताने और कंकड़ जमा करने के बाद आज सुबह सवेरे तमाम हजाज जमारात की तरफ कंकड़ फेंक कर सुन्नत पर अमल करते हैं। आज हमारे मर्शन हाजी भी शैतान का आकाश करने वाले 3 सुतूनों की तरफ कंकर फेंकने की सुन्नत पूरा कर रहे हैं और ईद उल अधा मना रहे हैं। 13वीं जिलहिजा तक हाजी जमारात पर कंकर फेंकने की सुन्नतें निभाएंगे, तब हज बाकायदगी से पूरी होती हैं।
0: आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटो में कुछ बारिश होगी। दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुन्द्र चंचल रहेगा। 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:36 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए। नंबर 12, नंबर 12, सेराफिन लेसालिन पोर्ट लुई में 83 साल की 83 years old, श्रीमती लक्ष्मी देवी वीरापेन, श्रीमती लक्ष्मी देवी वीरापेन जो अक्का देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सपहर तीन बजे इनके घर नंबर 12, नंबर 12, सेराफिन लेसालिन पोर्ट लुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। शिवाला रोड रेनियो मोगैल पिची राफ्रे में 70 साल के 70 years old, श्री धनेश्वर राम कलावन जो देवानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके घर शिवाला रोड रेनियो मोगैल पिची राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नॉर्दर्न बाउंड्री कैथोबोन में 40 साल के 40 years old, श्री प्रीत गुरुदयाल जो आकाश के नाम से ज़्यादा

0: जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के दस बजे इनकी माँ माउटी गुरुदयाल के घर नोजन बाउंड्री कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेटों को दुगौत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। आलिजाग मोबू में 60 साल के 60 years old श्री सादेव जीतन जो कॉल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दस बजे इनके भाई सुशील जीतन के घर आलिजाग बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोटा सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मीदीन लेन सैंपल फिनिक्स में 57 साल के 57 years old श्री मनोज कुमार मेहदीदीन जो कोको के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दस बजे इनके भाई रितीश मेहदीदीन के घर मेहदीदीन लेन सैंपल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियों कास्टेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एकुप बोरिक लेन मोसेलमों सैंत आंद्रे में 82 साल की 82 years old श्रीमती शांति ब्रजमोहन पैदाइशी नाम सालिक जो साधु मेन्यूजे के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल एक बजे इनके बेटे अमरदास ब्रजमोहन के घर एसु बोरिक लेन मोसेलमों सैंत आंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों तेरूज की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। ई टू जीना स्ट्रीट ला फेम बॉम्बू में 64 साल की 64 years old श्रीमती शांताबाई बिहारी पैदाइशी नाम लक्सीमों जो मीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल एक बजे इनके घर जीना स्ट्रीट ला फेम बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोता सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 83 साल के 83 years old श्री राधाशुर फुलमोन जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे इनके बेटे रमेश फुलमोन के घर रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। पेटिट रिविया में 64 साल की 64 years old श्रीमती उमावती तलू पैदाइशी नाम बुदन जो मीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं और कारो लालियान वाकवा की रहने वाली थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे मुरा फ्यूनरल पेटिट रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैलेंस सोल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। आर्या मंदिर रोड पेटिट रिविया में 77 साल की 77 years old श्रीमती कुसमुती रामेसो जो कुमुआ के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके घर आर्या मंदिर रोड पेटिट रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कल पेटिट रिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैथोबोन में 66 साल के 66 years old के श्री सीउलाल सीबालक जो सीलाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे ऋषि सीबालक के घर बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। फ्रांस में 75 साल के 75 years old श्री महेश दुकारन जो मोसेलमों कुंजू प्लेंदी पापाई के रहने वाले थे कि मृत्यु हो गई हैं। इनके अर्थी कल डेढ़ बजे पेरिस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही के शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2
3: Radio Musty.
4: Allons chez Lolo.
5: Chez Lolo. Savée marine, crevette headless, 31-40, 500 grammes, de Madagascar, 375 roupies. Savée marine, catouf, filet 1 kg de Madagascar, 580 roupies. Mojo, food cocktail, 820 grammes, 99 roupies.
6: Lolo hypermarché, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Mall, Phoenix.
7: Tout le monde sait.

0: 2 Radio Musti
1: Raftar Vibes Filmy Rides
0: RM2
2: Radio Musti

0: You're listening to Radio Masti.
1: चलिए रोमांटिक गानों का सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर 6:30 बजे के बाद आप तो जानते हैं कारवां ये आरएम टू रेडियो मस्ती पर रफ्तार को थोड़ा सा कम कर देते हैं आपके लिए बस यूं ही खूबसूरत खूबसूरत गाने चुन कर लाया है जो विनोद यार की आवाज में पिया फॉर यू ड्रीम गर्ल हियर वी गो

0: छह बजकर 50 मिनट होने को है। आप जो रहे हैं रेडियो मस्ती के साथ, आपकी सगी, आपकी दोस्त आरजे मनीषमा आपके साथ में आ रही है। इट इज 7 एंड ऑनवर्ड्स यू विल हैव आरजे गणेश आज आपके लिए, आपकी खिदमत में, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए साथ दिखाने आ जाएंगी। सो अभी के लिए आई गेट टू द नेक्स्ट वन स्पेशली स्पेशली फॉर द म्यूजिक लवर्स, सांसे मूवी से तुम जो मिले दी अनप्लग वर्जन। हियर वी गो,
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।
0: का समय भी हो चलेगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। अभी के लिए आप एंजॉय कीजिएगा ये।

0: subscribe to Radio Masti.
1: आप जैसा कोई मूवीज लिया गया ये आखिरी गाना, जब तू सजन मेरे पास हो कुछ और न चाहे अखियां, दिल में प्यार लिए यूं ही साथ निभाते रहिए।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: जब बोला जाता है कि ये प्यार में एक दिल की जीत होती है और एक दिल की हार होती है, ये हम नहीं मानते, क्योंकि प्यार में सिर्फ हमने ये जीतना सीखा है। किसी को हारते हुए हमें देखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम हमेशा शिद्दत से, प्यार से दोनों हाथ उठा के हमेशा रब से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा प्यार करने वालों का दिल रखना, मिलाना, प्यार को हमेशा जिताना, क्योंकि जब प्यार जीते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जी, 7:06 हो चुके हैं। वेलकम इन योर इवनिंग लाउंज विद मी किनिशा, RM2 रेडियो मस्ती को सुन रहे हो आप। बिल्कुल जी, 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेंगे हमारा और आपका साथ। मीठी मीठी बातें करेंगे, रोमांटिक बातें भी करेंगे और अच्छे अच्छे रोमांटिक गानों को भी सुनाएंगे। रोमांटिक गीतों की बरसात होने वाली है जी, और आप प्यार करने वाले म्यूजिक लवर्स उसमें भीगते चले जाएंगे। वादा करते हैं कि हम बड़े प्यार से आपका साथ देंगे। 5499-1294 पर सेंड मी योर डेडिकेशन, योर दिल की बात। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, कभी कभी आप बयान नहीं कर पाते अपने दिल की बात, सो नॉट टू वरी, आई एम हियर आपके दिल की बात पहुंचाने के लिए आपके चाहने वालों तक। इफ़ यू आर मिसिंग समवन, सो व्हाई नॉट टू लेट मी नो, अपने ही अनोखे अंदाज में हम जरूर उनको बताएंगे। 5499-1294, दैट्स अ मैजिकल नंबर माय डियर, to spread happiness. 402-8335-DALKJ to talk to me live and direct. जी हाँ, करेंगे थोड़ी सी चिट चैट और प्ले करेंगे आपके मनपसंद गाने।

खूबसूरत रोमांटिक गाने लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती 402-8335 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट। अगर ऐसी कोई गाना है जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, जो शायद किसी खास इंसान की याद दिलाते हैं, और आप उस गाने को सुनना पसंद करोगे जो हमारे शो में फिट होता है, जरूर प्ले करूंगी आपके लिए। So my dear lovely people out there, thank you so much for choosing us as your radio partner. और बस यूं ही साथ देते रहना, और खूबसूरत खूबसूरत गानों का जो सिलसिला चल रहा है आपके और हमारे बीच में, बस एंजॉय करते रहना। और 5499-1294 पर keep on sending me your dedications. जी हाँ, your dedications and they are the most welcome. 7:19 हो चुके हैं, you are listening to Ganesha right now. और चलिए जी, फिलहाल के लिए let's check it out, किसने किसको याद किया है on 5499-1293 पर। और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली फॉर यू, श्रेया। Shreya is celebrating her birthday, so wishing you a very happy birthday, my dear, and lots of love coming from your mama Medha, aapke papa Manish, aapka jo bhai hai Aryan, Neil, Masi, Sheetal, Mausa Vicky, Mamu Nitin, Mami Ritina, Nani Sangeeta, and heavenly blessings from Nana Raghunath. Sare Diyal parivar ki taraf se jo Mota Blanche ke rehne wale hain, sab ne aapko wish kiya hai lots of love and happiness. Here we go, this one goes out to you.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल मेरी जान, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन ऑल राइट टू रेडियो मस्ती। हमारी पूरी टीम की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, अ मैजिकल वन टू यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे ऑन वेडनेसडे 27th ऑफ मे, हे हैप्पी बर्थडे टू यू स्वीट हार्ट। तो चलिए जी, हाय गिनू, हाय गुलशन, कैसे हो? रिक्वेस्ट है, गाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो अर्ज किया है फॉर ओनली आयशा के लिए, कभी कभी लगता है मैं उसे गलत वक्त पर मिले थे, कभी कभी लगता है कि हम उसे गलत वक्त पर मिले थे, वो मेरा था भी और कभी था ही नहीं। हम दोनों जानते हैं, हम जो दोनों जो हैं जानते थे कि हम साथ नहीं हो सकते, फिर भी ना जाने हुए क्यों उसकी हर बात में सुकून मिलता है, जैसे एक गलत कहानी में सब कुछ सही लग रहा है। बिल्कुल जी, शायद कुछ रिश्ते गलत नहीं होते, बस उनका वक्त गलत होता है। और अगर आप अपने प्यार पे यकीन करते हैं, यू डू बिलीव इन लव, सो व्हाई नॉट, यू नेवर नो। कभी कभी जिस चीज़ के ऊपर हम कभी सोच नहीं सकते कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी हमारे साथ कुछ मिरेकल्स हो सकता है, तो हो ही जाता है मेरी जान। सो जस्ट मैनिफेस्ट फॉर द गुड। एंड श्वेता हुकुम, हे फ्रॉम बोनाक, कैसे हो आप माय ब्यूटीफुल? एक गाना हो जाए हस्बैंड के लिए जिसका नाम है डूडू, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, रोशन, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम बूबू। हाय बूबू, हाय डूडू, क्या बात है। सो एंड रानी वॉन्ट टू टेल यू दैट शी रियली लव्स यू अ लॉट। तो चलिए इसी बात पे एक गाना हो जाए आप दोनों के लिए और सारे प्यार करने वालों के नाम। 5499124 पर keep on sending me your dedications।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Masti.
3: I really hope that you are loving the song selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए on RM2 Radio Masti. टाइम बीता चला जा रहा है 7:34 हो चुके हैं प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें हम कर रहे हैं आप लोगों के साथ और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली मेस्मराइजिंग गाने जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जी फिलहाल के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना टू ऑल दोस जो बड़े प्यार से बैठे हुए हैं और हमारा ये खूबसूरत से गाने ये जो है सुन रहे हैं और फील कर रहे हैं कि लव इज़ सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ जी हाँ मुस्कुराते हुए आप उनको याद कर रहे हो जो आपके ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है बिल्कुल एंड कृष्ति भी रविया दिसोंगी से साथ दे रही हैं वो बोलते हैं कि बारिश हो रही है रोमांटिक मौसम है गिनी हे दैट्स सोने पे सुहागा मेरी जान व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बारिश का मौसम टिप टिप बरस रहा है ये पानी और पानी की बूंदे जब सुनते सुनते आप RM2 रेडियो मस्ती से जुड़े हुए हो तो ऑफकोर्स ऐसे मौसम में बोलते हैं कि प्यार जवां होता है सो इट गोज आउट टू योर हस्बैंड मिस्टर विक्रम आपके जो ट्विंस हैं कौशिक एंड खुशाल के लिए और हमारे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जी एंड हियर वी गो द नेक्स्ट वन आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेट इट दोस्त के लिए जिनका नाम है रीना पुलवन एंड वेल That's coming from Manisha, Divya, Harsha and message adhura reh gaya. So it doesn't matter. Toh chaliye ji, Karishma ji, ye agla gana aapke liye bhi hum dedicate karna chahenge. Aur vaise agla gana jo hai, it's taken from the movie Sayyara. And straight away from my heart to yours, I'm dedicating it to all true lovers out there who truly, madly believes in love. And chaliye ji, ye gana aapke naam.

0: वैसे देखा जाए तो प्यार में लोग बर्बाद नहीं होते हैं दोस्त, अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो जिंदगी आबाद हो जाती है। किसी की मुस्कुराहट वजह बन जाए, किसी की आवाज सुकून बन जाते हैं, बस वही तो असली प्यार होता है। और जब प्यार दिल से होना, जब प्यार दिल से होना तो हर दर्द भी एक खूबसूरत सा एहसास बन जाता है, और इसी एहसास को हम जगाने आ जाते हैं ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती रात के 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज।
1: Evening Lounge, Evening Lounge,
2: RM2,
1: Radio Musti.
0: बिल्कुल जी, 7:42 हो चुके हैं। You are listening to Ginisha right now, 402.35. Hello जी, good evening.
3: Hello, नमस्ते.
0: नमस्ते सुनीता जी, कैसे हो आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हुआ?
0: मैं हाँ जी, थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ मैं.
3: क्योंकि जिस दिन आई थी तो आपको, आप गिर गए थे, चोट लगी थी।
0: हाँ, हमारे पैर प्लास्टर हो गया था। यहीं पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पता नहीं कैसे हम गिर पड़े और बस
3: देखना, अच्छी तरह से देखना।
0: हाँ, एक स्टेप मिस हो गया, कभी कभी हो जाता है ना वैन। मतलब कि ये न्यूज
3: हाँ, मैं आई थी वहाँ पर उड़ान प्रोग्राम करने आई थी,
0: तो मतलब उसी दिन मतलब आप तक ये न्यूज पहुँच गई थी कि गिन्नी गिर गई। कोई बात नहीं, अब अगली बार मिलेंगे, ठीक है?
3: हाँ,
0: तो बताइए,
3: मैं एक गाना मांग सकती हूँ?
0: बिल्कुल जी, जरूर मांग सकते हो, क्यों नहीं।
3: रविवार को मातृ दिवस है, हमारा मातृ नहीं है, हमारी फूफू है, दो फूफू है, हम उन लोगों के साथ जाते हैं।
0: हाँ जी,
3: ये जो बोनफिस मामा कहते हैं उन लोगों के साथ बांटते हैं।
0: हाँ जी,
3: हम इस अवसर पर सभी माता के लिए एक गीत मांगना चाहती हूँ।
0: ओके,
3: साजन बिना सुहागन का, ओ मामा डियर मामा बर्थडे
0: टू यू। तो बर्थडे नहीं है ना, तो बर्थडे क्यों?
3: बर्थडे नहीं है तो ये गाना अच्छा है ना।
0: अच्छा, कोशिश करेंगे,
3: बहुत अच्छा है।
0: लेकिन देखो, ये नॉर्मली देखो, ओ मामा डियर मामा रोमांटिक नहीं है, कोशिश करूंगी कि मैं प्ले करूं, अगर ये नहीं तो एक मम्मी वाला गाना आपके लिए प्ले करूंगी।
3: ये भी ठीक रहेगा, मेरी आपके लिए, आपके मम्मी के लिए, सभी मम्मी के लिए,
0: मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है?
3: और मेरी दो बहू के लिए, मेरी तीन पोती के लिए, उनको, उन लोगों के माता के लिए।
0: ओके,
3: और मेरी फूफू है माला सीदाम जो रहते हैं सैजुलिया, और मेरी फूफा के लिए खैसुन सीदाम के लिए, और मेरी बड़ी फूफू रहते हैं गुडलैंड मानती कल्याचेती, उनके लिए, सभी के लिए। और
0: ओके जी, सभी लोगों के लिए और जितने भी मामाज हैं सभी लोगों के लिए, ठीक है?
3: हाँ, सभी के लिए बजा देना, मैं सुनूंगी, क्योंकि शनिवार रविवार को जो प्रोग्राम होगा तो मैं फुर्सत ही नहीं।
0: बिल्कुल जी, मैं अभी कोशिश करूंगी, अदरवाइज एक अच्छा सा गाना आपके और सभी माओं के लिए, ठीक है
3: जी? हाँ, अपना ख्याल रखना, जल्दी से ठीक हो जाना।
0: मैं ठीक मैं कोशिश करती हूँ ठीक रहने की।
3: अच्छा, नमस्ते
0: और शुभ रात्रि आपको, थैंक यू सो मच आपने फोन किया। और बाकी जो हमारे लिसनर्स, अगर आप भी हम लोग हमसे बात करना पसंद करते हो, यू वुड लव टू कॉल मी राइट नाउ, यू वुड लव टू डेडिकेट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग राइट नाउ टू ऑल दोज हु आर ट्रूली मैडली डीपली लव अपनों के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, सो व्हाई नॉट, इट्स हैपनिंग ऑन 5499-1294, सेंड मी योर डेडिकेशन, सो कॉल मी 402-80-35. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए जस्ट टू रिमाइंड यू, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती। यस, द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती। आप सभी लोगों का स्वागत है, टू ऑल दोस जिन्होंने अभी ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है हमें टू वॉच द शो लाइव, थैंक यू सो मच।

0: Such a lovely and mesmerizing track, especially for you, playing right now on RMT Radio. मस्ती 7:50 हो चुके हैं. बिल्कुल जी, तुम हो मेरा प्यार, और प्यार वो नहीं जो सिर्फ लफ्जों में हो. हमेशा याद रखना कि प्यार वो नहीं होते हैं जो सिर्फ लफ्जों में होती है, प्यार तो वो है जो खामोशियों में भी महसूस किया जा सकता है. जब किसी का नाम सुनते ही दिल मुस्कुराता से लग जाता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको प्यार हो गया है, और उसकी फिक्र हर दुआ में आ जाए तो वाह जी वाह, सोने पे सुहागा. बिल्कुल, समझ लेना मोहब्बत सच्ची है मेरी जान. जब भी उनके बारे में सोचते हो तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट आपके होंठों पर आ जाती है. जब भी उनके बारे में कोई बात करता है तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके दिल के तार को चीरा है. इसी को बोलते हैं प्यार, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड. जब आप किसी से बेनतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं तो उनकी हर एक बात बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है. उनकी बातें, उनका साथ, उनकी खुशबू, सब कुछ. Thank you so much for joining us on RNT Radio Masti. You're listening to Ginisha right now in your evening lounge 402-85 de LKJ. To talk to me live and direct, hello ji, namaste.
1: Hello.
0: Yes, namaste, आपका स्वागत है.
1: नमस्ते नमस्ते जी.
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम दनपत है, भाकवा का.
0: मिस्टर दनपत फ्रॉम भाकवा.
1: भाकवा,
0: हाँ जी.
1: तीन कोड़ी है मेरा.
0: ओके.
1: किसी, मैं आपसे पूछती हूँ.
0: बिल्कुल.
1: किसी अपना माँ का जन्म देखा है?
0: नहीं,
1: कभी नहीं.
0: कभी नहीं.
1: नाम हम लोग माँ का नाम लेते हैं क्यों? क्योंकि वो जन्म लिया. अगर नाम जो डालते हैं हम लोग जो नाम देते हैं वो कौन देते हैं? हमने माँ और पिता ना.
0: हाँ जी.
1: अगर ज्यादा ज्यादा से माँ डालते हैं, क्योंकि जो माँ है अभी हम लोग का बहुत डर है. अभी के पहले बहन जो है रास्ते में नहीं चल सकते हैं, अभी जो हो रहा है. तो मैं यहीं से एक गाना सोचा हूँ, आप डाल देना मेरे लिए.
0: कौन सा गाना जी?
1: वो जो गाना है वो घर माता की पिता को रस्सी में नहीं डालो.
0: कौन सा वाला?
1: कुवा, यो ज्योति बोलते है ना, सुंदर सा गाना है वो. माँ को

0: पार्टी में थराई में नहीं डालू आप, तो ये एक
1: मैं पता है धनपत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ जब तक कि माँ बाप जिंदा हैं तो हमेशा उनकी कदर कर लेनी चाहिए, उनकी सेवा कर लेनी चाहिए। आज वो हैं तो उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो नहीं होते ना, फिर आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी, हाँ जी, कि जिंदगी में क्या कमी है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं कि आपको
0: बहुत अच्छा है।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: गाना डाल दी मेरे लिए,
1: ठीक है, एक अच्छा सा गाना प्ले करूंगी मम्मा सारे माओ के लिए, ठीक है।
0: बहुत
1: थैंक यू सो मच धनपत जी,
0: बहुत धन्यवाद
1: आपको भी, आपने फोन किया था और इसी बातें की हमने, अच्छा लगा। तो चलिए जी, बाकी जो हमारे लिसनर्स अगर आप भी हमसे बातें करना चाहेंगे, सो व्हाई नॉट, इट्स हैपनिंग ऑन 402-435 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट, एंड एज वेल आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294 पर, एंड द शो इज लाइव ऑन RN2 रेडियो मसी ऑन टिकटॉक। सो टिकटॉक पे हमें देख रहे हैं प्रियंका, निर्मला एंड संतोष, वी हैव मोहिनी, पामिला हमसामी एंड रोशन, वी हैव संदिनी एंड वी हैव हेमा एंड सरोजा and Pratima Kile from Kevin Fulchan, and we do have Annie, and we do have Ashley and Cynthia, and we have Avi Angel, wo pooch rahe ki ऐसे मौसम में कितने बजे तक आप काम करोगे, हम तो यहाँ पे रहेंगे रात के 9 बजे तक। सो नेहा रतन जी, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू, एंड एंजल बोलते हैं आपके टीम के लिए अगला गाना अरुषि यान, एंड नमस्ते टू सुहैला, एंड वी हैव डीओ, वी हैव निर्मल, सुभावना एंड सुनीता संडी, बहुत सारे लोग जो हैं हमारा साथ दे रहे हैं ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती। और जैसे कि अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि एक प्यारा सा गाना हो जाए माँ सारे माओं के लिए, क्योंकि विल बी सेलिब्रेटिंग मदर्स डे इस संडे को, तो जरूर, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू मदर्स।
2: RN2 रेडियो मस्ती।

0: बिल्कुल, सांसों को जैसे जरूरत होती है या जीने के लिए, तो एक सनम तो हमें चाहिए जीने के लिए, प्यार को हमेशा जिंदा रखने के लिए। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। रेडियो मस्ती दैट्स योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, जहां पे आप अपने रोमांटिक गाने सुन रहे हैं। रात के 8:05 हो चुके हैं।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
4: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
4: Evening Lounge.
6: Evening Lounge.
5: RM2.
4: Radio Musti.

एक्चुअली बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि नॉर्थ में बरसात हो रही है, कई जगहों पे बहुत बरसात भी हो रही है। और वैसे हम तो स्टूडियो के अंदर हैं, हमें नहीं पता, आप तो हमें बता रहे हैं कि ऐसे ही खूबसूरत रोमांटिक मौसम है और कुछ ऐसे गिने चुने नगमे हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती, जस्ट टू मेक यू फील द रियल मैजिक ऑफ लव। सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। 8:14 हो चुके हैं माय डियर लवली पीपल आउट देयर, एंड सो मेनी पीपल आर टेलिंग मी कि हाँ जी, फ़ोन करके भी और मैसेजेस भेजते हुए भी कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट मदर्स डे ऑन संडे, सो व्हाई नॉट एक गाना हो जाए माओ के लिए ज़रूर। आई हैव गॉट यू समथिंग स्पेशल, आई एम गोना प्ले दैट फॉर यू। लेकिन उससे पहले लेट्स चेक इट आउट, योर डेडिकेशंस, योर मैसेजेस जो आपने बड़े प्यार से लिख के हमें भेजे हैं। मामा का जन्मदिन है आज, 88 ईयर्स ओल्ड ही। मम्मी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, रेशमा जी की मम्मी का जन्मदिन है आज, सो विशिंग हर हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। आपने मम्मी का नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं। सो विशिंग हर मैजिकल बर्थडे डेडिकेशन आपके लिए मम्मी जी। बेस्ट विशेस, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ टू यू फ्रॉम रेशमा, वीरन, दर्शी, विहान एंड बर्न जन फैमिली की तरफ से। लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए जी, अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे हस्बैंड अश्विन के लिए। ही इज वर्किंग राइट नाउ। हे अश्विन जी को हार्श टू यू एंड आपकी ब्यूटीफुल वाइफ प्रीतिशा की तरफ से। वो बोलती हैं कि हम आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फ्रॉम लेस्पेरेंस पीटों, क्या बात है। एंड चलिए जी, फोन भी आ रहा है, 402-8335 डायल कीजिए टू टॉक टू अस लाइव एंड डायरेक्ट। हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्ते
1: जी, आपका स्वागत है।
2: आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, मेरी माता जी बात मेरी पास में है।
1: अच्छा जी,
2: पास में।
1: आपका नाम क्या है भाई साहब?
2: नाला दुबा, नुवेल फ्रांस के हैं।
1: नुवेल फ्रांस
2: से? मेरी माता जी 102 के।
1: मेरे को याद आया, पहले भी हमारी बात हो चुकी है एक दो बार।
2: हाँ
1: जी, आपकी मम्मा ठीक है?
2: अभी हाल में नहीं, मेरा एक लड़का था 51 ईयर्स का, वो चला गया।
1: अभी तो आप जवान हो भाई साहब, डोंट वरी।
2: नहीं, मेरे बेटा चला गया 51 का ईयर का।
1: ओके,
2: हाँ तो मेरा तो प्रोग्राम है मेरी माता जी के साथ। हाँ, मैं तो छोटा से मेरी माता जी के साथ हूँ।
1: मम्मा का नाम क्या है?
2: नीलो सिगुराम।
1: ओके, तो मम्मी को हमारा प्रणाम, ठीक है?
2: हाँ जी, हाँ आपका।
1: तो और मम्मी के लिए अभी एक बहुत प्यारा सा गाना हम प्ले करेंगे, सारी माओ के लिए, तो आपकी मम्मा के लिए भी, ठीक है?
2: हाँ हाँ ठीक है। ओके
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं, आप भी हमसे बात कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। आप डायल कीजिए 402-8335 डायल कीजिए एंड टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट। और सुना सुना लम्हा लम्हा, कोई सुना सुना नहीं है अभी अभी तो हम हैं यहाँ पे प्यार बांटने के लिए। कृष्णा कोटेज का ये खूबसूरत गाना अगर आप प्ले कर सकते हैं हस्बैंड रवि के लिए। ही इज ड्राइविंग राइट नाउ। हेलो मिस्टर ड्राइवर, मिस्टर रवि, आराम से गाड़ी चलाना। Have a safe trip back home. And ये है आपकी बीवी करिश की तरफ से। And we have a beautiful message. और जो बोलते हैं कि हाँ जी राधा from Canada, कैसे हो? Nice, so nice to hear your lovely voice. Gini, enjoying the awesome playlist and show as usual. Beautiful song आपके लिए, हमारे लिए, listeners के लिए, और हर हर महादेव even to you my dear. And thank you so much साथ देने के लिए। And चलिए जी, we have John from कारोलिन, सो डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन जानू के लिए और मोनू के लिए जो अभी वैन चला रहे हैं। सो मोनू जी ड्राइव केयरफुली। एंड चलिए, वी हैव द नेक्स्ट वन जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे सिस्टर बेटे नितिश और फैमिली के लिए,

तो चलिए, कौन है ये? मीला, मीला राम डिकल जी, आप हैं मोताई ब्लांश से. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. श्रेया फ्रॉम हाइलैंड्स, हैट्स ऑफ टू यू, सॉन्ग कलेक्शन सो गुड गिनी. और आप खाना बना रहे हो और नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल्स एंड सिटिंग नेक्स्ट टू द रेडियो, के किसी चीज़ की तैयारी में हो, लेकिन म्यूजिक साथ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है ना. सो आउटस्टैंडिंग माई बेब सिलेक्शन, जस्ट लाजवाब मेरी जान. थैंक यू हनी, दैट्स डैरन श्वेता, रविश प्रेशर, लवेशा एंड अपर फैमिलीज फ्रॉम ओशना, ऑलवेज ऑलवेज हियर टू चेयर अस अप. हाय, ये अगला गाना जो है ऋषि के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे. और किसी ने लिखा है कि अर्ज़ किया है, बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर टपकती हैं वो नज़ारा हैं आप, हलवाई के पास पकने वाली सबसे मीठी चाशनी है आप. आपकी तारीफ़ में और क्या क्या मैं पढ़ लूँ कि आपका मैसेज अधूरा रह गया. जी कोई बात नहीं, आप फिर से लिख के हमें भेज सकते हो. एंड टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, थैंक यू सो सो मच. वी हैव आहाना, वी हैव पवन, वी हैव विजय, वी हैव देविका एंड शैलेंद्र गिल. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माई डियर. सो अभी सभी लोग जो हैं बोल रहे थे कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट मदर्स डे. जी हाँ, ऑन संडे, हमेशा जब लास्ट संडे आते हैं मई महीने का, तो हम मदर्स डे मनाते हैं. और सारे माओं के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे अगला गाना. और बस इतना कहना चाहेंगे कि माँ, माँ के प्यार का कोई हिसाब नहीं होता है मेरी जान. हमेशा याद रखना कि माँ के प्यार का कोई हिसाब नहीं होता है. वो हर दर्द छुपा कर भी सिर्फ मुस्कुराती है. वैसे खुद थक जाए तो भी मैं ठीक हूँ कहती रहती है. और अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी दुनिया देखती है, अपनी बच्चों की खुशी में ही अपनी दुनिया सजा लेती है. माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, रब का सबसे खूबसूरत तोहफा होती है.

0: मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ. थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू मम्मा.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: Such a beautiful and heart-touching song. वैसे देखा जाए तो माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है ना कि बिगड़ी हुई जिंदगी भी सवर जाती है. उसके हाथ का खाना, उसके दांत, उनकी फिकर सब वक्त के साथ और भी खास लगने लग जाता है. वैसे देखा जाए तो जन्नत का हर लम्हा शायद फीका लग जाए अगर माँ का साथ ना हो. दुनिया में सब बदल जाता है. मेरी बात मानियो कि दुनिया में सब कुछ बदल जाता है लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता है दोस्त. वो हर हाल में बस अपने बच्चों से मोहब्बत करती है और हमेशा हमेशा मरते दम तक और मरने के बाद भी करती रहती है. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिलहाल जो हमारा साथ दे रहे हैं जिनकी माँ नहीं है. इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, आपके दिल में है, हमेशा आपका साथ देती रहेगी वो. माँ कहीं नहीं जाती है, माँ हमारे दिल में बस जाते हैं. और हमेशा याद रखना सिर्फ माँ ही नहीं, हमारे पापा भी बड़े खास होते हैं हमारे लिए. पापा वो होते हैं जो बोलते हैं ना कि घर में वो एक पिलर सा है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं होता है या नामुमकिन है उनके बिना कुछ करना. माँ अगर हमारी सांसें हैं तो पापा जो है हमारे दिल की धड़कनें हैं. बिल्कुल जी, ऑन संडे विल बी सेलिब्रेटिंग मदर्स डे टू ऑन RM2 रेडियो मस्ती पर. एडवांस में हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, लेकिन कभी मत भूलना पापा के बिना माँ नहीं होती है. सो हैप्पी फादर्स डे एज वेल एंड हैप्पी हेवनली फादर्स डे.
1: इवनिंग लाउंज
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Masti.
3: खूबसूरत लवली रोमांटिक गाने, प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कुछ जगहों पे हल्की सी बरसात भी। What a beautiful मौसम, what a beautiful combination for making this a beautiful night much more romantic for you guys। 8:35 हो चुके हैं गिनेश ऑन द माइक का साथ देने के लिए। और जब प्यार की बातें करते हैं तो ऑफकोर्स हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कि प्यार एक ऐसा गीत है दोस्तों जो दिल से निकले तो रूह तक पहुंची जाती है। कभी हंसी बनकर तो कभी याद बनकर, कभी हंसी बनकर तो कभी याद बनकर और कभी किसी की आदत बनकर प्यार जिंदगी को महका देता है। कितनी अजीब बात है ना, अनजान इंसान से मिलो प्यार होने लग जाता है, उनकी आदत भी होने लग जाती है। पता है कैसी एडिक्शन होने लग जाती है, अटैचमेंट होते हैं उस इंसान से कि कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपका मूड भी उस इंसान के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाउ ही ट्रीट्स यू, हाउ ही टॉक्स टू यू एंड हाउ ही लव्स यू। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नेवर लेट समवन ओपिनियन समवन द वे ही ट्रीट्स यू कंट्रोल योर मूड एंड योर बिहेवियर। बोलते हैं कि इंसान प्यार में खो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं खो जाना है मेरी जान कि खुद को खो बैठे। ठीक है, कट साउंड का थोड़ा थोड़ा संग डाल कीजिए। हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग।
4: नमस्ते गिरीशा जी।
3: बाबू अनटवा जी कैसे हो आप ठीक हो?
4: कृपा से ठीक हूँ, भगवान
3: की। अच्छा, भगवान की कृपा से आप ठीक हो। आप हमेशा ठीक रहे भाई साहब, हम तो यही प्रार्थना करेंगे।
4: हम लोग माता पिता की बहुत प्रणाम करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: कि उसका जैसे हम लोग बोलते हैं फतमा माला।
3: बिल्कुल,
4: ऊपर को माला सो ही है मुझे।
3: नहीं नहीं कोई बात
4: नहीं। अरे सूचिका में तन एन सोते मातु है माँ
3: अभी मैंने जस्ट नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने एक गाना प्ले किया था मम्मा के लिए ऊपर। एक्चुअली ऑन संडे बारिश हो जाएगी यहाँ पे ऑन वेव्स ऑन रेडियो मस्ती।
4: तो एक एक एक दीवाना फिल्म का गीत, नया दीवाना है ऋषि कपूर का, सोचेंगे तुम्हें प्यार। देखिए
3: मैं नहीं सोचूंगी, मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो इस बारे में सोच के क्या करना, हमें तो पता ही है।
4: बहन की तरफ है,
3: ऑफ कोर्स भाई, जरूर
4: बेटी की तरफ।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। आप बेटी है,
3: बिल्कुल जितने भी बड़े हो आप बस हमेशा ऐसे खुश रहे, हमेशा हमारा साथ दे ऑन रेडियो। ठीक है,
4: चलेगा
3: चलेगा जी, दौड़ेगा अभी थोड़ी देर में जरूर प्ले करूंगी। सोचेंगे तुम्हें प्यार। अरे सोच,
4: ठीक है
3: ठीक है,
4: शुभ रात्रि है।

0: Yes, Shubh
1: Ratri. Good Mother's Day.
0: Happy Mother's Day, Happy Father's Day to everyone.
1: तो कब अब फिर काम करेंगे?
0: मैं तो रोज करती हूँ, लेकिन दिन में करती हूँ. कल मैं आऊंगी दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक. फ्राइडे को आऊंगी. नहीं, फ्राइडे को नहीं आऊंगी.
1: इसी चैनल में?
0: हाँ जी, मैं तो रोज आती हूँ. जो रेट्रो रिदम शो है ना, मैं रोज करती हूँ 12 से
1: 2:00-2:05.
0: हाँ जी, और मंडे से आप हमें सुन पाएंगे दिन के 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक. ठीक है?
1: ठीक है.
0: थैंक यू जी. थैंक यू. शुभ रात्रि एंड थैंक यू सो मच आपने फोन किया. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए एक बहुत ही इमोशनल मैसेज हमें मिला है. किसी ने लिखा है कि टुडे इट्स एग्जैक्टली 1 month जब से हमारे पापा गुजर गए. It's very, very, very painful and I lost my mom in 2019 as well. Mother's Day lost all its meaning mere liye. Aur ab, I don't even want to be here about it, to hear about it. And actually, I am also a mom. कोशिश कर रही है मेरी. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं हमेशा नॉर्मल रहूं अपनी बेटी के साथ. लेकिन ट्रस्ट मी, एवरी टाइम जब मैं आंखें बंद कर लेती हूं और मेरी आंखों में हमेशा हमेशा आंसू आ जाते हैं. बिल्कुल, क्योंकि आई नो ये जो आप फील कर रहे हैं ना, इट्स वेरी पेनफुल. दोज जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, प्लीज़, आई नो एक्चुअली आप बोलना चाहते हैं जिनके पास पेरेंट्स हैं, प्लीज़ मेक टाइम टू विजिट देम. उनका साथ देना हमेशा. Try to find some time for them. Vidya from Seychelles. Vidya, I can really understand your pain. मेरे पास मेरे मम्मा हैं, मेरे पापा नहीं हैं. चार साल हो गई मेरे पापा को गुजरे हुए, लेकिन अभी भी ऐसा कोई दिन नहीं आया है कि 2400 घंटे में मैंने अपने पापा को याद नहीं किया, उनके बारे में बात नहीं किया. आई ऑलवेज मिस हिम. ये जो एक खालीपन छोड़ के जाते हैं ना, जब हमारे या मम्मी या पापा चले जाते हैं ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन फिल दैट गैप. आई कैन रियली फील योर पेन. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हिम्मत रखो. आपके बच्चे हैं और उनको आपकी ज़रूरत है. आप उनके लिए जी रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए भी जियो. आपके मम्मी, आपके पापा जो हैं, जो कोई भी हैं, चले गए इस दुनिया को छोड़कर, कुछ अच्छी यादें तो छोड़ के गए होंगे. जितना आप उनको मिस कर रहे हो, उतना ही दे आर वॉचिंग ऑन यू. एंड वेल, उनकी खूबसूरत यादों को लेकर आप हमेशा हमेशा जियो. ठीक है? सो अविनाश, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. यू आर वॉचिंग मी लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती. And we have Shalinder Gill. You are in Vancouver right now, lekin New Delhi mein paida hue Punjabi Sikh. Oh, paaji ki aal hai. So, Delhi mein pare pare ho. Aur the next one goes out for Roshan and Ron. We do have especially for Rajiv ke liye bhi. And Shamila ke liye. We have Jaya Chekuri. And we do have Farzana. We have everyone. राधा बोलते हैं पूरे फैमिली के लिए ये गाना एक गाना हो जाए. पापा का जन्मदिन है. फिर फिडू स्वीट्स बोलते हैं पापा का नाम पॉल है, तो हैप्पी बर्थडे टू पापा जी. एंड प्रणाम जी हस्बैंड विमल के लिए और बच्चे वृषा के लिए. अगला गाना एंड व्रज के लिए, डेडिकेटिंग हस्बैंड हीरज लक्ष्मानंद के लिए. एंड चलिए जी, वी डू हैव अगला गाना उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं और हमें ये देख रहे हैं लाइव ऑन टिकटॉक भी, रेडियो मस्ती पर.

कुमार सानू की आवाज में हम लेकर आए हैं ऐसे खूबसूरत खूबसूरत गाने 90s के गानों के ये जो जादू है ना वो जब चढ़ने लग जाता है आपके दिल पर तो वाजिवा इसका तो कोई जवाब नहीं है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करते हैं कि नहीं, इसमें सोचने वाली बात क्या है, जब प्यार होता है ना तो बस हो जाता है। सिंह साहब ने अभी बोला है हमें फ्रॉम वैंकूवर, वो बोलते हैं कि he's been watching me actually live on TikTok कि प्यार सोच समझ के किया नहीं जाता है, बस हो जाता है ना। आई एग्री विद दैट टपाजी, क्योंकि प्यार जो है ना प्लान करके किया नहीं जाता है, बस हो जाता है। प्यार आके नॉक नॉक तो नहीं करता है कि हेलो जी कैन आई फॉल इन लव, हम तो कहते हैं नॉट टू फॉल इन लव जी, यू नीड टू राइज इन लव, और वो भी उसी के साथ जिसके लिए आपके दिल की धड़कने हमेशा तेजी से धड़कते हैं, जिसको देखते ही आप मचल सजाते हो, आपको वो एहसास होता है ना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, पता नहीं

0: it's such a mixed feeling. It's both a roller coaster of feelings when you really deeply love someone. And I do agree. ऐसे फीलिंग जब इंसान फील करते हैं ना तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंगीन, बहुत ही हसीन लगने से लग जाता है. और हम बस माता रानी से यही प्रे करेंगे, रब से यही प्रे करेंगे कि आपकी खुशी को किसी की नजर ना लगे. 5491294 पर आई गॉट अ ब्यूटीफुल डेडिकेशन राइट नाउ एंड हेमलता बर्जन फ्रॉम पॉइंट ऑफ पीमो, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. तो एक गाना हो जाए आपके नाम. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स ओवर द वर्ल्ड एंड हार्ट फील ग्रेट टू हियर these songs. So thank you so much Vidya Tuku of Vidya Tuku of Dagotsia. Aur aapki mama ke liye bhi hai jinka naam hai Phulwanti. So Phulwanti ji, aapki pyari beti ki taraf se lots of love my dear. And chaliye ji, we have Keisha from Nayanda's Karaoke. He's watching us live. Sonu, hey, ye agla gana for you my dear. And we have Raj Bisu, Shriya. And we do have Prashika. Hey, ji, oh, ji, kaise ho ji? Ekdam changa hai ji, aap kaise ho ji? So the next one goes out to you. Aur Jaya Chakuri, Shalinder Gir, where are you from? Hum to yahan pe hain. Aap Vancouver se hume dekh rahe hain. And we are doing live on Radio Masti from Mauritius, our paradise island. And Jishna, ये अगला गाना आपके लिए, लव निश फॉर यू एज वेल. वी हैव कामिनी एंड वेल सोनू पूछ रहे हैं कि हम आपसे बात कर सकते हैं. 4285 डायल कीजिए. यू कैन टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट ऑन लाइव ऑन रेडियो मस्ती. शालिनी, हे रवि एंड नीरव लिसनिंग टू आवर एंटी राइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. एंड वी डू हैव राज बिसू. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड टू एवरीवन वाचिंग अस लाइव. ऋषि बिदेसी ऑफ बॉम्बू, ये गाना आपके दोस्त के लिए. बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है और उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं. तो चलिए जी, अगले गाने के साथ ही इट्स टाइम फॉर गिनी टू से गुड बाय टू यू. इजाजत दीजिए हमें, हम कल फिर से हाजिर हो जाएंगे ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी इन योर रेट्रो रिदम विद सम पुराने गाने, यानी कि 90s, यू नो ना, नया पुराना तो द न्यू ओल्ड इज 90s नाउ, 90s एंड 80s और 70s के गाने. सो ऑफ कोर्स वी विल गो डाउन मेमोरी लेन टुगेदर टुमारो. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू एंड कीप ऑन दिस मैजिक. लेट्स फील इट, द मैजिक ऑफ लव ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती.
1: You're listening to Radio Masti.

चलिए जाते जाते हमें गालियां ना पड़े इसलिए हम मेविन का नाम जरूर मेंशन करना चाहेंगे जो खुद दो से हमारा साथ दे रहे हैं. Hey, मेविन, हैव अ लवली टाइम ऑलवेज बाय लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एंड यस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो फेथफुल टू अस. हैव अ लवली नाइट एंड कीप ऑन एंजॉयिंग. सॉरी.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: नमस्ते और स्वागत आप सभी का लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर, जहां रात होती है स्टाइलिश, सॉन्ग होते हैं मैजिकल और मूड होता है अनफॉरगेटेबल। मैं आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल रेडी। ये 3 घंटे हम साथ चलने वाले हैं, साथ में चिल करने वाले हैं। सो नो स्ट्रेस, नो टेंशन, सिर्फ एंटरटेनमेंट का स्मूथ फ्लो। लाइट्स थोड़ी सी डिम करो और दिल को फुल वॉल्यूम पर छोड़ दो, बिकॉज आज धड़कने साफ सुनाई देने वाली है और म्यूजिक इज द मेन कैरेक्टर। RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: भाई दिन भर दुनिया को हैंडल किया, अब थोड़ा खुद को भी हैंडल कर लो विद गुड म्यूजिक एंड चिल वाइब्स। ये शो उन लोगों के लिए है जो रात में ज्यादा अलाइव फील करते हैं, जहां थॉट्स भी डीप होते हैं और सॉन्ग्स भी। आज की रात हार्ट और हेडफोन का परफेक्ट कनेक्शन बनने वाला है। स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।

0: RM2 Radio Musty.
1: Pop the lights, go black. Boom.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: भाई बॉलीवुड सॉन्ग्स का मूड कुछ अलग ही होता है. मूड चाहे वैसे जैसा भी हो, ये उसको कलरफुल बना देता है. और आज वही कलर्स लेकर हम आपकी जिंदगी में शामिल हो गए हैं. कभी रोमांस, कभी मस्ती, कभी नॉस्टैल्जिया, और हाँ, थोड़ा ड्रामा तो बॉलीवुड का बर्थ राइट है. तो रेडी हो जाओ फुल ऑन फिल्मी नाइट के लिए.
0: वेलकम टू रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.
1: Radio Musty feels a musty.

देखिए साहब, खाना पीना हो गया, उसके बाद खाना पीना, उसके बाद थोड़ा गाना बजाना। यानी कि दिल का अगर गिटार बज रहा है बार बार और इमोशंस पैदा कर रहा है, पैदा हो रही है झनकार, तो कहीं किसी का नाम तो नहीं है। वैसे गाना पसंद आए तो गाओ जरूर, गुनगुनाओ जरूर, क्योंकि नाइट ये जो शो होता है ना, इट्स ऑल अबाउट बीइंग रियल एंड रिलैक्स। तो हम आपको एग्जैक्टली वही वाइब देने के लिए रेडी हैं। आप तैयार हो तो 24/7 आपके साथ RM2।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: भाई, रात और रेडियो कनेक्शन ओल्ड स्कूल सही, लेकिन गोल्ड है। एक आवाज, एक गाना और सडनली मूड बेटर हो जाता है। आज भी वही मैजिक क्रिएट करने की कोशिश रहेगी। आप सुनते रहो, हम स्माइल्स डिलीवर करते रहेंगे। और याद रखो, गुड म्यूजिक नेवर जजेस योर सिंगिंग। गाते रहो, एंजॉय करते रहो।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: हाँ, थोड़ी सी ठंड हो रही है और ब्लैंकेट मोड ऑन हो सकता है. लेट नाइट स्नैक्स रेडी. अरे क्या बात है, परफेक्ट. क्योंकि अब शुरू हो रहा है एंटरटेनमेंट का कंफर्ट पैकेज. यह हर गाना एक मेमोरी बना सकता है और हर मोमेंट थोड़ा और स्पेशल लग सकता है. बस दिल की प्लेलिस्ट को चलने दो.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: ये रात का वक्त काफी कमाल का होता है ना, रोड साइलेंट, हवा कूल और म्यूजिक काफी इमोशनल। ऐसे मोमेंट्स के लिए रेडियो बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर बनकर आता है। आज हम आपके नाइट कंपेनियन बनकर चलने वाले हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो या बेड पर हो, वाइब्स सेम रहने वाले हैं, सॉफ्ट, हैप्पी एंड फिल्मी।

ऐसे कहते हैं कि लेट नाइट जो लिसनर्स होते हैं ना, वो काफी लॉयल होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सॉन्ग्स नहीं फीलिंग्स भी सुनते हैं। और आज की रात हम फीलिंग्स ओवरलोड करने वाले हैं। कुछ ट्रैक्स आपको डांस कराएंगे और कुछ साइलेंटली आपको स्माइल करवाएंगे। म्यूजिक का यही तो मैजिक है भाई। लाइफ को सीरियसली लेना जरूरी है, पर कभी कभी उसका रिमिक्स बनाना भी इक्वली जरूरी है। तो आज स्ट्रेस को म्यूट और हैप्पीनेस को अनम्यूट कर देते हैं। हम लाए हैं गाने जो मूड को इंस्टेंटली ग्लो अप देने वाले हैं। रात यंग है और प्लेलिस्ट बिल्कुल रेडी, बस आप कनेक्टेड रहिए।

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: जैसे रात के सफर में अगर एक चीज साथ हो तो म्यूजिक होना चाहिए, क्योंकि सॉन्ग्स कभी कंप्लेन नहीं करते, सिर्फ कंपनी देते हैं, सोचा है कभी? और आज हम वही कंपनी लेकर आए हैं, फन टॉक्स, वार्म वाइब्स और नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट्स। अब रात बोरिंग नहीं रहने वाली।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: भाई कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कान से दिल का रास्ता अपना बना ही लेते हैं, डायरेक्टली दिल पे लैंडिंग करते हैं। आज की प्लेलिस्ट में दोनों टाइप के ट्रैक्स हैं, तो कभी आपका मन विचलित होगा, चंचल होगा, इमोशन से भर जाएगा, तो कभी इमोशनल मूवी वाली वाइब देने वाले। एंजॉय एवरी बीट ऑफ दिस ब्यूटीफुल नाइट।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: अच्छा, ये टाइम ऐसा होता है जब सोशल मीडिया स्लो हो जाता है पर इमोशंस फास्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लेकर आए हैं म्यूजिक जो हर मूड को अंडरस्टैंड करे। हाँ, कभी कभी ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और लगता है कि काश सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सब कुछ संभाला क्यों नहीं जाता। अरे साहब, इतनी कैलकुलेशन क्यों? अगर आप इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो मैथमेटिकल होगा, मैजिकल नहीं होगा।

0: भाई ये चांद सितारे भी आज वीआईपी गेस्ट लग रहे हैं, और जो सितारे टिमटिमा रहे हैं वो बैकग्राउंड में जैसे डांसर्स बन गए। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ फिल्मी एटमॉस्फेयर बनाया जाए। अपना काम चलता रहेगा लेकिन बीच बीच में छोटा सा ब्रेक लेकर ये जो बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट है ना, इसको फुल ऑन कर दें। वेलकम टू द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ योर नाइट,
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: time to Radio Musti. Feel the Musti.
1: हेडफोन्स लगा कर अगर आप म्यूजिक के साथ वाइब कर रहे हैं तो क्या बात है, आज की रात हर गाना एक इमोशन कैरी करेगा, कभी क्यूट, कभी क्रेजी, कभी कंफर्टिंग, और हम प्रॉमिस करते हैं बोर्डम को चांस नहीं मिलने वाला। ये तीन घंटे फुल ऑन एनर्जी के साथ आपके साथ जोड़े, बस यही आशा है कि आप ऐसे मुस्कुराते रहें और RM2 को अपना बनाते रहें।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: ये 3 घंटे का सफर कैसे आगे बढ़ता चला गया पता ही नहीं चला ना। वैसे भी कहते हैं कि गुड टाइम्स फ्लाई, और ऐसे ही उड़ते उड़ते म्यूजिक वेव्स पर हम पहुंच गए टवर्ड्स मिडनाइट। तो होल्ड ऑन टाइट, स्लीप टाइट, और एक बार फिर से जब हम आंखें खोलेंगे और अपने सपनों में टटोलेंगे तो हमको ही पाएंगे। आर एम टू 24/7 आपका म्यूजिक पार्टनर, आपको कंपनी देता हुआ। अब जल्दी मुलाकात होती है, फ्रीक्वेंसी याद है ना, तो बस सेट कीजिए और मिलते हैं। अभी के लिए नमस्कार।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.